0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन। कलाकार थे अशोक कुमार चौरसिया। आपने प्रस्तुत किया राग रामकली। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस

जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पोजवाल और सोनू निगम की आवाज़ में भी आपने सुना इस भजन को। और सावन के इस पावन बेला में आइए सुनते हैं भोलेनाथ का एक और भजन हरिहरन की आवाज़ में।

0: लीजिए पेश है चिंतन। चिंतन में सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त के विचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज का चिंतन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है मैथिली शरण गुप्त के विचार। इस विषय पर लघु वार्ता, आलेख है अरुण कुमार जैमिनी का और वाचन स्वर है शंभुनाथ पांडे का।
2: मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के समीप चिरगांव में हुआ था। इनके नाम से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा है। इनके बचपन का नाम मिथिलाधीप नंद शरण था। जब इन्हें विद्यालय में दाखिले के लिए ले जाया गया तो विद्यालय के रजिस्टर में इनका बड़ा नाम आ नहीं रहा था, तो अध्यापक ने इनका नाम मैथिली शरण कर दिया। चूंकि इनका जन्म धनाढ्य वैश्य परिवार में हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ गुप्त जुड़ गया और इस तरह इनका नाम मैथिली शरण गुप्त हो गया। गुप्त जी इतने प्रतिभाशाली थे कि बचपन में स्वर्णलता के नाम से छप्पे लिखते थे। गुप्त जी को मुंशी अजमेरी से मार्गदर्शन मिला। 12 वर्ष की उम्र में ब्रजभाषा में कनकलता के नाम से पहली कविता लिखी। आगे चलकर रसिकेश और रसी केंद्र आदि के नाम से भी लिखा। अनुवाद कार्य करने के लिए इन्होंने मधुप नाम अपनाया तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कविताएं लिखने के लिए भारतीय और नित्यानंद हो गए। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। दोनों के बीच परस्पर स्नेह और सम्मान का रिश्ता था। द्विवेदी जी के लिए एक जगह गुप्त जी लिखते हैं, अयोग्य देखकर भी पंडित जी ने मुझे त्यागा नहीं, सदा के लिए अपना लिया। मुझे बोलचाल की भाषा में पद्य रचने का गुरु मिल गया। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि परलोक में उन सा पथ प्रदर्शक मुझे प्राप्त हो। एक किस्सा उनका भारत भारती के प्रकाशन के समय का है। इसके प्रकाशित होते ही इसका न केवल भरपूर स्वागत हुआ बल्कि इसकी धूम भी मच गई थी। इसके प्रकाशन के समय जब गुप्त जी ने द्विवेदी जी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आजकल ऐसी पुस्तकें लिखने पर शासकों से लेखक की रक्षा कौन करेगा। राजा रामपाल सिंह के आश्वासन देने के बाद इसमें कुछ मूल पदों में परिवर्तन किए गए जो अंग्रेजी शासन की दृष्टि से आपत्तिजनक हो सकते थे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीयता के भाव के कवि थे, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के पैरोकार थे, लेकिन अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता के पुरजोर विरोधी थे। एक तरफ उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति पर किसान की कविता में खुलकर लिखा है तो दूसरी तरफ युवाओं में राष्ट्रीयता के भावों को जागृत करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वे प्रेरित करते रहे। गुप्त जी नारी सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील और जागरूक थे। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय नारियों को विशेष स्थान दिया। इनमें केकई, उर्मिला और यशोधरा विशेष रूप से शामिल हैं। एक तरफ गुप्त जी नारी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले गुप्त जी ने अपने लेखकीय दायित्व के साथ साथ अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व को भी बखूबी निभाया। उन्होंने अपने पिता के दिए इस आशीर्वाद को कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुना अच्छी कविता करेगा चरितार्थ किया। यह आशीर्वाद उनके पिताजी ने गुप्त जी के बचपन में उनके एक छंद को पढ़कर दिया था।
0: अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता मैथिली शरण गुप्त के विचार। आलेख अरुण कुमार जैमिनी का था और वाचन स्वर शंभुनाथ पांडे के थे।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 6। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000 युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटक नगरे

0: जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमंडल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थ स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में

0: Association President P.T. Usha and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Odisha, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Jharkhand till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। समय है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में सबसे पहले सुनिए अलीश मोहन का गाया शिव भजन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई मुस्कान के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा बोस। तो साथियों, आपकी सुबह को तरोताजा और स्फूर्ति से भरपूर बनाने के लिए आज हूँ हाजिर मैं आपके साथ कुछ ऐसे विचारों के साथ, रोचक तथ्यों के साथ और दिलचस्प किस्सों और बेहतरीन गीतों के साथ जो आपके पूरे दिन को खुशनुमा बनाने वाले हैं। तो चाय की चुस्की लीजिए, खिड़की का पर्दा हटाइए और स्वागत कीजिए इस सुनहरी सुबह का गीतों भरी गुड मॉर्निंग के साथ।

दोस्तों, इस भोर को सुहानी बनाते हुए एक बात मुझे याद आ रही है जो आपसे कहना चाहती हूँ। आप सभी को याद होगा कि हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे अक्सर कहा करते थे कि सुबह का समय बहुत खास होता है। पर ये ऐसा क्यों कहते थे, क्या आपने सोचा है कभी? दरअसल वो इसलिए कहते थे क्योंकि सुबह की धूप हमारे शरीर की जो जैविक घड़ी है, यानी कि सर्केडियन रिद्म को संतुलित बनाती है। और उसी तरह सुबह जो सूरज की पहली किरण पड़ती है, अगर वो सीधे सीधे हमारे शरीर पे पड़े या हम उसके दर्शन कर लें, तो हमारे मन, मस्तिष्क और मूड को वो बहुत सुंदर और बहुत शांत बना देती है, एकाग्र बना देती है। यानी सुबह की धूप जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई बिल नहीं आता है दोस्तों। और अब एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आज की सुबह आपने सुबह उठकर क्या देखा, मोबाइल या खुला आसमान? अगर आपका जवाब मोबाइल है तो चिंता मत कीजिए, ये करने वाले आप अकेले तो हैं नहीं। लेकिन कभी कभी खुद को भी गुड मॉर्निंग कहना भाई बनता है ना? तो इसी बात पर चलिए एक प्यारा सा गीत आपके लिए।

इस सुहानी भोर में एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैं, और वो है एक व्यक्ति की जो रोज सुबह पार्क में वॉक करने जाता था। और एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछ लिया कि भाई आप रोज ऐसे आ जाते हैं, आप इतने अनुशासित और इतने डिसिप्लिन हैं कैसे? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भाई मैं अनुशासित नहीं हूँ, बल्कि घर में मेरी पत्नी मुझे सुबह 5 बजे योगा लगाती है और कहती है कि चलिए उठिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए। तो भाई दोस्त ने कहा, फिर क्या आप करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्र निर्माण से बचने के लिए वो पार्क में भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई राष्ट्र निर्माण में वो मदद तो करते ही हैं, है ना दोस्तों? देखिए, हर घर की सुबह अपनी अपनी कहानी के साथ होती है। कहीं चाय की खुशबू होती है, कहीं स्कूल बस की जल्दबाजी होती है, और कहीं ऑफिस की तैयारी, और कहीं काम वाली के आने का इंतज़ार भी, है ना? तो इसी ज़िंदगी की भागदौड़ को सलाम करते हुए सुनते हैं हम आज का अगला गीत।

और दोस्तों अब बात करते हैं उन तीन छोटी आदतों की जो सुबह को बेहतर बनाती हैं। और उनमें से पहली बात है कि भाई उठते ही आपको अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए और एक ग्लास पानी पीना चाहिए, और अगर वो गुनगुना हो तो और अच्छा। और दूसरी बात यह है कि कम से कम कुछ मिनट खुली हवा या धूप में घूमना ज़रूर चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, खुद से किसी अच्छी बात की शुरुआत करनी चाहिए। भाई विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि और सुबह का रूटीन ऊर्जा और नींद दोनों को बेहतर बनाता है। और भाई दिन की दिशा अलार्म तो तय कर ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए सुबह का पहला विचार तय करता है कि आज पूरे दिन की कवायद कितनी सफल होने वाली है आपकी। और ऐसे में अब बात करते हैं एक ऐसे गीत की जिसे सुनते ही आपका दिल भी मुस्कुराने लगेगा।

भाई हमारा जो देश है वो इतना रंग बिरंगा है, जहाँ हर सुबह रंग बिरंगी ही होती है। भाई कश्मीर में चाय के साथ पहाड़ जागते हैं, वहीं राजस्थान में सूरज की किरणें रेत को जगमग कर देती हैं, केरल में नारियल के पेड़ों के बीच हवा गुनगुनाती है, और मणिपुर में झीलें सुनहरी हो जाती हैं, और हमारे शहरों में दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला और हॉर्न बजाकर वो सभी हमें जगाते हैं। यानी कि सारा जो सारी की तान है वो सब कुछ मिश्रित रूप में सुनाई देती है, यानी सब मिलकर सुबह का ऑर्केस्ट्रा सा चला देते हैं। दरअसल ये विविधता ही तो हमारे देश की खूबसूरती है ना दोस्तों? तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरती पर एक और खूबसूरत सा नगमा।

याद रखिए दोस्तों, सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं है, सुबह उम्मीद का नाम है, सुबह विश्वास का नाम है, सुबह एक सुनहरे अवसर का नाम है। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों के जीवन में भी रोशनी बिखेरते रहिए। और इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग से मनीषा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उड़ीसा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर और गंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में आज से पहर भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नज़दीक बनारा में जगत गुरु किरीपालू यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफ़र करेंगी और बाद में गंजम ज़िले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहां वो माँ कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफ़र के रास्ते, तप्तापानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकामात को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगी। आदाद और शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतनराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुज़ाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराए सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहद अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम व इंसराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस अहम समंदरी गुजरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीके कार से मुतालिक मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवात पुरअमन रैली सवात जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फ़नून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साला एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुजद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप शुभम कुमार के गायन में सुनेंगे राग नाद भैरव। तबले पर संगति दी है मुस्तफ़ा हुसैन ने और सारंगी में है गुलाम मोहम्मद।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में आप सुन रहे थे शुभम कुमार के गायन में राग नट भैरव, तबले पे संगति दी मुस्तफ़ा हुसैन ने और सारंगी में थे गुलाम मोहम्मद।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अवर गेस्ट। कार्यक्रम हमारे मेहमान में अब सुनते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पुनरावलोकन विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायक निदेशक सुमिता दास से नीतीश अरोड़ा की बातचीत।
1: This is Akashwani. Time for a weekly program, Our Guest. I hand over the mic to the show host, Nitish Arora, for the same.
2: In the month of August, we are bringing you a series of talks, interviews,

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके अज तुहाडी सेवा विच हाजिर आ मैं रविंदर कौर। अज दे प्रोग्राम विच तुसी जसविंदर सिंह भुल्लर तो सुनोगे वार्ता गुरुद्वारा पोथी माला दे कंध चित्तर। इस तो अलावा असी तुहानू सुनवावांगे शब्द गुरबाणी। स्रोतों मच्छर एक बहुत ही छोटा अते नाम मात्र जीव जापदा है, पर ए मानव सेहत लई

0: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी

0: कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, Jitin Ram Manjhi, is likely to move the bill which seeks to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 be taken into consideration and passing. The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow.

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर 10:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपकी पसंद ही तो इस महफिल की शान है। आपकी पसंद ही तो इस महफिल की शान है। आपकी हर फरमाइश में बसी हमारी जान है। गुनगुनाएं और बनाए रखिए ये सिलसिला, ये सुबह तो बस आपके ही नाम है। बिल्कुल दोस्तों, ये सुबह आपके ही नाम है और हम आए हैं आपका मनोरंजन करने, आपकी फरमाइशें पूरी करने। तो सुनते हैं सबसे पहले मेरी पसंद का ये गीत और फिर सुनेंगे आप सब।

दोस्तों, आप सबके मेल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं ये पहले मेल से आपके। ये आया है महसूल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। और इन्होंने कहा है कि हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो हमने आपको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है पद्मा टोकिज नेपानगर से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी का। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रज्वला ताई, मेशराम और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। छत्तीसगढ़ से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी। इन्होंने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अरण्य आनंद, सत्यम आनंद, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मूना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। जातना शहर से सागर, रेणुका और लक्ष्मी। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना। और ये हमारे पास मेल आया है बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डोली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आपकी फरमाइशें हमारे पास लगातार आ रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फरमाइश हमारे पास चलती रहती हैं। और दोस्तों, यूं तो हज़ारों महफ़िलें हैं ज़माने में, यूं तो हज़ारों महफ़िलें हैं ज़माने में, पर जो सुकून यहाँ पर है वो कहीं और कहाँ। जो सुकून आपके साथ हमें मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो शुरुआत करते हैं अगली फरमाइश से। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। गांव चौधरीवास हरियाणा से हैं शुभम, यश कुमार, मांगेराम सतोड़। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इन्होंने कहा है कि आपका हर पल खुशियों से भरा रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी दुआएँ हमारे साथ हमेशा रहती हैं। अगला मेल है हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया का। यह है इरशाद अहमद शाह बेगम और मरियम जैनब कस्बा बितराम से। पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार, हैप्पी रॉय। जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, आपका पहला गीत सुनकर दिल बाग बाग हो गया, पर आपकी आवाज़ हम लोगों को दीवाना बना दिया है। आपके कार्यक्रम का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कृपया आप हम लोगों को कोई भी गीत अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए आगे भी। बेंगलोर से हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। और ये हमारे पास फरमाइश आई है महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड से, नंदा हनुमान बोर्ड से, उत्तम। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इन्होंने कहा है कि हमारा मेल ज़रूर शामिल करें, तो हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। और सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगली फरमाइश हम लेते हैं महाराष्ट्र से। PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान और आशीष। और ये हमारे पास फरमाइश आई है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्टो। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। इन्होंने कहा है कि आपको हार्दिक नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, और हमने आपको शामिल कर लिया है। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। और हमारे श्रोता जो हैं फिर भी वही करते हैं कि अपनी फरमाइश हमें बार बार भेजते हैं, पर श्रोताओं हमें कोशिश होती है कि हम आपकी सभी फरमाइशें पूरी करें, पर आप अगर बार बार भेजते हैं तो हम जो हमारे कई श्रोता उसमें रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी एक बार ही फरमाइश भेजें, हम ज़रूर शामिल करेंगे आपको। और ये फरमाइश आई है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दिल की धड़कन बनकर आप दिल में समा गए। दिल की धड़कन बनकर आप दिल में समा गए। हम सोचा करते थे मोहब्बत क्या होती है, आप आए और चुपके से सब सिखा गए। बिल्कुल दोस्तों, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ज़िंदगी का यही है कि शुरू से अंत तक हम सीखते ही रहते हैं और सीखते रहना भी चाहिए और जुनून भी होना चाहिए सीखने का। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है जलालाबाद से। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित की, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत, कमल, सहानी, इनकी फरमाइश हमारे पास आई है जालंधर पंजाब से। ये हमारे पास फरमाइश आई है किशन वंजानी की। इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, हमें तो सावन के महीने में प्रभु आराधना करना और सावन के झूले झूलना, उसके साथ दाल पकवान खाना बहुत ही अच्छा लगता है। नाइस प्रेजेंटेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि सावन का महीना चल रहा है और ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आपको सुनवाएंगे सावन का भी गीत, हमारे साथ बने रहिए आप। और ये फरमाइश हमारे पास आई है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की, किशन वंजानी, इनकी अभी हमारे पास पहले भी आई थी, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पू भाटिया, जमशेदपुर से। और ये हमारे पास लोहगढ़ ठाकरावाला से फरमाइश है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। ये है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आप सबकी फरमाइश लगातार आ रही हैं और समय भी तेज़ी से भाग रहा है, तो कोशिश है कि आप सबकी फरमाइशों को शामिल किया जाए। और ये हमारे पास फरमाइश आई है पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा की। बेंगलुरु से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति, पौरुष। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का। और ये हमारे पास फरमाइश आई है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी की। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। ये फरमाइश आई है हमारे पास बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। इन्होंने लिखा है कि

सोनिया आपकी आवाज़ दब दब के आ रही है, प्लीज़ माइक के पास बैठें। तो मैं बिल्कुल माइक के पास ही हूँ, पता नहीं आवाज़ ऐसा क्यों नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मैं और पास होती हूँ, शायद हो सकता है आपको आवाज़ अच्छे से आ जाए। और ये हमारे पास फरमाइश आई है गोरैया जालंधर से, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगा की, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जमशेदपुर से, हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से हैं शिफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों ये फरमाइश हमारे पास आई है अगली, हरियाणा से। अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा की। घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, संदीप मक्कड़ और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ जालंधर से। सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और काफ़ी फरमाइश हैं हमारे पास जो फिर से दोबारा से आ रही हैं। सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजफ्फर साबरी, ज़रीफ अंसारी और तुलसी मस्कीन, इनकी भी फरमाइश आई है। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह मोतिहारी बिहार से, खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, बाईपास मेरठ से। मुंबई से हैं देविक और इशिता प्रिया। गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, संगीत का ये सफ़र तो हमेशा चलता रहेगा और आपकी फरमाइशों से ये आशियाना महकता रहेगा, पर आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाज़त आपकी पसंद कार्यक्रम से, और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्षी विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे

0: चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में संवेद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Jitan Ram Majhi is likely to move the bill which seeks to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 be taken into consideration and passing. Counting of votes is underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. In the first round of counting for Bakipur seat, Jan Swaraj Party's candidate Prashant Kishore is leading by 1,000+ votes, while in Manjalpur, Gujarat, Satendra Bhai Patel of the Bharatiya Janata Party, BJP, is leading by 1,000+ votes, whereas Ashutosh Tiwari of the BJP is leading by 800+ votes at Datia in Madhya Pradesh. President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a 3-day visit. During her stay, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. We have a report from a correspondent.
2: President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon on a three-day visit to her home state of Odisha. Later in the evening, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University at Bhara near Cuttack. Tomorrow, the president will travel by a special train from Bhubaneswar to Berhampur and later proceed by road to Taptapani in Ganjam district, where she is scheduled to offer prayers at Ma Kandhuni Devi Temple and the Shiva Temple. She will halt for the night at the Army Air Defense College at Golabandha. Elaborate security arrangements have been made with around 40 platoons of police deployed in Bhubaneswar and Cuttack. No fly zones have been declared over Berhampur railway station, the president's travel route, Taptapani temple complex, the Army Air Defense College, and other designated venues to ensure foolproof security during the presidential visit. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that one should never lose courage even when fortune turns unfavorable. Sharing a Sanskrit quote on a social media post, Modi noted that just as a skilled sailor whose ship breaks apart in the middle of the ocean does not lose hope but continues striving to survive by swimming, patience and perseverance can help a person regain lost ground. The Prime Minister added that determination and steadfast effort enable one to overcome adversity. The meeting of heads of National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries will be held under the chairship of India from today to tomorrow in Lucknow. India's BRICS chairship is guided by the overarching theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability BRICS. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform with the national statistical systems, data dissemination and accessibility. US President Donald Trump has said that negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. In Kerala, heavy rain is continuing across the state. Yellow alert indicating isolated heavy rain has been declared in all the 14 districts. Though the intensity of the rain has decreased compared to the last 2 days, heavy rain is continuing in all 14 districts today. Continuous rain in the hilly areas is causing concern, while waterlogging is expected in the upper Kuttanad area. The countdown to the 2030 Ahmedabad Commonwealth Games has officially begun, with the curtain falling on the Glasgow Commonwealth Games last night. Meanwhile, after 11 days of intense competition, Indian athletes departed from Glasgow as a satisfied bunch, after winning 39 medals at the 2026 Games, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze, to end in the fourth position on the standings. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां.

0: नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज फरीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
2: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल

0: हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और नाकामी ये जिंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी जिंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इससे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी जिंदगी में लेते हैं, ये चीज जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
1: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊं। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले, कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था लेकिन उसने अपनी लगन से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
0: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सबके लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियां हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए, असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, असफलता भी बहुत जरूरी है, असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। हमें समझ में आता है ठीक है ये चीज मेरे से फेल हो गई तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे हम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमजोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है, और उसने उन सब चीजों पर ध्यान देते हुए IAS क्रैक किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूंगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये जरूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है और बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूंगी, आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहां पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है। अगर आपकी कमजोरी है आप ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ, और ज्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है। हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ भी बहुत हाई है, उनका EQ भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशेंट। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेजी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे। तो वो जो बात है, जो आलस है या अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए, लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया, अचानक से उनकी शादी हो गई। अब वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली, पैसे का एक दफा आपको टेस्ट लग गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप चाहती हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले, 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके लिए एक दफा आप इंतजार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, साथ में आप कुछ नहीं छोटे बच्चे को संभाल रही हैं तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए, और उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी

चाहिए, लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बने, MBA करें, MA करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं, और पैसे कोई ज्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है। आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए, और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन,

0: बात है, हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि जिंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, जिंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नज़र से उसको देखते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में सफल हो गया। और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
1: बन
0: है।
1: जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है, और हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुंचे। लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर हमें जो सीखना है हमारे कोर्स के लिए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर 300 रुपये में कोर्स हो रहा है, 500 रुपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए। आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जा करके, और जब वो स्किल आप में आ जाता है, अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए, और आप देखेंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप में अगर मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए हैं, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है, लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, और सब कुछ अवेलेबल है।
0: लेकिन कभी आशमा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कभी कभी हमें ज़िंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज़ का चुनाव तो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
1: बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं, या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप, ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए। तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज पे चले जा रहे हैं, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे, और ज़िंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो IAS ऑफिसर बने या IPS ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की, और उसके बाद वो IAS के रूप में या IPS के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद अच्छे IAS ऑफिसर वो बने या अच्छे IPS ऑफिसर बने, और समाज को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की जरूरत है कि क्या हमने जिंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं, कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए,
1: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए,

0: जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए। अगर जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाब को खोने न दें, बल्कि जिंदगी का मुकाबला करें। एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं। इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं सबरस कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे संगीता पंत का ये गीत।

अभी आप सबरस कार्यक्रम में संगीता पंत को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आज आप सुनेंगे राजपाल सिंह का गायन राग बसंत मुखारी में।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप राजपाल सिंह का गायन सुन रहे थे राग बसंत मुखारी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका

फ्रांस, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: हर आंगन।
1: लेकर ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना
2: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
2: तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर मन में इंद्रधनुष देखने की चाहत हो तो भाई थोड़ी सी बरसात और थोड़ी दुश्वारियाँ भी देखनी पड़ती हैं। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और भाई कठिनाइयाँ होती हैं कल्पना, तो फिर याद आते हैं हमें भगवान। और आज सावन महीने का पहला सोमवार है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सावन का जो मास है बहुत प्रिय है और उनकी कृपा पाने के लिए

0: सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं।
1: बिल्कुल, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने तो देखा है कि पूरे सावन कांवड़िए भी लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए वो अपनी मनोकामना पूरी हो इसलिए करते हैं। तो इसी से संबंधित है आज का हमारा प्रश्न भी कि श्रोताओं, जब आप व्रत या उपवास करते हैं तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो आपके जो जवाब हैं वो आपको हमें ईमेल करने हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए अब हम भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं इस भजन के साथ।

0: बात कुछ बात देशभक्ति की, जो
1: जी
0: भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: जी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां किसने नहीं सुनी होंगी, कल्पना, है ना?
0: बिल्कुल, सबने ही सुनी होंगी। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध और पंचवटी जैसी महान कृतियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी की आज है जयंती, और उन्हें हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर नमन।
1: श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो से, और साथ ही याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और उर्दू के प्रसिद्ध शायर शकील बदाउनी साहब को। 14वीं का चांद और प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, न जाओ सैया छुड़ा के मैया, और कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे कालजयी गीत उन्होंने लिखे। और 3 बार कल्पना उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उनकी जयंती पर उन्हें हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सुन ले कल्पना, उन्हीं का लिखा एक गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था कि भाई आपको व्रत में क्या खाना पसंद है। तो हमारे श्रोता हैं कुछ, तो उन्होंने हमें ईमेल भेजा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ ईमेल नवीन कुमार जी का।
1: भाटिया जी, नवीन कुमार
0: नवीन
1: जी का
0: कुमार, दो ईमेल आए हैं, एक नवीन कुमार जी हैं और एक नवीन भाटिया जी हैं। तो नवीन कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका नियमित श्रोता, और आज के प्रश्न का मेरा उत्तर है कि उपवास में मुझे फल, मखाने और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद हैं। वे स्वादिष्ट भी होते हैं।

0: और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, जरूरी तो नहीं है कि सभी का उपवास हो। तो मधु जी कह रही हैं, मधु किरण जागृति इनक्लेव दिल्ली से कह रही हैं कि मुझे तो सावन में बारिश होते हुए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय को जो है पीना और परिवार को खिलाना बहुत पसंद है। और साथ में SP गोयल सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं व्रत में हल्का फुल्का फलाहार और दूध आदि लेना चाहिए, पर केवल इतना लेना चाहिए कि पेट को बिल्कुल पता भी ना चले। बहुत अच्छी
0: बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नवीन भाटिया जी ने भी यही बात कही है कि वो जो है दूध तो लेते ही हैं, साथ ही वो सिंघाड़े के आटे से बने जो व्यंजन होते हैं वो खाते हैं क्योंकि उनका उपवास रहता है।
1: जी। और भाई सावन में प्रकाश गोगिया जी कह रहे हैं कि मुझे तो खीर घेवर बहुत पसंद है। भाई घेवर और सावन का तो हम कहेंगे चोली दामन का साथ है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ऐसे ही हमें ईमेल करते रहें, हमें भेजते रहें अपने उत्तर fmgoldga@gmail.com पर। और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी ज़रूरी है श्रोताओं, क्योंकि रोज़ाना ही हम दिन विशेष की बात करते हैं, लेकिन ये जो पूरा सप्ताह है वो ही हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि वही बड़े होकर हमारे देश के भावी कर्णधार बनने वाले हैं।
1: जी। और साथ ही 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस, जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के महत्व को समझना, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंगदाताओं और चिकित्सकों के योगदान का सम्मान करना है। और कल्पना कहा भी गया है कि अंगदान महादान है ना, जीवन दान। तो हम भी क्यों ना दिल बड़ा रखें और इस दिन के महत्व को समझें और अंगदान जैसी मानवीय पहलू से जुड़ें।
0: बिल्कुल जुड़े। और साथ ही साथ एक मधुर सा गीत भी सुने हमारे श्रोता, 3 देवियां फिल्म से, जिसे गाया है लता।

0: और देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आखिरकार ख़त्म हो गए हैं और एक खूबसूरत सी क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इन खेलों का अंत हो गया है। और इस क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लांबोरिया के पास रहा।
1: जी, और कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, सभी पदक विजेताओं को उन्होंने बधाई दी है। और साथ में बेटियों ने, भारत की बेटियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा।
0: बिल्कुल। और देखिए, इस पे मुझे एक शेर याद आता है
1: जी बिल्कुल
0: कि तेरे माथे पे
1: इरशाद।
0: ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो ये सांचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
1: वाह वाह, क्या बात
0: और
1: है।
0: देखो ना, हमारे भारत की बेटियों ने न सिर्फ आंचल का परचम बनाया है, बल्कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो भारत की बेटियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
1: जी, और आइए बात करते हैं भारत की उन बेटियों की। तो भाई, सबसे पहले वेट लिफ्टिंग की। मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और साथ ही ज्ञानेश्वरी यादव ने भी रजत पदक जीता 53 किलोग्राम वर्ग में, और अस्मिता डे ने और यामिनी मौर्य ने जो है अस्मिता डे ने जो स्वर्ण पदक जीता और यामिनी मौर्य ने फिर रजत पदक जीता। और फिर बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग की बात करें तो भारत की बेटियों ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश को 5 स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।
1: जी
0: पैरा एथलेटिक्स में भी शर्मिला धनकर ने महिला शॉट पुट PF57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में सीमा काली रामना ने महिला डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और उपलब्धि जोड़ी है।
1: तो भाई कल्पना, इन सभी बेटियों ने अपने साहस, मेहनत और प्रतिभा से ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं आज विश्व खेल मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पूरे देश को अपनी इन बेटियों पर गर्व है, और इन पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और जो समर्पण का जो परिचय दिया है, उनकी मेहनत हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया मन्ना डे और आशा भोसले ने।
1: और यहाँ पर भाई खेलों के बाद जो खाने पीने की बात जो कर रही थी तुम, तो ख्याला से उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं तो सावन में हमेशा नमकीन चीज़ें ही खाता हूँ, मुझे तो चाय पकौड़े बहुत पसंद है। और साथ ही मनोहर लाल गांधी जी कह रहे हैं विजयनगर चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से कि सावन के महीने में रिमझिम बरसात हो तो सबसे पहले काम बारिश के साथ गाने सुनता हूँ और साथ में भाई चाय पकौड़े हो जाए तो क्या बात है, नमस्कार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं रचना, सुमन, प्रियंका, मांगेराम, और वो कह रहे हैं नुहिया वाली सिरसा से कि हम तो व्रत के खाने के लिए आलू का हलवा और केला खाते हैं जी, आज हमारा सभी का उपवास है। वाह क्या बात है। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेल आ गई है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो एक फरमाइश लिखकर भेजी है, मिस्कीन परिवार, विष्णु मिस्कीन, रितिका, वाणी मिस्कीन और आवर मिस्कीन, लेकिन हम बता दें ये फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं है, ये तो घर आंगन है, आपका अपना कार्यक्रम, आपका अपना घर आंगन, आपके परिवार का कार्यक्रम। तो जो हम सवाल पूछते हैं ना कि सावन में आपको क्या पसंद है, आज के दिन व्रत के उपवास के दिन क्या खाते हैं। एक और हमारे पास मेल आ गया है सत्यप्रकाश सनोटिया रोहिणी से, कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेमों में जो अभी हमने बात की थी ना कल्पना,
0: जी
1: उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई बेटियों ने ऐसा कमाल कर दिया, जीत कर सोना चांदी तिरंगा आसमान में लहराया और हर बाधा को पार कर रच दिया नया इतिहास, पूरे भारत का मान बढ़ाया और जगाया नया विश्वास। भाई वाह क्या कविता है। मुझे लग रहा है कल्पना कि तुम्हारी कविताओं से प्रेरित होकर हमारे श्रोता भी कहते हैं ना कवि बन गए हैं घर आंगन के प्यार में
0: बिल्कुल,
1: जी
0: हमारे श्रोता सुनते रहते हैं तो कहते हैं ना कि असर होता है संगत का, तो
1: बिल्कुल
0: बातों
1: जी
0: का विचारों का भी संक्रमण होता है, असर होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल एक और मेरे पास आया, अभी आप बोल रही थी कि आलू की बात कर रही थी कि भाई आलू का हलवा पसंद है, तो मुझे लगता है आलू के प्रेमी ज़्यादा हैं। तो राधा शुक्ला जी लिखती हैं कि मुझे भी आलू बहुत पसंद है, आलू फ्राई बहुत पसंद है, लेकिन साबूदाना खिचड़ी भी मैं खा लेती हूँ, पर आलू मेरा बहुत प्रिय है, तो उन्हें
1: जी
0: आलू खाना बहुत पसंद है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल भी लिखते हैं कि भाई हम तो खाने के लिए ही बचपन में उपवास किया करते
1: क्या बात
0: थे।
1: है
0: ये बात
1: भाई,
0: भी
1: उपवास करना और खाने की इच्छा होना ये दो अलग बातें हैं, लेकिन हमारे श्रोता तो कुछ भी कर सकते हैं
0: बिल्कुल सही। और देखिए एक और ईमेल है, गौरी शंकर वर्मा जी कहते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, वैसे हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए, इससे शरीर ठीक रहता है। अब हम
1: जी
0: कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन व्रत के बहाने आदमी खाता नहीं है, कमी खाता है, इसलिए
1: जी
0: शरीर को भी आराम मिलता है।
1: देखिए व्रत उपवास और त्यौहार जो है वो हमारी संस्कृति में से ऐसे जुड़े हुए हैं और ये हमारी जीवन शैली का तरीका ऐसा है कि जो हम प्रसन्न भी रहें और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, खुश रहें। और साथ में सुदर्शन मुखी जी हमसे जुड़ गए हैं शांति नगर सोनीपत से, और वो कह रहे हैं उपवास में तो हम फल का आहार लेना पसंद करते हैं क्योंकि फल से शुद्ध और शुभ कोई हो ही नहीं सकता, शाकाहारी है आहार है तो आपको परिवार जो है वो सावन मास और जीवन बहुत सुख हो, शुभ हो और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। भाई वाह क्या
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: सही है, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और सावन के मौसम का आनंद लीजिए। फिलहाल तो ये प्यारा सा गीत सुनिए।

0: की हवा
1: आहा तुम जा ए काली घड़ा
2: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म से जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने
3: जी। और उपवास का जो हमने खाना पूछा था ना कल्पना, तो ऋचा अवस्थी कह रही हैं कि आई लव साबूदाना की खिचड़ी, है ना, खिचड़ी भाषा ही बोल दी उन्होंने आई लव। और साथ में सुनील प्रजापति वो कह रहे हैं कि भाई उपवास में ज़्यादा मसालेदार खाना मैं अवॉइड करता हूँ और जहाँ तक हो सके तो फल ही खाता हूँ, तो अच्छी बात है। सुनील प्रजापति जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए आप थोड़ा सा हल्का खाएं हैं और ऐसा खाएं कि भाई आप गतिशील भी रहें और आलस भी ना हो, है ना।
2: बिल्कुल सही बात कही। और देखिए भोजन तो आप अपने शरीर के लिए लेते ही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार का जो माहौल है जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके आसपास कैसा मौसम रहता है, हरियाली रहती है या कूड़ा कचरा रहता है,
3: कहीं और लेकर जा रही हो तुम।
2: बिल्कुल हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई देखो आजकल क्या है कि प्लास्टिक को हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं और वही किसी दिन कभी किसी स्कूल पार्क या सड़क किनारे आपको आरामदायक बैठने की जगह भी बन सकता है। तो ऐसी ही एक उदाहरण की हम बात करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी ने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संपदा में बदलने की दिशा में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चम्मच और पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसकी रिसाइकलिंग की जा रही है और इससे आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ बेंच बनाई जा रही है।
3: यानी जो प्लास्टिक पहले नदियों, खेतों और कूड़े के ढेर में प्रदूषण फैला रहा था, वही अब लोगों के काम आ रहा है। वेस्ट टू वेल्थ यानी सिर्फ कचरे का निपटान करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई उपयोगी वस्तु में बदलकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करना है। और इस पहल से ना कल्पना बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। भाई जैसे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो रहा है, कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है और सार्वजनिक स्थानों के लिए टिकाऊ बेंच भी तैयार हो रही हैं और रीसाइक्लिंग उद्योग और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, पर्यावरण साफ सुथरा हो रहा है और सबसे बड़ी बात लोगों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी जो तीन आर हैं वो उसकी सोच मजबूत हो रही है।
2: बिल्कुल सही बात है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल की सराहना मन की बात कार्यक्रम में की है, तो हमें अपने जीवन में इसे उतारने का भी संकल्प करना चाहिए। और ये बहुत आसान है क्योंकि यदि हम अपने घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग की आदत अपनाएं, तो हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। देखिए हमें याद रखना है कि कचरा तभी तक कचरा है जब तक हम उसकी उपयोगिता को नहीं पहचानते। सही सोच और सही तकनीक से वही कचरा बन सकता है भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। और जब कचरे का सदुपयोग होने लग जाए ना कल्पना, तो भाई रास्ते भी साफ सुथरे होंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आदमी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम के अनुसार कि भाई मुझे दो पंक्तियाँ याद आती, मैं सुना दूँ
1: जी बिल्कुल।
0: कि बरसे सावन भीगे मन मुस्कानों की हो बौछार, रूठे रिश्ते फिर से महके मिट जाए हर तकरार।
1: भाई क्या बात है, आज सावन का सोमवार है। मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल सावनी सावनी हो रखी हो, और हरे रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं सावन के अनुसार। और भाई
0: चूड़िया
1: क्यों ना
0: भी।
1: हो, जी हाँ हरी चूड़ियाँ भी हैं। भाई क्या बात है, तो
0: जी
1: भाई भोले बाबा के भक्तों के लिए तो आज का दिन बड़ा विशेष है। हमने गीत भी शुरुआत ऐसे ही किया था, लेकिन सावन की तो बात ही क्या है ना। तरह तरह के त्योहार आते हैं, तरह तरह के श्रावणी मेले लगते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, जब धरती पर सावन बरसता है तो दिलों में भी अपनापन खिल उठता है। सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास का एहसास भी है। तो सबसे पहले देखो, इस बार की मैं बात करूं तो देश प्रेम के भाव भरता हुआ स्वतंत्रता दिवस आएगा, और वो हमें याद दिलाता है
1: जी,
0: कि देश के साथ हमारा रिश्ता कितना अनमोल है।
1: और पूरा माह जो है वो तरह तरह के त्योहारों से भरा हुआ है। हरियाली तीज आएगी, नागपंचमी आएगी, और रक्षाबंधन जैसे जो पावन पर्व है वो हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते जो है कल्पना केवल खून के नहीं होते, बल्कि प्रेम और विश्वास और समय के से भी बनते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन सावन हमें ठहरना सिखाता है, मिलना सिखाता है, मुस्कुराना, हालचाल पूछना और दिलों की दूरियां मिटाना सिखाता है। जैसे बारिश की फुहारें ना सूखी धरती को नई हरियाली देती है ना, वैसे ही दोस्तों प्यार भरे जो दो शब्द होते हैं और थोड़ा सा अपनापन जब मिल जाता है, तो भाई रिश्तों में भी सावन आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए इस सावन केवल पेड़ पौधों को ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह विश्वास और संवाद की बारिश से सींचे, क्योंकि रिश्तों की असली हरियाली दिलों के जुड़े रहने में ही है। और इस बात पर ये दो पंक्तियां और मैं अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि
1: जी
0: प्रेम भरोसे अपनेपन की रखें सदा पहचान, रिश्तों की हरियाली से ही खिलता है इंसान। तो आइए इस सावन सिर्फ धरती ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह की फुहार से सींचे, यही है।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुन रहे थे पड़ गए झूले बहू बेगम फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने। देखिए, झूले पड़ते हैं तो झूला झुलाने वाला भी कोई चाहिए होता है, और फिर जब वो आता है झूला झुलाता है तो सावन का असली आनंद आता है।
1: जी, और एक मेल पढ़ देती हूँ। ये मेल हमें प्राप्त हुई है मयूर विहार से। सुरभि कह रही हैं कि उपवास का भोजन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा दे, पचने में हल्का हो और लंबे समय तक पेट भरा रखे। तो वो कह रही है उपवास में जो कुछ लोकप्रिय व्यंजन और पौष्टिक भोजनों का उन्होंने नाम लिख कर भेजा है, कह रहे हैं भाई साबूदाना खिचड़ी या कुट्टू के आटे की रोटी, दही के साथ आलू की सब्जी, सिंघाड़े के आटे का चीरा या हलवा, सामक के व्रत के चावल या खिचड़ी और पुलाव, भुने हुए मखाने, मूंगफली और दही, उबले और सेंधे नमक वाले आलू, ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, दूध, दही, लस्सी और छाछ यदि आप व्रत में खा सकें तो, और नारियल पानी और नींबू पानी सेंधा नमक के साथ, वो कह रही हैं। और साथ में एक संतुलित मेन्यू उन्होंने बना के भेजा है भाई, सुबह थोड़े से भीगे बादाम और दूध, केला।

0: ले लें दोपहर में सामक की खिचड़ी, और शाम को अगर आपका मन करे तो थोड़ी सी आलू की सब्जी और कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। तो बड़ा संतुलित सा उन्होंने बना के भेजा है। भाई इतने सारे व्यंजन, कल्पना तुम क्या खाने वाली हो?
1: मैं भी यही खाती हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे भी आलू थोड़े से पसंद है तो मैं आलू खाती हूँ।
0: लेकिन हमारे श्रोताओं को तो गीत पसंद है,
1: श्रोताओं के गीत सुनाएंगे, लेकिन अब गीत सुनाने का आज हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई बरसात का मौसम का आपको आनंद भी लेना है
0: जी।
1: गीत संगीत तो हमने सुनाया ही, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जैसे हम व्रत के उपवास के व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं तो मखाने और मूँगफली भी भून के रख लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ सेंधा, और उसके बाद चाय के साथ उसका भी आनंद लेती हूँ। और कई बार जो आलू होते हैं ना, उनको पतला पतला काट के तवे पर,
0: आलू से हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा,
1: घी लगा
0: फलों
1: के
0: की
1: वो
0: ओर
1: ट्राई
0: आते
1: करती
0: हैं,
1: हूँ।
0: है ना। और समय हो गया है दोस्तों से विदा लेने का, कल्पना।
1: बिल्कुल, तो आप अपना ध्यान रखिए श्रोताओं, और इसी जानकारी के साथ मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी कल्पना को
0: और
1: और
0: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आंगन
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे? आप सोचिएगा, इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा?
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के

0: इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समवीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognised centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats as the pandemonium continued. The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashwani News, he criticised the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in 3 assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारा जो आज का जो फिल्म है वो है पतंगा, 1949 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म एच एस रवेल द्वारा निर्देशित की गई थी, जो उनकी पत्नी अंजना द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित थी। राजेंद्र कुमार, जो भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए, पतंगा में निर्देशक एच एस रवेल के सहायक के रूप और फिल्म में एक कैमियो भी किया था। WW2 की पृष्ठभूमि पर गाया गया युगल गीत, जो कि आप सुनेंगे, मेरे पिया कई रंगून, जो अभिनेता गोप और मोहना केबरल पर फिल्माया गया था, वो बेहद लोकप्रिय हुआ। श्रोताओं, इस गीत के पार्श्व गायक सी रामचंद्र थे, जिन्होंने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया था, और शमशाद बेगम कलाकारों में थी निगार सुल्ताना, श्याम याकूब, गोप पूर्णिमा, श्यामा रणधीर और मोहना शामिल थे। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही लोकप्रिय गीत, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये कहानी याकूब, जो कि राजा के किरदार में है, उनकी वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन अपनी नौकरी के दौरान निगार सुल्ताना यानी रानी नाम की एक स्ट्रीट सिंगर के गाए गाने से उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने ट्रैफिक स्टेशन से निकल जाता है। इससे एक गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और राजा को बिना सैलरी के 1 साल के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। रानी राजा की मदद करने का फैसला करती है और दोनों को नाथा राम गोप के गोप थिएटर में एक्टिंग की नौकरी मिल जाती है।

राजा और रानी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक अमीर जमींदार का बेटा श्याम फिल्म में आता है। रानी को स्टेज पर देखते हुए श्याम को उससे प्रेम हो जाता है। इस तरह शुरू होता है क्लासिक लव ट्रायंगल, जो तब बनता है जब दो आदमी एक ही औरत से प्यार कर बैठते हैं।

इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि राजा खुद को रानी को ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है कि वह उसे प्यार करता है और दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाहता है। इस लव ट्रायंगल को और मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि शाम की पहले से ही पूर्णिमा से सगाई हो चुकी है और रानी के लिए उसका प्यार उसे ठीक नहीं लगता। फिल्म इस मुश्किल लव ट्रायंगल में पैदा होने वाले झगड़ों के हल के साथ आगे बढ़ती है।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और इस गीत के बीच ही हम आपको आपके सामने कुछ संदेश पढ़ना चाहते हैं। जो हमारे पास संदेश आया है वो आया सुदर्शन शाह का और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। इनके साथ है प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। अगला संदेश है नीतीश देवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूर्णराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है यशमीत यशु का और इनके साथ है निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। यह हमें लिखकर भेज रहे हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। और अगला संदेश है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़, ठाकुरावाला से। कमलकांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, पिपरिया से। अगला संदेश है गुरमीत सिंह का, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल लिख रहे हैं हमें। सोमदत्त जी का अगला संदेश आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब, इनके साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। अगला संदेश है आर कुमार से, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गजनेजा और पूनम गजनेजा जी का। अगला संदेश है भवरपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन का। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कि इनको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो संदेश है वो है राजकुमार डूडी का और जिला हिसार से और इनके साथ है प्रमोद कुमार डूडी। अगला जो संदेश है वो है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से और ये लिखकर हमें भेज रहे हैं, वो हमें नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, जो आपने लिखा है आज की जो फिल्म है पतंगा, वो एक बेहद कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है और इसका जो ये गीत है मेरे पिया गए रंगून, ये सभी को बेहद पसंद है। अगला जो संदेश है वो है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी। और अगला संदेश जो है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं डबवाली से, मंडी डब्बाली से। और अगला जो संदेश है भागवत वर्मा का है, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा इनके साथ है। अगला जो संदेश है मोहम्मद फरहान का है और इनके साथ है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरात, नरगिस खातून।

श्रोताओं, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है अजीत भापसर का, और साथ ही जो अगला संदेश आया है संजय ढींगिया जी का, इनके साथ है नमन ढींगिया पार ढींगिया। अगला संदेश है शक मोहम्मद का, और इनके साथ है खतीजा बेगम, साथ ही मोहम्मद अशफाक का, और

कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का और इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बसंत कुमार सिन्हा का और इनके साथ, ये भी हमें लिखकर भेज रहे, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। अगला जो संदेश है सुदर्शन मुखी का आया है, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर से। प्रकाश वर्मा हमें लिखकर भेज, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश जो है वो है, श्रोताओं हमें बस बहुत सारे भर भर के संदेश आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी की वजह से हम इस कार्यक्रम का यहीं पे, जो ही हमारा एक ही फिल्म से कार्यक्रम चल रहा है, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेके ठीक कल, यानी दिन के 1:10 पर। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त।

0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो विच होईयां राष्ट्रमंडल खेडां च भारत दे शानदार प्रदर्शन लई वधाई दित्ती। उन्हां कहा कि भारतीय टीमां ने इन्हां खेडां च 39 तमगे जित के तमगा सूची च चौथा स्थान हासिल कीता है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत दे पैरा अथलीटां ने 3 सोने दे, 2 चांदी दे अते 2 कांसे दे तमगियां समेत 7 तमगे जित के राष्ट्रमंडल पैरा खेडां विच हुण तक दा सब तों वधिया प्रदर्शन करके इतिहास रचिया है। इस तों बाद श्री राधाकृष्णन ने सिफल कार शुरू कीता अते कई मैंबरां ने बहुत अहम मुद्दे चुके, पर विरोधी धिर दे मैंबरां ने वख-वख मुद्दियां उत्ते नारेबाजी शुरू कर दित्ती अते हंगामा जारी रहन उत्ते सदन की कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई। सरकार ने कहा है कि 2028 दीआं लॉस एंजलस ओलंपिक खेडां दीआं तैयारियां दे हिस्से वजों टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तहत 369 उच्च पदरी खिडारियों नूं सहायता प्रदान की जा रही है। नौजवान मामलों ते खेडां बारे केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज लोक सभा च एक लिखती जवाब राही ए जानकारी दित्ती। उन्हां दस्सिया कि इस स्कीम तहत पिछले 5 माली सालां दौरान 125 करोड़ रुपए की रकम अलाट की गई है। मंत्री ने कहा कि टॉप स्कीम तहत चुने गए खिडारियों नूं उन्हां दी खास सिखलाई ते मुकाबले दीआं जरूरतां लई माली सहायता प्रदान की जाती है। पंजाब विधानसभा का 7 दिना मानसून इजलास अज तों शुरू हो गया है। सदन ने विधानसभा के पिछले इजलास तों बाद विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि भेट की। इजलास दौरान सदन ने जिन्हां नूं श्रद्धांजलि भेट की उन्हां च साबका विधायक साही राम बिश्नोई, फौज के 2 जवान सरबजीत सिंह अते सिकंदर सिंह, आजादी घुलाटीए सेवा सिंह अते खिडारी रणधीर सिंह, बैंकाक एशियन खेडा दौरान शूटिंग मुकाबले च भारत के पहले सोन तमगा जेतू अते पंजाबी गीतकार भोला राम शामिल ने। सदन ने उन्हां नौजवानों नूं भी श्रद्धांजलि भेट की जिन्हां ने नीट पेपर लीक तों बाद हाल ही विच होए विरोध प्रदर्शनों दौरान अपनियां जानां गवा दित्तियां सन। जिवें ही इजलास 12 बजे प्रश्नकाल नाल मुड़ शुरू होया तां स्पीकर ने लगभग 20 मिंटां दे कामकाज तों बाद इस नूं दुबारा 12:30 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ता। बिहार, गुजरात अते मध्य प्रदेश दे 3 विधानसभा हलकियां दीआं ज़िमनी चोणां लई वोटां दी गिणती जारी है। बिहार दे बांकीपुर तों जनसुराज पार्टी दे प्रशांत किशोर अगे चल रहे ने, जदकि गुजरात दी मंजलपुर सीट तों बीजेपी दे सतेंद्र भाई पटेल अते मध्य प्रदेश दी दतिया सीट तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे घनश्याम सिंह अगे चल रहे ने। इह खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल ए @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज ए RNU-AIR जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल ए @AIR जलंधर। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवाना वालों दायर जिनसी शोषण के मामले च भारतीय कुश्ती महासंघ के साबका मुखी ब्रिज भूषण शरण सिंह अते सह मुलजम विनोद तोमर नूं अज बरी कर दिता है। वधीक मुख न्यायिक मैजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने बीजेपी के साबका संसद मैंबर ब्रिज भूषण शरण सिंह महासंघ के साबका सहायक सकत्र विनोद तोमर नूं इस मामले च बरी किया है। अदालत ने 6 महिला पहलवाना वालों दायर मामले च अंतम बहस पूरी होने तो बाद 2 जुलाई नूं अज तक लई फैसला राखवां रख लिया सी। इस मामले च मई 2024 इक अदालत ने श्री सिंह खिलाफ अपराधिक धमकी का इल्जाम तय करने का निर्देश दिता सी। भारत ने 2023 च डिजिटल प्लैज पोर्टल की शुरुआत तो बाद 3 साल दौरान आधार तस्दीकशुदा अंग दान लई कीते गए 5 लाख तो वध अहद प्राप्त किए ने। नवी दिल्ली विच 16वें भारतीय अंग दान दिवस समागम नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अज दस्सिया कि पिछले 12 साल दौरान भारत च हर साल किए जाने वाले अंग ट्रांसप्लांटा की गिनती वध के 20,000 तो वध पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपने मन की बात प्रोग्राम राही अंगदान नूं उत्साहित करन दे यतना दा जिक्र करदिआं उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं अंगदान नूं सब तों महान दान वजों मानता देने की अपील की सी। मंत्री ने कहा,
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: श्रीमती पटेल ने यह भी कहा कि अमरीका ते चीन तो बाद अंग ट्रांसप्लांट करने के मामले च भारत दुनिया च तीजे स्थान ते पहुंच गया है। पवित्र महीने सौन का पहला सोमवार अज बहुत श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। यह देश भर के भगवान शिव के श्रद्धालुओं लिए एक विशेष मौका है। महाकाल के शहर उज्जैन विच भगवान महाकालेश्वर की शानदार पालकी यात्रा लिए व्यापक प्रबंध किए गए ने। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर NSO के मुखिया की 2 दिन मीटिंग अज उत्तर प्रदेश के लखनऊ विच शुरू हो रही है। यह मीटिंग ब्रिक्स देशां जिन्हां च ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अफरीका, मिसर, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब अते संयुक्त अरब अमीरात शामिल ने दे प्रतिनिधियों नाल भारत की प्रधानगी हेठ होवेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच प्रदर्शनकारियों अते सुरक्षा बलों दरमियान हिंसक झड़पां तों बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मनुखी अधिकार समूहों का इल्जाम है कि मृतकों की गिनती काफ़ी वाधा होया है। इस इलाके की मनुखी अधिकार बारे कौंसल वालों जारी किए अंकड़े मुताबक मरण वाले की गिनती 80 तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडा च भारतीय दल की शानदार कारगुजारी से वधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम के प्रदर्शन से माण महसूस हो रहा है। खास खबरां एक बार फिर सुन लो। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट प्रीख्या लैके विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे कारण दोपहर 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब विधानसभा का 7 दिन मानसून इजलास अज तो शुरू हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवाना वालों दायर जिनसी शोषण के मामले च भारतीय कुश्ती महासंघ के सबका मुखी ब्रिज भूषण शरण सिंह और सह मुलजम विनोद तोमर को बरी किया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 होएगा।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर 3रे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कई मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला भी शामिल है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक महकमे के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने आदादोशुमार से मुतालिक भारतीय इंस्टीट्यूट बिल 2026 पेश किया। मस्कूरा बिल का मकसद आदादोशुमार के उलूम और मुतालिका शोबों में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मरकज के तौर पर मस्कूरा भारतीय इंस्टीट्यूट के लिए एक जामे आईनी फ्रेमवर्क फराहम करना है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद बैंकर्स बुक्स के ताल्लुक से शवाहिश से मुतालिक कानून मुरतब करना और इसे मौजूदा डिजिटल बैंकारी तौर तरीकों के साथ हम आहंग बनाना है। इधर अपोजिशन के अरकान नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। इससे कबल जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की।
3: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
2: राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। आज दिन में 11 बजे जब ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जनाब राधाकृष्णन ने इसके बाद वक्फा सिफर की कार्रवाई शुरू की اپوزیشن ارکان نے مختلف معاملات پر

0: नारेबाजी शुरू कर दी। मरकजी वजीर संजय सेठ और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले एक मेंबर पार्लियामेंट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए भर्ती के अमल में संगीन बेसाब्दगियों का इल्ज़ाम लगाया है और ये दावा किया है कि मुस्तहक उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं किया गया, जबकि उन उम्मीदवारों को चुन लिया गया जिनके नंबर बहुत कम थे। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए जनाब संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एजिटेशन जारी रहने के बावजूद रियासती सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात नहीं की। इधर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने लोकसभा की इस्तेहकाक कमेटी को एक नोटिस पेश किया है और पार्लियामेंट के अहाते में आज़ाद मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव की जानिब से मुराद शिकनी का इल्ज़ाम आयद किया है। पार्लियामेंट अहाते में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब संजय जायसवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब पप्पू यादव ने आइन की दफ़ा 25 की खिलाफवर्जी की है जो मजहब की आज़ादी की गारंटी देता है।
1: भारत का संविधान जो 25 के तहत हर धर्म के सम्मान को ही आज़ादी देता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। लोकसभा का ये जो पूरा प्रेमिसेज है, इसके कस्टोडियन माननीय स्पीकर महोदय हैं और मकर द्वार के सामने भी जो कुछ हुआ है उस पर हर हालत में स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर 28,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मंजलपुर असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल को 46,000 से ज़्यादा वोटों की सबकत हासिल है। मध्य प्रदेश के दातिया असेंबली हलके में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 31,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। इन तीनों असेंबली हलकों में ज़िमनी चुनाव पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती की खातून खिलाड़ियों की जानिब से दाखिल करदा जिंसी तौर पर हिरासत किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह और साथी मुलजिम विनोद तोमर को इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्रजभूषण और भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इससे कबल मई 2024 में एक अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डराने धमकाने का इल्ज़ाम तय करने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ ना दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया गंजुम जिले में मुख्तलिफ तालीमी सकाफती और सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज़ के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आज़ा अतिया में देने के 5 लाख से ज़्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आज़ा के अतिया के 16वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आज़ा बदलने के मामले बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं।
2: हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
0: मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आज़ा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत 3रा मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसों के तवसुस से ईरान के साथ बातचीत आज होने वाली है। एयरफोर्स वन में सवार नामनिगार से बात करते हुए सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के वसीले सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती राबतों के तनाजुर में उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया जिसके तहत एक बड़ा हमला करने का मनसूबा बनाया गया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ीली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश होने का इम्कान

0: उधर ओडिशा में सभी बड़े दरियाओं और उनकी 52 नदियों में पानी की सतह कम होने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में रफ्तार रफ्तार बेहतरी आ रही है। ये खबर भी सुन लीजिए। बिहार के बांकीपुर असेंबली के जिमनी चुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबरा ब्रिजभूषण चरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5,00,000 से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर तीसरे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मौर्य बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brijbhushan Charan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5,00,000 Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognised centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman also introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for a law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. Earlier, when the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the house. Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Mr. Radhakrishnan then took up 0 hour in the upper house. Opposition members started sloganeering over their issues. Amid uproar, several members raised issues of urgent importance. As the ruckus continued, the chairman adjourned the house till 2 p.m. Counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by over 8,000 votes. In Gujarat's Manjalpur Assembly constituency, Bharatiya Janata Party candidate Satyendra Bhai Patel is leading by over 27,000 votes. In Madhya Pradesh's Datia Assembly

0: West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in. The Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की तीन सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को

0: तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए।

0: इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे संगीतकार हुए जिन्होंने सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी, लेकिन कुछ ऐसे भी फनकार थे जिन्होंने गानों को सिर्फ हिट नहीं बनाया बल्कि अमर बना दिया। ऐसे ही एक खामोश, संजीदा और बेहद प्रतिभावान संगीतकार थे जयदेव जी। जयदेव जी का पूरा नाम जयदेव वर्मा था। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1918 को अफ्रीका के नैरोबी में हुआ था। जयदेव जी एक ऐसे संगीतकार थे जिसने कभी लोकप्रियता की दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन अपनी सादगी और सुरों की गहराई से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लिया। अफ्रीका में जन्मे जयदेव जी कैसे हिंदी सिनेमा के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र बने और कैसे रहा इनका ये सफ़र, इसी पर हमारा आज का ये प्रोग्राम है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले उन्हीं की फिल्म हम दोनों से ये बेहतरीन सा गीत जिसका संगीत दिया था खुद जयदेव जी ने।

जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना जिसका संगीत दिया था जयदेव जी ने। श्रोताओं, अफ्रीका में कुछ समय बिताने के बाद जयदेव जी की फैमिली पंजाब के लुधियाना शिफ्ट हो गई। पिता रेलवे में जॉब करते थे। जयदेव जी को बचपन से ही दो चीज़ों का जुनून था, एक संगीत और दूसरा फिल्में। महज 15 साल की उम्र में वे हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई भाग आए। कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन किस्मत का को तो उनसे कुछ और ही करवाना था। पिता के निधन और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते इन्हें वापस घर लौटना पड़ा, पर संगीत का जो जुनून उनके अंदर आ चुका था उसने इन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। अपनी लगन से क्लासिकल म्यूज़िक की बारीकियों को सीखना शुरू किया। फिर लुधियाना से लखनऊ का सफ़र तय किया और मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। और जब उस्ताद अली अकबर खान नवकेतन फिल्म्स की फिल्मों के लिए मुंबई आए तो ये जयदेव जी को भी अपने साथ असिस्टेंट के रूप में ले आए। इसके बाद जयदेव जी को साथ मिला हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन जी का और एसडी बर्मन दादा का। यहाँ से इनकी लाइफ ने यू टर्न लिया और इसके बाद ये संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते चले गए। इनके संगीत में सफ़र की बातें आगे और भी करेंगे, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म प्रेम पर्वत फिल्म से ये बेहतरीन गीत सुनने का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं, और बात कर रहे थे हम संगीतकार जयदेव जी की। मुंबई पहुंचकर जयदेव जी सालों तक SD बर्मन के असिस्टेंट रहे, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट और गाइड जैसी फिल्मों के संगीत में जयदेव जी के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बतौर इंडिपेंडेंट संगीतकार इन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म जोरू का भाई और अंजलि में। इनके गाने पसंद तो किए गए, लेकिन जिस एक मोड़ का हर कलाकार को इंतज़ार होता है वो बड़ा ब्रेक अभी बाकी था। जयदेव जी बिना किसी हड़बड़ी के शांत भाव से अपनी धुनें बनाते रहे और सही मौके का इंतज़ार करते रहे। फिर आया साल 1961, वो पल आया जिसने जयदेव जी को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। फिल्म थी हम दोनों। देवानंद साहब की इस फिल्म का संगीत ऐसा बना कि आज 6 दशक बाद भी इसके गाने हर पीढ़ी की जुबान पर है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी को इतने हल्के फुल्के और दार्शनिक अंदाज में पेश करना सिर्फ जयदेव जी के बस की ही बात थी। और इसी फिल्म का गाना अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, इसे तो आज भी दुनिया का सबसे खूबसूरत रोमांटिक नगमा माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया भजन अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम आज भी देश के कोने कोने में शांति और भक्ति का प्रतीक है। सिर्फ एक फिल्म के संगीत ने साबित कर दिया कि जयदेव जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि भावनाओं के बहुत गहरे पारखी थे। इनके पास हर तरह के गानों को संगीत देने की अद्भुत कला थी। तो चलिए सुनते हैं इसी दौर की एक फिल्म मान जाइए का ये शानदार सा गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं जयदेव जी। दोस्तों, फिल्म हम दोनों की भारी सफलता के बाद भी जयदेव जी ने कभी कमर्शियल रेस में भाग नहीं लिया। इन्होंने बड़े बजट की फिल्मों के बजाय उन फिल्मों को चुना जहां इन्हें संगीत के साथ प्रयोग करने की पूरी आज़ादी मिले। इनकी इसी आर्टिस्टिक सोच का नतीजा था कि ये हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे संगीतकार बने जिन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवार्ड मिला। पहला नेशनल अवार्ड सुनील दत्त साहब की फिल्म रेशमा और शेरा के लिए मिला। इसमें राजस्थान की फोक म्यूज़िक और शास्त्रीय रागों का जो तालमेल इन्होंने पेश किया था वो शानदार था। दूसरा नेशनल अवार्ड मिला फिल्म गमन के लिए। इस फिल्म में शहर की तन्हाई को बयां करता गाना सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है हर ट्रैवलर के दर्द की आवाज़ बन गया। और तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला फिल्म अनकही के लिए। जयदेव जी ने कभी लीक पर चलना स्वीकार नहीं किया, ये हमेशा प्योरिटी ऑफ म्यूज़िक के पीछे ही भागते रहे। तो चलिए इनके म्यूज़िक को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म घरौंदा का ये दिल को छू लेने वाला गीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

जी हाँ दोस्तों, जयदेव जी की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी थी कि वे नए हुनर को पहचानने में देर नहीं लगाते थे। आज हम जिन दिग्गज सिंगर्स के फैन हैं, उनमें से कई नामी कलाकारों को पहला बड़ा ब्रेक जयदेव जी ने ही दिया था। सुरेश वाडेकर, हरिहरन और छाया गांगुली जैसे फेमस सिंगर्स को इन्होंने ही फिल्म गमन के जरिए पहली बार मौका दिया। छाया गांगुली ने तो प्लेबैक सिंगिंग का नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इतना ही नहीं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी की फेमस मधुशाला को जब मन्ना डे साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया तो उनका जो संगीत था वो भी जयदेव जी ने ही तैयार किया था। साहित्य और कविता की इन्हें काफ़ी गहरी समझ थी, जिस वजह से ये इनको सहज और सुरीले धुनों में पिरो देते थे। तो चलिए इसी मिठास को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म गमन का ये गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले इतने बड़े संगीतकार जयदेव साहब की निजी ज़िंदगी कैसी थी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जयदेव जी का जीवन बेहद सादा था। इन्होंने कभी शादी नहीं की और मुंबई के एक छोटे से कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। 6 जनवरी 1987 को इस महान संगीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनका संगीत आज भी फैंस के दिलों में धड़कता रहता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस वक्त अपराह्न के 3 बजे हैं और अब वक्त है आपके मन पसंदीदा सेगमेंट मैटिनी मेलोडीज का। तो आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म प्रिंस के गीत के साथ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत जीने की राह फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओ, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमें संदेश भेज रही हैं और इन्होंने भेजा है कि हमारा संदेश हमारा कार्यक्रम भी सुन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको पसंद आ रहा है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो है मास्टर अशोक कुमार वर्मा का, और इनके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतुआ मुकेश जगताप।

दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र और शुरू से सजाया था शंकर जयकिशन ने। तो श्रोताओं चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जो कि है मेरा साया फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, हमारे पास संदेश आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और उन्होंने लिखा है, दीक्षा जी सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मन भावनगी और मोहक प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला संदेश है वो है असलम खान का, और इनके साथ हैं रेशमा खान, और उन्हें भी हमारे गीत पसंद आ रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त अपराह्न के 3:30 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: उर्दू मजलिस के तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, जब हम किसी इंसान की शख्सियत की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी आदतों, उसके बर्ताव का ज़िक्र करते हैं जो हमारे तजर्बे का एक ख़ास हिस्सा होता है। आम तौर पर हम जानते हैं कि लोग अपने बारे में अलग अलग ख़यालात रखते हैं। किसी शख्स के ख़यालात उसकी इनफरादियत को ज़ाहिर करते हैं, और ख़ासकर एक शायर का सोचने का तरीका और उसके एहसासात और जज्बात जो दूसरे शुआरा से मुख्तलिफ होते हैं, वो इन्हीं खुसूसियात की बिना पर पहचाना जाता है और आवाम में हर दिल अज़ीज़ हो जाता है। आज हम आपकी मुलाकात प्रोग्राम रूबरू में एक मारूफ शायर से करा रहे हैं। आप हैं जनाब आलम खुर्शीद, आपसे बातचीत कर रहे हैं जनाब ज़ुबैर शादाब।
1: सामईन, सबसे पहले हम आलम खुर्शीद साहब का इस्तकबाल करते हैं। उर्दू मजलिस के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है।
2: बहुत शुक्रिया ज़ुबैर शादाब साहब, आपका और उर्दू मजलिस का।
1: आज हम अपने अहद के एक मारूफ व मशहूर शायर आलम खुर्शीद से, उनके शेरी सफ़र के ताल्लुक़ से, उनकी तख्लीकियत के ताल्लुक़ से और शायरी के मुख्तलिफ आबाद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। ये सवाल उनसे क्यों ना किया जाए कि आपने शायरी कब, कैसे और क्यों शुरू की?
2: मैंने शायरी तकरीबन 78 के आसपास बाज़ाब्ता शुरू की, और शुरू करने की वजह ये रही कि उस तरफ मेरी तवज्जो हुई कि कुछ लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ उठना बैठना हुआ जो शायरी करते थे, अफसाने लिखते थे। उससे कबल मेरा शायरी से या अफसाने से कोई वास्ता नहीं था, मैं स्पोर्ट्समैन था। तो उन लोगों के साथ बातचीत करते करते, उन लोगों को सुनते सुनते कुछ तहरीक हुई कि मैं भी कुछ कहूं, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ।
1: उस ज़माने के कुछ मुंतखब अशार आप सुनाएं तो हम लोग भी महसूस हों, अंदाज़ा भी हो कि आपने किस नवयत की शायरी से अपनी शायरी का आगाज़ किया।
2: ज़हन पर ज़ोर दूँ तो कुछ अशार याद आते हैं कि शिकम की आग से बढ़कर कोई वबाल है क्या।
1: वाह।
2: शिकम की आग से बढ़कर कोई वबाल है क्या, हमें खबर ही नहीं हिजर क्या विसाल है क्या।
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
2: और उठा रहा हूँ सिपर अब मैं तेग के बदले, मेरे खुदा ये मेरी साते जवाल है क्या।
1: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा,
2: शुक्रिया। और बहुत गुमान है खुद पर तो मेरे साथ चलो,
1: बहुत गुमान है खुद पर तो मेरे साथ चलो,
2: बहुत गुमान है खुद पर तो मेरे साथ चलो, हवा के रुख पे भी चलना कोई कमाल
1: कमाल है क्या। वाह। तीन अशार आपने इनायत किए और इससे आपके तख्लीकी रुझान का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि एक नौजवान का मसला क्या होता है या उसके मसाइल क्या होते हैं। और फिर ये कि सवाल करने की जरूरत, एक बेइत्मीनानी का मामला, ये तमाम चीज़ें सामने आ गईं। अगर आपसे ये मालूम किया जाए कि ज़ात और कायनात या दाखिली और ख़ारजी मामलात जो हैं, उनको बरतने में आप क्या तरीक़ा अख्तियार करते हैं, किस मामले को ज़्यादा फ़ौकियत देते हैं, या कहाँ पे आपको ये महसूस होता है कि ये एक फ़िक्र है या एक मसला है या जज्बा है या असर है, इसको शेरी क़ालिब में ढालना लाजमी है।
2: दाखिली

0: और ख़ारजी का जहाँ तक मामला है, तो दाखली ख्यालात को या जज्बात को उसको शेर बनाते वक्त थोड़ी सी उसमें अलामती या पेचीदगी कहिए वो आती है
1: जी,
0: और ख़ारजी मामला थोड़ा उसके मुकाबले में निस्बतन सीधा होता है
1: जी।
0: तो मैं इन दोनों को इस तरह से बरतने की कोशिश करता हूँ।
1: तो ये जो मौजूआत होते हैं, जैसे दाखिल की कोई बात है जो आपकी ज़ात से मुत्तसिल हो, उसको जब आप बरतते हैं तो उसकी जो कैफियत होती है या जो आपका लिसानी कलीशा होता है वो किस नवयत का होता है, और ख़ारिज का कोई बहुत बड़ा हादसा हो या वाक़या हो या एक छोटा सा कोई लम्हा हो जिसको आप शेर में महफूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह की ज़बान का आप इस्तेमाल करते हैं? क्या दोनों में फ़र्क महसूस करते हैं आप?
0: थोड़ा सा फ़र्क ये महसूस होता है कि मैं कोशिश करता हूँ जो ख़ारजी या जो वाक़यात से जुड़े हुए हो उनको कोशिश करता हूँ कि ऐसी ज़ुबान में कही जाए कि जो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं हो लेकिन ख़ारजी के मुकाबले में वो जो है थोड़ी उसकी ज़बान साफ़ हो और सीधी हो
1: दाखली के मुकाबले।
0: हाँ,
1: आलम खुर्शीद साहब, आपके शेरी सफ़र की मुद्दत जो है तकरीबन 45-47 साल को मुहित है, और आपके मुतअद्दिद मजमूए आ चुके हैं, इंतखाबात आ चुके हैं, उर्दू के अलावा देवनागरी में आपकी शायरी मौजूद है। क़ारईन का रद्द अमल हम जानना चाहेंगे कि जो आपके राबते में आते हैं आपकी तख्लीक को पढ़ के, आपकी गज़लों को, नज़मों को पढ़ के, तो क्या उर्दू क़ारईन और हिंदी क़ारईन का जो रद्द अमल होता है वो यकसां होता है, और किस नवयत का रद्द अमल होता है?
0: उस तरह से रद्द अमल के बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ हिंदी क़ारईन का या उर्दू क़ारईन का क्या होता है मामला। उर्दू ज़ाहिर है कि उर्दू गज़ल का एक पस मंज़र रहा है और उर्दू से जुड़ी हुई गज़ल रही है, इसलिए अशार के मामले में जहाँ उर्दू वाले जिन अशार की तारीफ़ करते हैं उन अशार में जो लवाजमात हैं शेरी लवाजमात ज़्यादा हैं उनकी तारीफ़ वो ज़्यादा करते हैं, और हिंदी वाले जो करते हैं जिसमें जो थोड़ा सिंपल अशार हों उनकी पज़ीराई ज़्यादा करते हैं।
1: तो गोया ये है कि अगर हम ये कहें कि एक चीज़ होती है शेरी तज़ईन और एक चीज़ होती है शेरी तरसील, या शेरी भी हटा दें तो तज़ईन और तरसील, तो तख्लीक में जो इजहार का मामला होता है, आपके नज़दीक क्या इन दोनों के दरमियान एतदाल का होना लाजिम है, या आप तज़ईन को ज़्यादा फ़ौकियत देते हैं, या तरसील ज़्यादा अहम है आपकी नज़र में?
0: तरसील है, लेकिन तरसील इस तरह से ना हो कि बिल्कुल वो नाशायरी हो जाए
1: जी,
0: उसमें तज़ईन का मामला, क्राफ्टिंग का मामला ज़रूर होता है
1: जी। तज़ईन और तरसील में एक एतदाल का होना तो लाजिम है, अगर बहुत ज़्यादा अगर हम तज़ईन पे तवज्जो मरकूज कर देते हैं तो इबहाम का शायबा भी हो जाता है, और अगर तरसील पे बहुत ज़्यादा हम अगर तवज्जो मरकूज कर देते हैं या उसको फ़ौकियत देते हैं तो माना का एक गहरापन जो है आपके सामने आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि गहराई और गहराई और तहदारी और मानवियत और ज़माने के तब्दीली के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि मानियाती तब्दीली नहीं हो पाती है। आलम खुर्शीद साहब, एक बात जो है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा, हम जैसों के लिए मुफीद होगा, कि आपने तकरीबन 80s में अपनी शायरी शुरू की, जब शायरी आपने शुरू की तो उससे पहले आपने क्या क़ारी की हैसियत से ही शायरी का मुताला किया था, या आपने शायरी शुरू की फिर मुताला शुरू किया? आप अपने माकबल शुरा और अपने माशरीन और साथ ही साथ ये कि जो ताज़ा दम शुरा हैं जो बिल्कुल मासिर हैं और शायरी कर रहे हैं, तो इन तीनों ज़मानों में आपको क्या लगा कोई ऐसा शायर है जो आपको मुतासिर करता है, या कोई ऐसा ट्रेंड है, कोई ऐसी तहरीक है, कोई ऐसा रुझान है जो आपको मरवूब करने में कामयाब रहा शायरों में भी और तहरीकात में भी?
0: मैंने जब शायरी शुरू की तो मेरे पास शायरी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, अफसानों से मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और अफसाने मैंने तकरीबन तमाम बड़े अफसाना निगारों को, नावल निगारों को पढ़ रखा था, लेकिन शायरी से जब वास्ता पड़ा तो जब दोस्तों ने जो है अपनी शायरी सुनानी शुरू की और मैं उसमें जो है इन्वॉल्व होने लगा, मुझे कुछ अच्छा लगने लगा, मैं उस पर थोड़ी बहुत बातें भी करने लगा, तो जब लगा कि शायरी की जाए तो मेरे सामने उस वक्त जदीदियत का ज़माना था, तो मैंने जदीद शोरा को सबसे पहले टारगेट किया, जितने भी जदीद शोरा थे उनके मजमूए जमा किए, उनके उस ज़माने में जितने रसाले निकलते थे उन रसाइल को जमा किया और तमाम लोगों को पढ़ा।

0: उसके बाद फिर मैंने जो है बाज़ाब्ता शायरी शुरू की।
1: अच्छा, तो उसमें जैसे जदीदियत के जो शुरा थे, तो क्या क्लासिक को आपने उस ज़माने में नहीं पढ़ा जब आपने शायरी शुरू की थी? तो
0: बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ जो है जदीद शायरों को ही पढ़ा था, और उनको पढ़ के ही जो है मैंने शायरी शुरू की थी, और इसीलिए जदीदियत का बहुत ज़्यादा असर जो है मेरी शायरी पर भी रहा है, कम अज़ कम उसलूब के मामले में।
1: असर तो आप पे तरक्की पसंदी का भी रहा है। आपकी शायरी में जो समाजी सरोकार मौजू के तौर पे जो बरता गया है, या जो बेबाकी है, या ये कि एक शायर सोसाइटी को किस तरह से लेकर के वो चल रहा है, किन किन मौजूआत को वो शेर के कालीब में ढाल रहा है, अगर इसको देखा जाए तो आपकी शायरी जो है उसका पहला दौर अगर हम मान लें, तो उसमें तो आप अच्छे खासे तरक्की पसंद और बेबाक किस्म के एक शायर के तौर पे उभरते हुए नज़र आते
0: मैंने
1: हैं।
0: कबल ही अर्ज़ किया कि उसलूब और ज़बान की सतह पे जदीदियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहे हम, लेकिन ख्यालात की सतह पर, मज़ामीन की सतह पर हमारे जो मसाइल थे, ज़ाहिर है कि जो शायर होता है या राइटर होता है उसका समाज से कहीं ना कहीं से सरोकार है, उनके मसाइल से उसके सरोकार हैं, उनके जो जो उस ज़माने में जो मसाइल होते हैं उन मसाइल से उनको बराह रास्त वास्ता पड़ता है, तो और क्या इजहार करेगा वो? वो इन्हीं बातों का इजहार करेगा, और इजहार अगर नहीं करेगा, शायरी को आप समाज से काट देंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो है दाखिली नौईयत की शायरी करें तो उसका दायरा बहुत महदूद हो जाता है। तो जाहिर है मेरे सामने उस ज़माने में जब मैंने शायरी शुरू की थी बहुत सारे मसाइल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिकल थे, तो उन सबों को मैं झेल रहा था, उन सबों को महसूस कर रहा था, उन सबों का कर्ब, उन सबों का दर्द मेरे अंदर मौजूद था, उसका इजहार मेरी शायरी में हो रहा था, जिसे आप तरक्की पसंदी से मंसूब कर रहे हैं।
1: अच्छा, उसके बाद ये एक तब्दीली देखने को मिलती है, एक आम कारी की हैसियत से जो मैंने महसूस किया कि आपकी आवाज़ में भी एतदाल पैदा हो गई है, और उस एतदाल का नतीजा ये हुआ कि आपने माशरे की बात को भी अपने ज़ाती मसाइल के लिए जो उसलूब इस्तेमाल करते हैं उसी में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जदीदियत के जो शुरा थे उनका भी मामला तकरीबन यही था। तो कौन कौन से शुरा थे जो आपको मुतासिर करते थे या अच्छे लगते थे, और क्यों?
0: मुझे अच्छे लगते थे उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था, तो उनमें शकीब जलाली, इफ्तिखार आरिफ, शहरयार साहब, निदा फाजली और कई नाम हैं जो जो
1: सर
0: मुझे
1: दस्त
0: बहुत,
1: नहीं याद आ रहे होंगे
0: हाँ
1: लेकिन
0: याद
1: आएंगे।
0: नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती थी और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने उनकी शायरी से, और उस तरह की शायरी करता रहा।
1: एक मौके पे आपका एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो आपने किसी तहरीक से या तहरीकात से और रुझानात से वाबस्तगी को बहुत मुस्तहसन नहीं माना था, बल्कि एक आज़ाद फ़ा में आप तख्लीक करने के कायल नज़र आए। तो मुतासिर होना एक चीज़ है, लेकिन यह कि तख्लीकी सरोकार जो है, तो इसमें कहाँ आप अपने आप को डेविएट करते हैं या औरों से मुख्तलिफ रवैया अपनाते हुए नज़र आते हैं कि ठीक है तरक्की पसंदी है या जदीदियत है या माबाद जदीदियत है या तीसरी आवाज़ या आज़ादाना आवाज़, इस तरह की शायरी जो हुई, या हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को हम लोग भूल जाते हैं तो उन्होंने जिस तरह से दाखिल को फ़ौकियत दी, तो इन तमाम चीज़ों के अलावा किन मामलात में आप अपने आप को आज़ाद पाते हैं? आप तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत इन सब के करीब नज़र आते हैं, लेकिन आज़ाद अपने आप को कहाँ पाते हैं?
0: आप किसी तहरीक के साथ जुड़ते हैं तो उस तहरीक का फ्रेम जो है वो आपका मॉडल बन जाता है। तरक्की पसंदी में गए तो यानी आपको दाखली बात कम करनी है या नहीं करनी है, खारजी बातों पर ज़्यादा जोर देना है, यानी गोया एक फ्रेम में आप बन जाते हैं। उसी तरह आप जदीदियत के फ्रेम में जब फिट होते हैं तो वहाँ आप जो है सिर्फ दाखली बात करते हैं या सिर्फ ज़ात से मंसूब बातें करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर इस तरह से मैंने महसूस किया कि अगर इन किसी फ्रेम में अगर जाकर आप शायरी करते हैं तो शायरी का दायरा बहुत महदूद हो जाता है। या तो आप दाखिली बात करें या ज़ात की बात करें, और या आप तरक्की पसंदी की तरफ जाएं तो समाज की बात करें, तो क्या इंसान की जो सरोकार हैं वो न सिर्फ दाखिल से हैं, न सिर्फ ज़ात से हैं, बल्कि कहीं ना कहीं तो ज़ात भी जो है समाज से मिल ही
1: वो
0: जाती
1: जाहिर है माशरे का
0: जाहिर
1: हिस्सा
0: है।
1: होता है तो।
0: तो हम माशरे से क्यों परहेज़ करें? और शायरी का कुछ ना कुछ तो मकसद तो ज़रूर होता होगा।

0: तो अगर हम कोई नाहमवारी पा रहे हैं, हम कोई जो है जुल्म बर्बरियत पा रहे हैं या किसी तरह की नामसायद हालात पा रहे हैं, तो ये भी तो फ़नकार का फ़र्ज़ है कि वो अपने शायरी में, अपने अफसानों में उनका इजहार करे, उन पर एहतजाज करे,
1: बिल्कुल
0: या उसे लगता है कि आदमी जो है आदमी की सतह से नीचे गिरता जा रहा है, इंसान बनने के बजाय हैवान बनता जा रहा है, तो इंसानियत की तरफ उसको रागिब किया जाए, उसको पॉजिटिविटी उसके अंदर लाई जाए, ये भी फ़नकार का काम है।
1: जी, बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसीलिए मैंने सोचा कि अपने आप को किसी फ्रेम में कैद नहीं किया जाए, अपने आप को आज़ाद रखा जाए और जो दिल पे गुजरती है उसको रकम किया जाए।
1: रकम किया जाए। बिल्कुल आलम खुर्शीद साहब, आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बिहार और उसके इर्द गिर्द यानी मशरक़ी यूपी, यहाँ से आपका ज़्यादातर ताल्लुक़ रहा। तो जब आपने शायरी शुरू की, आप मकबूल हुए और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मकबूल हुए, आपको अलग अलग तहरीकात के रसायल ने फौकियत के साथ शाया करना शुरू किया। आप शबखून में भी छपते थे और तरक्की पसंद रसायल में भी, यानी आपको एक तरफ तो कमर रईस हाथों हाथ लेते थे और अपने रसाले में, दूसरी तरफ फारूकी वो अपने रसाले में। तो शायरी जो है बुनियादी तौर पे बहुत मैच्योर आपकी थी, लेकिन मुताले के ज़रिए मुतासिर होना एक बात हुई, और जो आपके सराउंडिंग्स में, आपके हलके अहबाब में, ख़्वाह वो उम्र में कुछ बड़े रहे हों, छोटे रहे हों, मासिर रहे हों, तो उनमें से किन लोगों के साथ उठना बैठना होता था, और उस वक्त बिहार की उर्दू शायरी के जो नुमाइंदा लोग थे उनके कौन से ऐसे औसाफ़ थे जिनसे आप मुतासिर होते थे?
0: मेरे हमअसरों में बिहार में तो उस वक्त खुर्शीद अकबर, जमाल ओवैसी नुमाया तौर पर सामने थे,
1: जी सीनियर्स में।
0: सीनियर्स में सुल्तान अख्तर, सिद्दीक मुजीबी, प्रकाश
1: जी
0: फिकरी,
1: जी जी जी
0: शाहिद
1: बिल्कुल
0: करीम, तो
1: जी
0: ये लोग थे। तमाम लोगों के उसलूब अलग अलग थे, कोई जदीदियत के फ्रेम में बिल्कुल कैद था, कोई थोड़ा फ्रेम से बाहर निकला, और किसी का लहजा बहुत बुलंद था, किसी का लहजा बहुत धीमा था,
1: जी किसी का तेवर बागियाना था।
0: किसी का तेवर
1: जी
0: बागियाना था।
1: जी
0: हाँ,
1: हाँ
0: मसलन सिद्दीक मुजीबी साहब
1: सिद्दीक
0: का,
1: मुजीबी जी।
0: प्रकाश फिकरी साहब बहुत नरमी
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: मुलायमियत से
1: नरमी
0: जो है
1: मलाहत के
0: बात,
1: साथ ज़बान
0: हाँ
1: का
0: बात
1: इस्तेमाल
0: करते थे।
1: करते थे।
0: सुल्तान अख्तर साहब की यहाँ आहंग से बहुत ज़्यादा
1: जी
0: कुर्बत थी,
1: जी
0: तो इन तमाम लोगों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहता था,
1: जी
0: और मेरा बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ उठना बैठना तो नहीं रहा है,
1: जी
0: और मैं थोड़ा अलग थलग भी अपने मिजाज से रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या
0: मैं
1: ये सही बात है कि आप गोशा नशीन या ये कि अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, कि अपने सेल्फ के साथ, अपनी ज़ात के साथ रहना, माशरे से बहुत घुल मिल करके रहना आप पसंद नहीं करते थे, ये सही बात है?
0: नहीं, ये मैं शुरू से बहुत यारवाश आदमी रहा
1: जी
0: हूँ, और मेरा सर्किल बहुत लंबा चौड़ा था।
1: जी
0: शायरी की दुनिया में आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ कई खाने हैं, कई तरह के लोग हैं, या जो इनकी आदतें हैं या जो इनके हालात हैं वो मुझे बहुत सूटेबल नहीं रखते थे। मसलन जो है कहीं पर बैठ के अड्डेबाजी करना,
1: जी
0: इसकी बनिस्बत मैं प्रेफर करता था कि मैं अकेले अपने साथ रहूं,
1: जी
0: अपने और मुताला करूं, यह ज़्यादा मुझे रास आता था।
1: तो इसको नरगिसियत से मंसूब किया जाए, खुद पसंदी से मंसूब किया जाए, या ये कि जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उस माकूलियत के पैमाने पे खरे नहीं उतरते थे कि जिसका तकाजा एक सच्चा अदीब करता है, एक सच्चा शायर करता है?
0: नरगिसियत और खुद पसंदी का मामला नहीं था, मामला यही था कि शायद मैं जो चाहता था, जिस तरह का माहौल चाहता था, या जिस तरह की संजीदगी चाहता था शायरी में, चाहे गुफ्तगू में हो, या जैसे मुझे किसी होटल में बैठ के शेर सुना कहा आप कहें तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं वैसी बातें नहीं पसंद करता, या फिर कहीं बैठे और फालतू के किसी होटल में बैठे हुए हैं, 10 शोरा और इनकी शिकायत उनकी शिकायत, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहा, और यही वजह है कि वहाँ बैठने की जगह मैं प्रेफर करता था कि मैं अपना वक्त जो है मुताले में सर्व करूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
1: जी आलम खुर्शीद साहब, आपकी शायरी का अगर महाकमा किया जाए मुताले के बाद, तो ये महसूस होता है कि ज़ात और माशरत ये दो तो मौजूआत हैं ही, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो क्लासिक से आप मदद लेते हैं और ऐसे इस्तियारे वज़ा करते हैं कि हमारा जहन जो है वो दास्तानों की तरफ या ये कि कर्बला के हादसे की तरफ भी जाता है। तो इस

0: सिलसिले में जो आपके माशरीन या क़द्र कुछ सीनियर जो दो नुमाइंदा शायर हमारे सामने आते हैं, शुजा खावर और असद बदायूनी, इनके अलावा आपने गुफ्तगू की और उसमें जाहिर सी बात है सभी नाम नहीं याद रहते, मसलन साकी फ़ारूक़ी हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, तो इनकी जो शायरी है इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे औसाफ़ होते हैं जो उनको मुमताज़ करते हैं एक दूसरे से। आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ कौन सा ऐसा वस्फ़ है जिस पे आप ख़ुद मुतमईन होते हैं कि नहीं, ये मेरा वस्फ़ जो है ये माशरीन में नहीं है, मिसाल के तौर पर शुजा खावर के यहाँ नहीं है, बुलंद आहंगी का जहाँ तक मामला आया, या इश्तियारों को ढालने का जहाँ तक मामला, या असद बदायूनी के यहाँ नहीं है, या मेहताब हज़र नकवी के यहाँ नहीं है, इस तरह के जो आपके माशरीन हैं, एक जुमले में अगर ये मालूम करें हम कि आप अपने इम्तियाजात, शेरी इम्तियाजात बयान करें, तो आप क्या फरमाना पसंद करेंगे?
1: मेरी कोशिश यही होती है अपनी शायरी में, या वो मेरा इख्तिसास आप कह सकते हैं, कि पेचीदा से पेचीदा बात को, पेचीदा से पेचीदा मसले को सादा से सादा जबान में, बिल्कुल सिंपल जबान में इजहार कर दूँ
0: जी।
1: उनमें शेरी लवाजमात भी हों लेकिन वो इतने पेचीदा ना हो जाएं, इतने मुबहम ना हो जाएं कि लोगों की समझ में नहीं आए या कोई दुश्वारी पैदा हो। तो मेरी शायरी का यही इम्तियाज़ कहा जा सकता है कि मैं पेचीदा से पेचीदा बात को भी बहुत सिंपल जबान में इजहार करूँ।
0: इस आसानी में तो दुश्वारियाँ बहुत होती हैं, ये तो बहुत पेचीदा मुरस्सा साजी है। आलम खुर्शीद साहब, एक तो ये है कि हम तीन ज़मानों पे अपने मौजूआत को मुहित करते हैं, अपने माजी से, हाल से और मुस्तकबिल से, और वो तीनों ज़माने आपने बरते हैं। हालात हाजरा पे अगर बात की जाए तो हालात हाजरा के जो मसाइल व मामलात हैं वो भी आप बरतते हुए नज़र आते हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ तहजीब या तारीख़ या समाजियात या ज़ात या आपका इर्द गिर्द का जो मामला है, यही आपके मजामीन या मौजूआत नहीं हैं, बल्कि मैं ये देखता हूँ अक्सर कि सियासत को भी आप बहुत सलीके से बरतते हैं, या बाज़ार, तो बाज़ारवाद का ये जो ज़माना है इसने सबको मुतासिर किया है, वो शायरी हो, अदब हो, फिक्शन हो, तनकीद हो, या आपकी अपनी ज़िंदगी हो, आप इन दोनों चीज़ों को, यानि हालात हाजरा और बाज़ारवाद को, या मुशायरों का जो मामला है ये भी इससे मुतसिल करके देखना चाहिए, तो इस पर कुछ इजहार ख्याल करें कि हालात हाजरा और बाज़ारवाद, इसको आप कैसे अपनी शायरी में बरतते हैं या परहेज़ करते हैं?
1: परहेज़ तो करने का सवाल ही नहीं है, इन तमाम चीज़ों ने जो मसाइल खड़े किए हैं वो मसाइल इतने बड़े हैं कि आदमी की शनाख्त ख़त्म होती जा रही है। बाज़ार इस बुरी तरह हावी है कि अशिया के दरमियान आदमी झूल रहा है, क्या आदमियत और इंसानियत नाम की जो चीज़ है वो सीधे सीधे मरती जा रही है, आदमी मशीनों में ढलता जा रहा है। तो जाहिर है इन दोनों से मेरा सीधा सीधा वास्ता है और इन दोनों के मसाइल मैं झेल रहा हूँ, तो मेरी शायरी में तो इनका आना लाजमी है। और मेरी एक कोशिश ये भी होती है कि कोई मजमुआ जब आता है मेरा
0: जी,
1: तो मजमुआ आया तो उस मजमुए को मैं एज ए होल देखता हूँ कि ये किस तरह की शायरी है
0: जी,
1: और आइंदा जब जब शायरी करनी है तो क्या मुझे यही शायरी करनी है या कुछ और आगे जाना है या कुछ नया ढूंढना है
0: जी।
1: तो ये कुछ शौरी कोशिश भी होती है कि मैं एक जगह ठहरना नहीं चाहता
0: जी,
1: कि मैंने इस तरह की शायरी बहुत सिंपल ज़बान में कर ली तो अब यही करना है, या बहुत पेचीदा ज़बान में कर ली, बहुत फारसी आमेर ज़बान में कर ली तो यही करना है
0: जी,
1: नहीं, मैं कुछ नए की तलाश में हमेशा रहता हूँ।
0: उसलूब की नारंगी जो है वो आपके लिए पसंदीदा है। एक बात और के ये तो मौजूआत का मामला हो गया, जो हमारे यहाँ पोएटिक जनरेशन है या पोइट्स के मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, कुछ मारूजी अंदाज का ज़माना है, कुछ बातें ऐसे भी कर ली जाएँ जिससे मालूम हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किस तरह से फौकियत किसी चीज़ को देते हैं। माशरीन में मिसाल के तौर पे नज़मों के हवाले से बात कम हुई, तो नज़में भी आप बहुत उम्दा लिखते हैं, नज़मों में मिसाल के तौर पे जी नून मिम राशिद और मीरा जी, तो किसके करीब आप पाते हैं अपने आप को? करीब पाने में कोई तकलीद का मामला नहीं है, मगर ज़हनी क़ुर्बत।
1: मौजूआत की सतह पे जब हम बात करें तो राशिद ज़्यादा अपील करते हैं
0: जी,
1: और जो

0: दाखिली इजहार का मामला है तो वहाँ
1: मीरा जी जी यानी इम्तजाजी एक सूरत पैदा होती है। आपके माशरेन में कौन से ऐसे शायर हैं, कौन कौन लोग हैं, या थोड़े और सीनियर जिनकी बात हुई के साहब सुल्तान अख्तर हैं या साकी फारूकी हैं, शहरयार हैं, मुनीर नियाज़ी हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, तो जैसे एक लिंग्विस्टिक्स प्ले का जो टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़फ़र इकबाल के लिए कर सकते हैं कि साहब वो ज़बान से खेलते
0: हैं
1: जी, ज़बान से खेलने का मामला है। इनके बरक्स अगर मुनीर के यहाँ आप देखेंगे तो एक लेयर्ड पोइट्री का शायबा होता है कि ऊपर से समंदर जो है वो बिल्कुल शांत है,
0: नजर आता है
1: और नीचे जो है एक रवानी है। साकी के यहाँ जो नफ्सियात का मामला आता है या डिज़ायर्स का मामला आता है, ख्वाहिशात का मामला आता है। इरफान सिद्दीकी के यहाँ जो कल्चरल डिस्कोर्स का रिट्राइवल हुआ, या शुजा खावर और असद बदायूनी के यहाँ जो अनानियत का मामला दरपेश आया, इस लिहाज से अगर महाकमा किया जाए तो जाहिर सी बात है आपका मुताला बहुत वसी है, ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आपने शायरों को पढ़ा हुआ है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो मुस्तहसन नहीं तस्लीम की जा सकती, किसी भी लिहाज से नहीं की जा सकती, माशरे में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं गुज़श्ता 15-20 साल से, ये जो इसमें सेलिब्रेशन का जो रवैया है, ख़ासतौर से अवाम जिस तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर निदामत का इजहार करना चाहिए, जहाँ पर रंज और गुस्से का इजहार करना चाहिए, वहाँ पर हम फरहत का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, इसको बरतते हैं आप नज़मों में, गज़लों में, शायरी में?
0: बिल्कुल, यही मेरे शायरी के मेन मौजूआत यही हैं।
1: चंद एक शेर अनाथ फरमाएं,
0: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी,
1: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी,
0: लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया
1: यहीं पे आएगा। वाह, बहुत उम्दा।
0: और कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है,
1: कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है,
0: कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, कहीं से तीर चलेगा यहीं पे आएगा।
1: जी,
0: और मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ,
1: मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ
0: और कागज़ पे धूप रकम हो जाती
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
0: मैं शबनम का किस्सा लिखता रहता हूँ और कागज़ पर धूप रकम हो जाती है।
1: ये आमाल और नतीजे में जो तजाद की कैफियत है, या जो नतीजा हमको बरामद होता है बिल्कुल बरक्स के, हम सोच के कुछ और काम करते हैं और नतीजा जो है उसके बरक्स अच्छा ही करते हैं, उसका सिला जो है उसके बरक्स मिलता है, या तवक्को रखते हैं कि हम उनके मोहसिन हैं तो वो भी हमारे मोहसिन होंगे, तो इसके बरक्स जो नतीजा बरामद होता है ये भी तो बहुत अपीलिंग होता है। इस पे आप कैसे अपने आप को जाहिर करते हैं?
0: ये जो अपीलिंग नतीजा बरामद होता है उस पर दो तरह के रद्देअमल होते हैं, एक तो जिसको कहेंगे कि आप उसकी मुखालफत करते हैं और उसके जवाब में बहुत शदीद रद्देअमल ज़ाहिर करते हैं
1: जी,
0: और दूसरा होता है कि बहुत मुलायमियत, बहुत नरमी के साथ आप उस बात को कोई दूसरा टर्न देने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
1: जी, आलम खुर्शीद साहब, बहुत उम्दा गुफ्तगु रही, बहुत सारी बातें, अभी तशनगी बरकरार है लेकिन जाहिर सी बात है कि वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब के उर्दू मजलिस के रूबरू प्रोग्राम में अपना, ना ये कि सिर्फ कीमती वक्त आपने दिया बल्कि हमें अपने तजर्बात से महसूस कराया, बेहद शुक्रिया।
0: आपका भी बेहद बहुत शुक्रिया, उर्दू मजलिस का बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप मारूफ शायर जनाब आलम खुर्शीद की बातचीत सुन रहे थे, आपसे महव गुफ्तगु थे जनाब ज़ुबैर शादाब। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रूबरू। अब आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: कार्यक्रम उर्दू मजलिस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न किया। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु और मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी बिलों का निपटान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना होगा। विधेयक के अनुसार यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल हो जाती है तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि दलीलों के पूर्ण होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। दूसरे स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायिक क्षमता को और मजबूत करेगा, मामलों के प्रभावी निपटान में तेजी लाएगा और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और उधर मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत त्रिवेणी के चालक दल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाओं की महिला परिचारिका नौकायन यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा ने ल्यूविन हॉर्न और गुड होप केपों का चक्कर लगाते हुए विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्रों को पार करते हुए 25,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक तय की है। राष्ट्रपति ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला चालक दल के साहस, दृढ़ता और अनुकरणीय व्यावसायिकता की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both houses of parliament have been adjourned till tomorrow. Earlier, the Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. When the House met after the second adjournment at 2 p.m., Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the mantra of reform, perform and transform is being effectively implemented. The minister said that the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. Earlier, when the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, presiding officer Krishna Prasad Teneti tried to take up the legislative business amid opposition uproar. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The opposition members came to the well-demanding Union Home Minister Amit Shah to reply over the alleged police action during students' protest over the knee tissue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. Amid the pandemonium, the Lok Sabha was adjourned twice. Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. BJP candidate Satendra Bhai Patel has won the Manjalpur Assembly by-poll in Gujarat. Mr. Patel defeated his Congress rival Bika Bhai Rabari by over 30,000 votes. The by-poll was held after the seat fell vacant due to the death of BJP MLA Yogesh Patel. The counting of votes are also underway for the by-elections in Bihar's Bankipur Assembly constituency and Madhya Pradesh Datia Assembly seat. In Bankipur, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading over BJP's Neeraj Kumar Sinha by over 13,800 votes after 24 rounds of counting out of 31. The by-election for the seat was necessitated after BJP President Nitin Nabin vacated the assembly seat following his election to the Rajya Sabha. In Datia, Ghanshyam Singh of Congress is ahead of Ashutosh Tiwari of BJP by over 12,000 votes. The seat became vacant due to the disqualification of Rajendra Bharti. Voting for by-poll to the three constituencies was held on the 30th of last month. Ministry of Road Transport has provided a draft notification proposing an amendment to the Central Motor Vehicles Rules 1989 to bring two-wheeled road ambulances for emergency medical care. The ministry also issued a draft notification proposing amendments to the Central Motor Vehicles Rules 1989 for the phased implementation of vehicle-to-vehicle V2V communication systems in motor vehicles. It said that the V2V communication will help to line up crucial information that can provide advance warnings to drivers or vehicle systems in safety critical situations, including sudden braking, forward collision risk, unsafe lane changes, and the approach of emergency vehicles. India has achieved over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges within 3 years since the launch of the digital pledge portal in 2023. Addressing the 16th Indian Organ Donation Day event in New Delhi, Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today highlighted that organ transplants in India have risen to over 20,000 per year over the past 12 years. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Our correspondent reports that the state government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace. U.S. President Donald Trump has said that negotiations with Iran to take place through intermediaries are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Mr. Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, UAE, Qatar, and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त शाम के 4:10 हुए हैं और अब हम आपको पेश करेंगे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। पहली सूचना हमें थाना सेक्टर 39 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है ज्योति, जो कि ब्रजेश की पुत्री हैं और अंतिम बार इन्हें 11 जुलाई 2026 को देखा गया सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा में। इनकी आयु करीब 16 वर्ष है और शरीर की बनावट इकहरा, कद करीब 5 फिट है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना सेक्टर 39 कमिश्नरेट गाज़ियाबाद में संपर्क करें। अगली जानकारी थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है विवेका कुमारी, जो कि रामचंद्र आर्य की पुत्री है। इनकी आयु 17 वर्ष है और कद 5 फिट 2 इंच है। अंतिम बार इन्हें चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा में देखा गया। किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो या कहीं इन्हें देखा गया हो तो वे थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। अगली जो जानकारी प्राप्त हुई है वे थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है घनश्याम और इनकी आयु 12 वर्ष है, कद 3 फिट है और घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर से और खोए हुए व्यक्ति का नाम है अदिति, जो कि बबलू की पुत्री हैं। अंतिम बार इन्हें 22 जून 2026 को देखा गया। इनकी आयु 16 वर्ष है, कद 5 फिट है। इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो आप थाना सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना फेस 2 गौतम बुद्ध नगर से और खोए हुए व्यक्ति का नाम है मुस्कान। इनकी आयु 16 वर्ष है, कद 5 फुट है, आँख नाक कान औसत है। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी जो प्राप्त हुई है वे थाना दादरी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है कौशल और इनकी आयु 16 वर्ष है और कद 5 फुट है। इनकी विशेष पहचान ये है कि दाहिने हाथ पर ओम का निशान है। किसी को इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो वे थाना दादरी कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी जो प्राप्त हुई है वे थाना सेक्टर 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है नेहा, जो काशीराम की पुत्री हैं। अंतिम बार इन्हें 27 जून 2026 को चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 में देखा गया। इनकी आयु 16 वर्ष है और कद 5 फुट है। बिना बताए घर से ये कहीं चली गई है। किसी को इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना 63 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा

शुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा वाणी।

0: The first drop of rain, a mother's first feed, a friend's first, I'm here for you. The most powerful things in the world usually arrive the quietest. Trust me, we're going to talk a lot about it today. Hello and welcome everyone to Yuvvani, this special youth program of Akashvani Indraprasth. I'm Achal and with me today is my co-host Khyati. Khyati, before we start, mera ek sawal hai aapse. क्या कल आपने अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप डे विश किया या भूल गई?
1: आंचल, सच बताऊँ ना तो मैंने रात को 11:58 पर विश किया, यानी संडे खत्म होने से ठीक 2 मिनट पहले। और मुझे यकीन है आज स्टूडियो के बाहर आधे लिसनर्स भी यही कहानी लेकर बैठे होंगे। पूरा दिन अभी भेजता हूँ मैं निकल गया और रात को आखिरी वक्त पर भेजा वो एक हैप्पी फ्रेंडशिप डे मैसेज।
0: Honestly, that's most of us, Khyati. But it's actually perfect timing, you know, because today we are not just talking about one thing. We have got a whole basket of reasons to celebrate. It's the first Savan Sombar of the month. We are still riding the warmth of Friendship Day, and the world is also observing World Breastfeeding Week. So health, gratitude, aur rishte sab ek hi Monday mein.
1: Wah, Aanchal, ye to ek saath teen tyoharon wala Sombar hai. और आपको पता है आज पहला सावन सोमवार भी है। सावन का महीना रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ डीपली स्पिरिचुअल भी है। सावन के महीने में भोले बाबा की भक्ति में लीन रहने में एक अलग ही मज़ा है। हरे भरे पेड़, ठंडी सहलाती हुई हवा, पेड़ से लटकते हुए झूले और वो सावन में गुनगुनाए जाने वाले खास गीत, ये सब देख कर भला किसी का मन कैसे खुश ना हो। और जहाँ तीज के उपहार हों, खिलखिलाते हुए चेहरे हो, रिमझिम बारिश और उसके बाद वो मिट्टी की भीनी सी खुशबू, उफ। सच बताऊं तो सावन का महीना जैसे त्योहार के बुलाने का न्योता भी है और उस देश का प्रतीक भी जहां हर महीने एक त्योहार मनाया जाता है।
0: एब्सोल्युटली। एंड स्पीकिंग ऑफ डिवोशन एंड डिसिप्लिन, Khyati, that's really the thread connecting our whole show today. Because whether it's a Savan fast or breastfeeding a newborn or just showing up for a friend, they're all quiet, unglamorous acts of care that nobody puts on a poster. वो जो रोज की छोटी चीज है ना, वही असली बड़ी बात होती है।
1: और आज के कार्यक्रम में इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे हेल्थ की, दुनिया भर में मातृत्व और केयर को लेकर अलग अलग नजरिए की, और साथ ही चलेंगे इतिहास के कुछ ऐसे किस्सों की तरफ जो आज ही के दिन से जुड़े हैं, जिसमें शामिल हैं फुटबॉल से लेकर कविता और आज़ादी तक के किस्से। और हाँ, क्विक बज में लाएंगे ताज़ा खबरें, स्पेशली कुछ बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइन जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी।
0: So stay tuned, don't touch that dial, but first, since it's the first Monday of Sawan, here's a song that captures that whole monsoon, devotional energy, perfectly.

0: Welcome back, everyone. So, Khyati, as I mentioned, this week the World Health Organization kicked off World Breastfeeding Week. And this year's theme is beautifully simple. Breastfeeding for a sustainable start in life. Strengthen what works. It's not asking us to invent something new. It's just asking us to actually support what already works.
1: Aanchal, ye sunne mein to keval health ka vishay lagta hai. Par sach kahun, तो ये एक तरह से सोसाइटी के बारे में भी तो हुआ ना, क्योंकि एक माँ अकेले तो ये सब नहीं कर सकती। उसे परिवार का साथ चाहिए, वर्कप्लेस में सही सुविधाएं चाहिए और चाहिए सोसाइटी से ताने के बदले सबका साथ।
0: एग्जैक्टली ख्याति, एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड सो इंटरेस्टिंग व्हेन यू लुक एट दिस ग्लोबली। इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड स्वीडन, मदर्स गेट ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ पेड पेरेंटल लीव and workplaces are legally required to give breastfeeding breaks. Meanwhile, in parts of the world, a mother is back at her desk within weeks, quietly figuring it out on her own.
1: और आंचल, भारत में भी ये तस्वीर अलग-अलग जगह अलग है। शहरों में कुछ कंपनियां अब लैक्टेशन रूम बनाने लगी हैं, पर बहुत सी जगहों पर आज भी एक नई माँ को घर और काम के बीच खुद ही रास्ता निकालना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गांवों में अक्सर पूरा परिवार, दादी, नानी, बुआ मिलकर सपोर्ट करते हैं, जो अब शहरों में कहीं खो सा गया है।
0: That's such a good observation, Khyati. That community support structure. It actually reminds me of a relay race, you know. No single runner carries the baton the whole way. They run their stretch, pass it on, and someone else picks up the pace. That's really what WHO's warm chain of support is describing this year. Not one person doing it all, but care being passed hand to hand. So no one's left carrying it alone. What do you say?
1: Wow, बहुत खूबसूरती से कहा आंचल। और यही तो सही सोच भी है ना, कि केयर करना सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए। घर की, दफ्तर की और सरकार की भी।
0: And on that note about showing up for people, Khyati, that's exactly what Friendship Day was about too, wasn't it? Two very different ideas. A mother's care for her baby and a friend's care for another friend. But honestly, at the core, it's the same instinct, just consistently choosing to show up.
1: बिल्कुल सही कहा आंचल। और चलिए इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक गाना सुनते हैं, जो माँ और बच्चे के उस अनकहे रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निभाता है जो हम सभी ने महसूस किया है।

0: मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सवाल भले ही छोटा है, मगर प्रभाव उतना ही गहरा। अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद ही मांग लेगा अगर उसे ज़रूरत होगी मदद की तो, मगर असली बात तो ये है कि लोग मदद मांगते नहीं, बस चुपचाप स्ट्रगल करते रह जाते हैं।
1: दैट्स सच एन इम्पॉर्टेंट वन ख्याति। माई सेकेंड टिप इज़ डोंट जस्ट सेंड एडवाइस, सेंड एक्चुअल हेल्प। ड्रॉप ऑफ अ मील, ऑफर टू सिट विद द बेबी फॉर 20 मिनट्स, और जस्ट शो अप विद चाय एंड नो एजेंडा। प्रेजेंस ऑफ्टन मैटर्स मोर देन द पॉइंटर्स।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेरा तीसरा सुझाव ये है कि जजमेंट को प्लीज़ घर पे छोड़ आइए। चाहे वो एक माँ हो जो अपने तरीके से पेरेंटिंग कर रही है, या एक दोस्त जो अपनी ज़िंदगी में कुछ देर से कई फैसले ले रहा है। आखिर हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उसके अपनी रफ्तार से चलने का पूरा हक है।
1: Beautifully put, Khyati. Support without judgment. That's really the whole theme of today's show in one line. And now, before we move on, here's a song that's been officially the anthem of friendships everywhere. Let's go.

0: मेरी बीमारी।
1: दोस्तों, इस कमाल के गाने के बाद अब बारी आ गई है हमारे कार्यक्रम के एक बेहद खास सेगमेंट मेरा पहला माइक की। मेरा पहला माइक में हम सुनेंगे मुनि चैतन्य जी को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा और आज की युवा पीढ़ी का आधुनिक भारत के निर्माण में संबंध बताएंगे।

युवा साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा और आज की युवा पीढ़ी का संबंध आधुनिक भारत के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा हजारों सालों से विकसित वैज्ञानिकता और तार्किक व्यावहारिक ज्ञान का समुच्चय है। प्रिय युवा साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि की हमारे जीवन में उपयोगिता को विचारशील मनुष्यी जनों ने एवं आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक जनों ने स्वीकार किया है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपनी अंतरिक्ष यात्रा के संबंध में साक्षात्कार देते हुए वो बताती हैं कि जब मैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए जा रही थी, मैंने अपनी पसंदीदा सामग्री में ईशावास्य उपनिषद और भगवद गीता की एक एक प्रति अपने साथ ले जाने वाले सामान में सम्मिलित किया था। आगे वे यह भी कहती हैं कि मुझे इन वैदिक ग्रंथों को पढ़कर यात्रा के दौरान आत्मबल और मानसिक शांति की अनुभूति हुई। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के जो प्रमुख स्तंभ हैं, वेद, उपनिषद, गीता, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भारतीय वैदिक साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जो हमारे युवाओं के लिए आज भी प्रासंगिक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत खगोलविद आर्यभट्ट, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा, जो गणित और खगोल विज्ञान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग स्थान संख्या के रूप में किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की नींव रखी। उन्होंने यह सूत्र कहा, स्थानम स्थानम दशगुणम, प्रत्येक स्थान पिछले स्थान से 10 गुना अधिक मूल्य का होता है। इसी क्रम में भास्कराचार्य का लीलावती नामक ग्रंथ 1150 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें उन्होंने अंकगणित, ज्यामिति, ब्याज की गणना आदि गणित के सूत्रों का वर्णन किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा अधिक समृद्ध है। इस ज्ञान परंपरा में चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अत्यंत समृद्धशाली इतिहास रहा है, जिनमें सर्वप्रथम महर्षि सुश्रुत का नाम लिया जाता है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शल्यक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी आदि का विस्तृत वर्णन है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी सम्मिलित हैं, जो राजनीति विज्ञान के शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। प्रिय युवा साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग वेद और उपनिषद। उपनिषदों में आदर्श युवा के 6 सबसे महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। इस उपनिषद सूत्र के अनुसार आदर्श युवा इन 6 सद्गुणों से युक्त होता है। पहला, यूथफुलनेस, जीवंतता, जीवन के प्रति उत्साह और उमंग से भरपूर होना चाहिए। दूसरा, विनम्र और अनुशासन प्रियता होनी चाहिए। तीसरा लक्षण बतलाते हैं कि ज्ञानवान बनने के लिए, अर्थात अपने ज्ञान की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए, अध्ययन में आलस्य न करें, सीखने की प्रवृत्ति हमारे भीतर होनी चाहिए। चौथा लक्षण बतलाते हैं, आशावादी होना चाहिए, अर्थात भविष्य के प्रति सकारात्मक संकल्प और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में बेहतर कल की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अनंतर कहते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, अर्थात विल पावर, भी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक रूप से प्रत्येक युवा का बलशाली होना और स्वस्थ होना यह अनिवार्य है। इस प्रकार से उपनिषदों में युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी प्रसंगों का आख्यान दिया गया है। प्रिय युवा साथियों, प्रत्येक उपलब्धि के पीछे हमारे मानसिक संकल्प की शक्ति कार्य करती है। हमारे मन में पैदा हुए अच्छे विचार हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। यजुर्वेद में पठित शिव संकल्प सूक्त हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारी सफलता के पीछे हमारे मन में विकसित कल्याणकारी विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो मन प्रखर ज्ञान से संपन्न, चेतना से युक्त और धैर्यशील होता है, वह मन ही हमें सफलता की ओर अग्रसरित होने में सहायता प्रदान करता है। इस सूक्त के माध्यम से यह बतलाया गया कि हम जब कल्याणकारी, शुभ, सकारात्मक विचारों से युक्त होंगे तो हमें तनाव, चिंता और अवसाद नहीं होगा। प्रिय युवा साथियों, हमें खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए हमें बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बनना होता है, ऊर्जावान होना होता है। इस संदर्भ में

0: गीता में हम सबके लिए बड़े ही उपयोगी और बहुमूल्य सूत्र बतलाए गए हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर भी उस परिस्थिति में हम अपने मन को शांत और एकाग्र रखते हैं तो वह विपरीत परिस्थिति हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो जाती है। क्रोध और भय से रहित मन और बुद्धि अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। गीता का यह सिद्धांत आज की युवा पीढ़ी को आत्मबल एवं मानसिक मजबूती प्रदान करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पतंजलि का योग दर्शन आज की युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी है। योग में वर्णित ध्यान, प्राणायाम, आसन हमारे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इसी श्रृंखला में ध्यान और प्राणायाम हमारी स्मरण शक्ति एवं हमारे बौद्धिक विकास में अत्यंत सहयोगी हैं। प्राणायाम के अंतर्गत आने वाले भ्रामरी प्राणायाम से बतलाया जाता है कि इससे हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, यह आज की युवा पीढ़ी के लिए सशक्त और समृद्ध रूप से हम सभी के लिए उपयोगी है।
1: So friends, we were listening to Muni Chaitanya ji, who enlightened us about the importance of scriptures and gave a few tips for the youth. So let's now take a beautiful musical break.

0: वेलकम बैक लिसनर्स, एंड नाउ इज टाइम फॉर टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट. ख्याति, नॉर्मली वी पिक वन बिग स्टोरी फॉर दिस सेगमेंट, बट टुडे 3rd August is such a loaded date that we honestly couldn't choose just one. So we are doing a quick round instead. You ready?
1: Absolutely. तो चलिए

0: शुरू करते हैं पहले किस्से से, और ये किस्सा है फुटबॉल की दुनिया का। 3 अगस्त 1984, द डे इंडियाज फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री वॉज बॉर्न। एंड एक्चुअल और मज़ेदार बात तो ये है कि सुनील छेत्री अब तक भी इतने एक्टिव हैं कि फिटनेस की दुनिया में आज भी युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। जन्मदिन मुबारक हो कैप्टन।
1: Clearly, you're absolutely right. Next up, from the football field to the world of poetry, 3rd August 1886 is also the birth anniversary of Maithili Sharan Gupta, one of Hindi literature's most celebrated poets.
0: Nar ho, na nirash karo man ko, kuch kaam karo, jag mein rehkar kuch naam karo. Aisi prabhavshali panktiyon ke rachayita Shri Maithili Sharan Gupta ji को राष्ट्र कवि यानी नेशनल पोएट की उपाधि से सुसज्जित भी किया गया। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को जोश और प्रेरणा से भर देती हैं, और यही वजह है कि उनकी कविताएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं।
1: Absolutely. And our third story is a much more serious one. On this very day, 3rd August 1947, just days before independence, Dr. Bhimrao Ambedkar was appointed as Free India's first law minister.
0: और आंचल, जानती हो, ये सिर्फ एक पद की नियुक्ति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक था सामाजिक न्याय का, दलित सशक्तिकरण का, और इस बात का कि नए भारत का संविधान समानता की नींव पर बनेगा।
1: A genuinely landmark moment in our history. And now, Khyati, let's end on something much lighter because 3rd August also happens to be the National Watermelon Day.
0: हाँ चल, और मजे की बात तो ये है कि कल यानी पहले रविवार को National Sisters Day भी मनाया गया। तो सोचिए, वीकेंड बहनों के नाम और आज वाटरमेलन के नाम, पूरा हफ्ता ही मीठा हो गया।
1: From football to freedom to fruit, Khyati, today's history segment truly had it all. And on that sweet note, here's another sweet song for you.

0: Welcome back, friends, and now it's time for Quick Buzz. If your phone battery died before you could catch up with the world this week, don't worry, we've got you covered.
1: तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों पर, खासकर हाल ही में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ। जानती हूँ आंचल, हमारे भारतीय बॉक्सर्स ने 10 मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि आखिर हम भी किसी से कम नहीं।
0: Absolutely, Khyati. India wrapped up its Glasgow 2026 Commonwealth Games campaign with a spectacular 39 medals, 13 gold, 17 silver and 9 bronze, finishing 4th overall. The biggest highlight came from our boxers, who created history by winning a record 10 medals, including 7 golds, the best ever boxing performance by any country in a single Commonwealth Games.
1: हाँ चल, दिलचस्प बात तो ये है कि इतिहास सिर्फ हमारे होनहार खिलाड़ियों ने ही नहीं लिखा, हमारे देश के निडर युवाओं और जनहित सरकार ने भी रचा है। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिनसे पूरे देश का मनोबल सशक्त हो गया, हर छात्र को न्याय मिला और आने वाली पीढ़ी को मिली उम्मीद।
0: Parliament just passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, toughening India's anti-paper leak law. Individual cheating now gets you 5 to 10 years in jail and a fine up to 50 lakh rupees, up from 3 to 5 years and just 10 lakh earlier. Organized gangs running paper leaks face a minimum of 7 years and the agencies conducting these exams can now be fined up to 5 crore rupees. And banned from running exams for 8 years. And the best part, new fast-track courts means trials have to wrap up within 3 months. So no more cases dragging on forever. Basically, cheat now and the law's coming for you faster and harder.
1: अद्भुत, ये सिर्फ कानून नहीं, बदलाव की नीम है। Sisters and brothers of America, आचल, जितना प्रभावशाली ये हफ्ता है ना, उतने ही प्रभावशाली ये शब्द भी थे जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में सबको इतने प्रेम से संबोधित किया। तभी एक ही वाक्य में उन्होंने वहाँ बैठे हर व्यक्ति को अपना बना लिया। इसी सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है।
0: यू आर राइट ख्याति, स्वामी विवेकानंद जी लेफ्ट लेगेसी बिहाइंड दैट नीड्स टू बी कैरीड ऑन आवर शोल्डर्स।
1: जी आंचल, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर में स्थित स्वामी विवेकानंद को समर्पित सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया।
0: How beautiful is that? I wish I could visit the youth center and witness the legacy he has left behind. By the way, Khyati, as we were talking about care, don't you think we missed someone?
1: Who did we miss?
0: Our frontline officers and bureaucrats. Who relentlessly stand strong to protect us. Recently, National Security Advisor Ajit Doval was presented the Lokmanya Tilak National Award 2026.
1: साथ ही इससे यूथ को प्रेरित किया गया कि वो लोकमान्य तिलक जी के जीवन को गहराई से समझे और प्रेरणा प्राप्त करे। अब मैं समझी तुम किनकी बात कर रही थी।
0: And on a lighter note, Khyati, if your Instagram feed this week was flooded with friendship band reels and tag your bestie posts, you weren't imagining it. Friendship day trends absolutely took over timelines this weekend, right alongside the usual monsoon content. Delhi's social media truly had a split personality this week. Half devotional, half sentimental.
1: बिल्कुल सही कहा चल। आधा फीड बम बम भोले से भरा था और आधा मेरी सबसे प्यारी दोस्त वाले कैप्शन से। दोस्तों, आखिर यही तो है ना असली भारत, हर मौसम हर भावना को साथ लेकर चलने वाला।
0: ब्यूटिफुली समड अप Khyati, एंड विद दैट लवली मिक्स्ड बैग ऑफ अ वीक, लेट्स मूव टुवर्ड्स रैपिंग अप टुडेज़ शो, बट नॉट बिफोर दिस वंडरफुल सॉन्ग।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvanifeedback@gmail.com, yuvvanifeedback@gmail.com पर।
1: दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमने आपके सोमवार को थोड़ा और खास बना दिया होगा। चाहे वो सावन की भक्ति हो, दोस्ती की गर्माहट हो, या केयर करने की वो छोटी सी टिप।
0: Until next time, take care of yourself, take care of the people around you, and remember, showing up quietly again and again is its own kind of victory. Keep listening to Yuvvani. You were with Khyati and Achal. And don't forget to send your message to yuvvanifeedback@gmail.com.
1: Namaskar.

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

0: लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Lok Sabha today passed the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. The bill aims to increase

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार। और देखो कुसुम, आपको भी हमारा नमस्कार और हमारी सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार। देखिए, सावन ने दस्तक दे दी है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है यमुना बहन। और देखिए ना, लोग मेहंदी, हम लोग मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों में, कितना सुंदर लगता है, हरी हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार करते हैं, बाहर भी हरियाली और जीवन में भी खुशहाली आती है।
1: सच कहें कुसुम, तो हरा भरा संसार, मतलब हरी भरी बगिया, हरा भरा माहौल, रिमझिम की फुहार और साथ ही साथ शिव भक्तों की पुकार। मतलब ये जो सावन मास है, शिव जी को खास करके समर्पित है हम लोगों की तरफ से। और हम लोग इस मास में खास करके, जैसे आज सोमवार है, आज आपने भी व्रत रखा है,
0: सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है,
1: तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सावन मास है बहुत एक कल्याणदायी हो। साथ ही साथ ये जो झूले पड़ते हैं उसकी भी खास बात होती है। इसमें बहुत से तीज त्यौहार भी ऐसे आते हैं जो हमारे पारंपरिक मिलाप का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये जो सावन मास है बहुत ही महात्म्य वाला है और खास करके शिव भक्ति में डूबने वाला है। तो चलते हैं शिव भक्ति के भजन के साथ और जयवीर सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये भक्ति भरा गीत।

0: रागिनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये शिव भजन, कलाकार थे जयबीर सिंह।
1: बिल्कुल यमुना बहन, हमने अभी बहुत ही प्यारा सा भजन सुना, शिवमय हो गया। और क्या, आज सोमवार भी है, सावन का पहला सोमवार है, और आज मैंने देखा कि मंदिरों में काफी भीड़ थी और हम भी पूजा करके आए हैं। लेकिन देखिए ना, कहते हैं ना कि हम उनको क्या अर्पित करें, अर्पण करें, जो हमें, जो देने वाले खुद हैं। हमारा फर्ज यही बनता है कि जो उन्होंने हमें दिया है वो यही चाहते हैं भगवान हमसे कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, मेल मिलाप करके रखें। और यही जीवन की असली सच्चाई है कि हम जो तीज त्यौहार आते हैं उनको बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सावन आया है तो हर जगह पेड़ों पे झूले लगे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे हैं। ऐसी ही कुछ बात इस लोकगीत में कही गई है यमुना बहन।
0: बिल्कुल, रिमझिम फुहार की बात है तो हर तरफ रिमझिम फुहार शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, तो चलते हैं आनंद उठाते हैं हम भी। पूजा शर्मा जो है कलाकार है हमारी, और सुनते हैं उनसे ये लोकगीत।

0: अभी आप सभी सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये सावन का प्यारा सा गीत। और यमुना बहन, हम बात कर रहे थे सावन की, तो सावन तो पूरा महीना पड़ा है और इतने सारे तीज त्योहार हैं। नाग पंचमी है, सावन की शिवरात्रि भी है, बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो हमें जोड़े रखते हैं।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले कुसुम एक संदेश सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: बिल्कुल, बात हम कर रहे थे सावन की, और सावन का जो ऋतु होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब गर्मी से जी घबराता है तो हम बहुत सी बातें करते हैं और कहते हैं भाई गर्मी से जी घबरा रहा, कहीं घूमने उमने ले चल रहे हो कि नहीं ले चल रहे हो।
0: बिल्कुल, तो फिर और जब घूमने की बात होती है तो हम बाहर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पर, ठंडी वादियों में, लेकिन आप घूमने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारा गाँव ही इतना सुंदर है, हर तरफ हरियाली हरियाली है, तो मन यही कहता है कि मेरा गांव कितना सुंदर है, गर्मी से राहत मिलती है हमें।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। तो चलते हैं, थोड़ा सा गर्मी में जब जिया हमारा घबरा रहा है तो कुछ फरमाइश भी कर लेते हैं।
3: अरे गर्मी से

0: अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार से ये लोकगीत। तो यमुना बहन, हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि आज सोमवार है और आज आप सुन सकेंगे 5:30 से 6 बजे तक FM गोल्ड पर हेलो फार्मर्स।
1: आप सुन सकेंगे FM गोल्ड पर हेलो फार्मर्स। इस तो जानकारी को सुनने दे दी, अब साथ साथ ये भी बता दें हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारासर और कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। इसी के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को हमारा
0: नमस्कार।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आप सुनिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां, जिनको लेकर आते हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम में हम। और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे मेरे साथी
3: अर्शद।
2: अर्शद और मैं आपको लेकर चलेंगे खेलों के सफर पर, जहां आपको सुनने को मिलेंगे खेलों से जुड़ी नई नई जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में संपन्न हो चुके हैं और वहां पर भारतीय जो दल है उसने किस तरह का प्रदर्शन किया है, इस पर प्रस्तुत है हमारी विशेष रिपोर्ट।
4: जब जज्बा बड़ा हो तो चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। जब तिरंगा सीने पर हो तो हर मुकाबला इतिहास।

0: बन जाता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। इस बार कई ऐसे खेल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे जिनमें भारत पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पदक जीतता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया को बता दिया कि भारत की खेल शक्ति अब किसी एक खेल तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं कैसा रहा भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा अभियान। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे पायदान पर रहा। इस बार भारत की ओर से 122 खिलाड़ियों ने 8 खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि प्रतियोगिता में कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी जैसे भारत के सबसे सफल खेलों को बाहर रखा गया था। इन्हीं खेलों से भारत ने बर्मिंघम 2022 में 61 में से 25 पदक जीते थे। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इन खेलों के शुरुआती दिनों में, जहां भारत के अभियान का पहला पदक झंडू कुमार ने दिलवाया। उन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर ग्लासगो 2026 में भारत का खाता खोला। झंडू कुमार की कहानी खेलों में आसान नहीं रही। जीत के बाद सुनिए क्या कहा था उन्होंने।
1: हमने तो यहाँ तक पहुँचने में तो क्या क्या नहीं किए, बहुत मेहनत। हमने सब्जी बेचे, यहाँ तक टोटो भी चलाए, सवारी पैसेंजर भी धोए, तब जाके यहाँ तक हमें।
0: इसके बाद श्रीकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में रजत पदक जीतकर एबल बॉडी प्रतियोगिताओं में भारत का पहला पदक हासिल किया। भारत का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीतकर देश की झोली में डाला। इसके साथ ही उन्होंने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का एक इतिहास भी रचा। वेट लिफ्टिंग में भारत ने कुल 8 पदक जीते। मुथु पांडी राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने रजत पदक जीते, जबकि बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों के इमोशन कुछ इस तरह निकले। आइए सुनते हैं मीराबाई चानू और ज्ञानेश्वरी यादव को।
2: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि इस बार भी मैं मेडल दे तो पाऊंगी, पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से, और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का।
3: मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं, और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे किया। और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
0: ग्लासगो से आई इस बार की सबसे बड़ी खबर सिर्फ पदकों की नहीं रही बल्कि भारतीय महिला खिलाड़ियों के शानदार दबदबे की है। मुक्केबाजी से लेकर वेटलिफ्टिंग, जूडो और पैरा एथलेटिक्स तक हर मंच पर भारतीय बेटियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया। मुक्केबाजी इस बार भारत का सबसे सफल खेल साबित हुआ। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे। ये किसी भी देश के द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी में जीते गए सबसे ज्यादा स्वर्ण पदकों का नया रिकॉर्ड था। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंगाल ने स्वर्ण जीते, जबकि जादुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया। खास तौर पर ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और महत्वपूर्ण पदक जोड़ दिया। आइए सुनते हैं उस लम्हे को जब भारतीय बॉक्सर भारत देश का नाम रोशन कर रहे थे।
4: The winner and Commonwealth Games champion in the blue corner from India, Yasmin.
5: And काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाए, तो मेंटल क्रिएट हुआ है। जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेस ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं, और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रीय गान जो सुनना होता है, पोडियम पे खड़े होना, तो लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका ये था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
0: जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की सफलता को और आगे बढ़ाया। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीते। चलिए सुनते हैं अस्मिता को।
6: ये गोल्ड मेडल मेरे लिए बहुत ही मतलब सब कुछ ही है, क्योंकि ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ मैं, और इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया और माइंडसेट के साथ सब कुछ मतलब मेरे डाइट, माइंडसेट, ट्रेनिंग सब कुछ मैंने मेंटेन रख के फिर इसके लिए मैंने लड़ाई किया और गोल्ड मेडल जीता।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स हमेशा सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित स्पर्धाओं में गिना जाता है, लेकिन ग्लासगो 2026 में भारतीय एथलीटों ने ये साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरते हैं। कई नए कीर्तिमान, यादगार प्रदर्शन और अहम पदकों के साथ भारतीय एथलेटिक्स ने इस बार अपनी अलग पहचान छोड़ी। एथलेटिक्स में भी भारत के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हुई। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बने। उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। आइए सुनते हैं क्या कहा गुलवीर ने।
7: फीलिंग अच्छी है, लेकिन मेडल आने के बाद फीलिंग अच्छी हो जाती है, तो दोनों की चलती है, एक ही में दोनों की हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेनिंग चलती है उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि स्पीड भी होता है, एंड्योरेंस का भी काम होता है उसमें, ट्रेनिंग कराता कोच।
0: तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य जीतकर इस स्पर्धा में भारत का पहला कॉमनवेल्थ पदक दिलाया। वहीं नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर शानदार वापसी की। इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
8: अच्छा लगा कि भाई ऐसे एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था, आज काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं।
0: सर्वेश कुशारे ने हाई जंप, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप और प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीते, जबकि सीमा कालीरामना और सेल्वा प्रभु ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं बात करें यदि पैरा एथलेटिक्स की, तो भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। शर्मिला, दिलीप गावित और सोनम राणा ने स्वर्ण पदक जीते। मोहम्मद बासिल और शुभम जुयाल ने रजत, जबकि शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने पैरा स्पोर्ट्स में कुल 7 पदक जीते, इनमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य शामिल रहे। खास बात ये रही कि पैरा एथलेटिक्स में भारत ने 3 स्पर्धाओं में डबल पोडियम फिनिश किया। अगर खेलवार प्रदर्शन पर नजर डालें, तो बॉक्सिंग और एथलेटिक्स से भारत को 10-10 पदक, वेट लिफ्टिंग से 8, पैरा एथलेटिक्स से 6, जूडो से 4 और पैरा पावर लिफ्टिंग से 1 पदक मिला। भारत के इस प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार जी राजा रमन कहते हैं,
9: बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा भारत का। कई लोग सोच रहे थे कि 30 मेडल अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ना शूटिंग था इसमें, ना आर्चरी है, ना रेजलिंग था। कुछ हमारे इवेंट्स जहां पे हमको लगातार मेडल्स आते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, वो डिसिप्लिन ड्रॉप हो गए थे। उसके बावजूद अगर 39 मेडल्स आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा संकेत मिलता है भारत के खेल और खिलाड़ियों से।
0: यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे जो एक इतिहास है वो रचे गए हैं। अगर अस्मिता की बात करें लास्ट डे पर, स्पेशली बॉक्सिंग में लड़कियों की बात करें और ओवरऑल भी लड़कियों की बात करें, तो उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा रही है, इस पर क्या कहना है?
9: बहुत अच्छी बात है, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों ने लाए हैं, हमारे महिलाओं ने लाए हैं, तो ये अच्छी बात है और ये प्रोत्साहित करेगा बाकी जो युवा लड़कियां हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको एक एंकरेजमेंट मिलेगा आगे चल के अपने बच्चों को खिलाने का। भारत का खेल का भविष्य और बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे मेडल्स हमारे महिलाएं जीतती हैं लगातार, आज नहीं पिछले 50 सालों में हमने देखा है। पीटी उषा ने एक रेवोल्यूशन लीड किया था, लेकिन अब और ज्यादा हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यही परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में भी हो, विश्व स्तर पर भी हो। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, हमारा पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर और तेज हो जाता है तो हम विश्व स्तर पर अच्छे देश बन सकते हैं, स्पोर्टिंग नेशन।
0: सर आप लगातार फॉलो कर रहे थे, हम लगातार बात भी कर रहे थे, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ने जो जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी वो यहाँ रही है?
9: बिल्कुल रही है।

0: उम्मीद से बेटर ही हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, अगर हम 30 मेडल का उम्मीद लेके चले थे, अगर 39 मेडल आए हैं तो ये दिखाता है कि कुछ हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर गए उम्मीद से ज्यादा। लेकिन बहुत ज्यादा हम वी शुड ऑल्सो नॉट बी स्वेड, क्योंकि बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग दो ऐसे खेल हैं जहां हमको एशियन गेम्स में मेडल्स कम मिलते हैं, तो हमको वहां पे स्टैंडर्ड इंप्रूव करना होगा। एथलेटिक्स में अगर 10 मेडल आए हैं और 6 हमारे पैरा एथलीट लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस परफॉर्मेंस को सही आंकना चाहिए। वहां पे एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल शायद दिखा नहीं हमको, लेकिन जिस तरीके से दूसरे खिलाड़ी आए, हमेशा हम नीरज की ओर आकर्षित रहता है हमारा ध्यान। सर्वेश कोश्यारी की बात करें, या तेजस्विन शंकर की बात करें, मुरली श्रीशंकर की बात करें, या डिस्कस थ्रो में सीमा की बात करें, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं एथलेटिक्स में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में खास करके एथलेटिक्स का मुकाबला बहुत संघर्ष करना होता है। वहां मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है।
1: तो आपको क्या लगता है, वो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस से खुद को भी प्रूव किया, और अभी आगे आने वाला जो टाइम है उसमें वो प्लेयर जो है इंडिया को और मेडल दिलवा सकते हैं?
0: अगर आप मेरे से एक खिलाड़ी की बात करना चाहते हैं, तो वो तेजस्विन शंकर है, जो डिकैथलॉन का ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। हमें लगा कि वो सिर्फ कांस्य पदक है, लेकिन जो मेहनत उन्होंने की है, 4 दिन, आपको याद होगा हाई जंप कंपटीशन से बाहर हो गए थे, उनके नी में देयर वाज अ प्रॉब्लम, और उसके बावजूद अगर वो आकर मेडल लाते हैं, ये दर्शाता है कि वो कितने भूखे थे मेडल के लिए और भारत का नाम रोशन करने के लिए। सबसे अहम मेडल मेरे लिए एथलेटिक्स में यही रहा। गुलवीर सिंह की हम बात करें तो कम ही होगी, जितनी बात करें कम होगी। कोई ऐसा एथलेटिक्स में खिलाड़ी नहीं था जिसके पास 2 मेडल एक कॉमनवेल्थ गेम में हो, और गुलवीर ने वो कमी पूरा कर दिया है। 10,000 में सिल्वर और 5,000 में ब्रॉन्ज मेडल लेकर गुलवीर ने दिखा दिया कि हमारे ट्रैक के एथलीट्स भी कम नहीं है। इट इज ट्रूली अ वंडरफुल एफर्ट।
1: तो अब सर, क्योंकि आपने जैसा कहा कि नीरज की ओर हम लोग सब देखते हैं, लेकिन कई गेम ऐसे भी रहे, चाहे पैरा स्पोर्ट्स हो चाहे फिर एथलेटिक्स हो, जिसमें हमारे भारत के दो दो खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं, तो भविष्य कैसा लगता है अब आपको ओवरऑल?
0: पॉजिटिव है, सरकार ने खूब पैसा लगाया है हमारे ओलंपिक खेल में, टॉप लेवल के एथलीट्स को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब समय आ गया है जब हम वो डेवलपमेंट एथलीट्स पे फोकस करें, ताकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो अहमदाबाद में आयोजन होने, वहां पे और बेहतर प्रदर्शन हो भारतीय खिलाड़ियों का, और फिर 2032 वाला ओलंपिक और 2036 वाला ओलंपिक, उसमें भी अगर भारत को ज्यादा मेडल लाने हैं, अभी से मेहनत करनी होगी इन एथलीट्स पे जो डेवलपमेंट स्टेज पे होंगे या फिर ग्रास रूट स्टेज पे होंगे। और मुझे लगता है वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने खेलो इंडिया मिशन का एक अनाउंसमेंट किया है, बहुत पैसे लग रहे हैं भारत की भारतीय ओलंपिक स्पोर्ट में, और ये अच्छी बात है।
1: तो दोस्तों, ग्लासगो 2026 ने साफ कर दिया कि भारतीय खेल सिर्फ अब कुछ चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं है। जिन खेलों में कभी भारत की मौजूदगी कम मानी जाती थी, आज वही खिलाड़ी तिरंगा बुलंद कर रहे हैं। सीमित अवसरों में भी 39 पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने ये संदेश दे दिया कि आने वाला समय भारत के खेल इतिहास का सबसे सुनहरा दौर हो सकता है। अब यही उम्मीद और इसी विश्वास के साथ जब भारत 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, तो वहाँ पर भी हम भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी भारत की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में रही। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं टेबल टेनिस के कोर्ट पर, जहां दिल्ली में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसमें भारत का रहा दबदबा। आइए सुनते हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित हुई कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 खिताब अपने नाम किए। अंतिम दिन रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अंकुर भट्टाचार्जी ने पुरुष एकल और यशस्विनी घोरपड़े ने महिला एकल का खिताब जीतकर भारत की उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। हालांकि मेजबान भारत सभी 7 खिताब अपने नाम करने से चूक गया। पुरुष युगल फाइनल में मलेशिया की जोड़ी ने जीत दर्ज करके भारत के क्लीन स्वीप के सपने को रोक दिया। इससे पहले भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में चैंपियन बन चुकी थी। पुरुष एकल के फाइनल में भारत के अंकुर भट्टाचार्जी ने अपने ही देश के पायस जैन को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

0: 19 वर्षीय अंकुर ने इससे पहले सेमीफाइनल में अनुभवी खिलाड़ी मानव ठक्कर को 4-1 से हराया था, जबकि पायस जैन ने मानु शाह को पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। महिला एकल फाइनल में यशस्विनी घोरपड़े ने पेरिस ओलंपिक 2024 की प्रतिभागी श्रीजा अकुला को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यशस्विनी ने सेमीफाइनल में सुतीर्था मुखर्जी को हराया था, जबकि श्रीजा अकुला ने सिंड्रेला दास को मात देकर फाइनल में एंट्री की थी। महिला युगल में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास की जोड़ी ने फाइनल में यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 11-8, 11-3, 11-8 और 11-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मिक्स डबल्स फाइनल में मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया के ए जिनटी और रिचर्ड रुई जे याप को 3-2 से हराया। वहीं पुरुष युगल फाइनल में मलेशिया के शेन ची वोंग और जावेन चूंग ने भारत के मानव ठक्कर और मानु शाह को लगातार 3 गेम में 11-9, 12-10 और 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया और भारत को सभी 7 स्वर्ण पदक जीतने से रोक दिया। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 के बाद पहली बार आयोजित हुई है। पिछली बार ये प्रतियोगिता उड़ीसा के कटक में हुई थी, जहां भारत ने सभी 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस बार भी शीर्ष भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने 6 खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। खेलों के सफल आयोजन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,
1: सभी कोचेज, सभी प्लेयर्स जिन्होंने इस खास इवेंट को बहुत ही खास बनाने में हमारी मदद की। मैं 25 कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए हुए सभी प्लेयर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने भारत आकर के इस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके ना केवल हमारा सम्मान बढ़ाया, बल्कि सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का प्रेम, प्यार और सौहार्द भी बढ़ाया। और ये एक हफ्ता ना केवल दिल्ली के लिए खास था, बल्कि पूरे भारत के लिए और सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए खास था।
0: इसी के साथ दिल्ली में हुए इस आयोजन के बाद टेबल टेनिस से भारत को और अच्छे खिलाड़ियों के निकलने की उम्मीद है। इस आयोजन पर खेल मंत्री दिल्ली सरकार आशीष सूद कहते हैं,
2: कि हमने बहुत सक्सेसफुली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को यहाँ, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया और पूरे भारत के लिए ये गर्व का विषय है, जो गोल्ड मेडल उठे हैं इस टूर्नामेंट में थे, उसमें से गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने लिए हैं, भारत के युवकों और युवतियों ने लिए हैं, भारत की यंग जनरेशन ने लिए हैं। ये खुशी की बात है। धीरे धीरे यहाँ का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और यहाँ के खिलाड़ी इतना आगे निकले कि दिल्ली भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल भी बन पाए। टेबल टेनिस फेडरेशन का सक्सेसफुल समापन ये इस रास्ते की तरफ एक मील का पत्थर साबित हो।
0: चलिए अब एक नजर डालते हैं पदक विजेताओं पर। पुरुष टीम में भारत ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत और इंग्लैंड और सिंगापुर ने कांस्य पदक जीते। महिला टीम में भारत ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को कांस्य पदक मिला। पुरुष एकल में अंकुर भट्टाचार्जी ने स्वर्ण, पायस जैन ने रजत और मानु शाह और मानव ठक्कर ने कांस्य पदक जीते। महिला एकल में यशस्विनी घोरपड़े ने स्वर्ण, श्रीजा अकुला ने रजत, जबकि सिंड्रेला दास और सुतीर्था मुखर्जी ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुष युगल में मलेशिया के वोंग क्यूई शेन और चुंग जावेन ने स्वर्ण, भारत के मानव ठक्कर और मानु शाह ने रजत, जबकि भारत के साथियान ज्ञान सेकरन, हरमीत देसाई और ऑस्ट्रेलिया के निकोलस वेन झेन लुम, आदित्य सरीन ने कांस्य पदक जीते। महिला युगल में श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास ने स्वर्ण, यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक ने रजत, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत की तनीषा कोटेचा, सयाली वानी ने कांस्य पदक जीते। मिक्स डबल में मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने स्वर्ण, मलेशिया के रिचर्ड याप रुई जे और टी ए जिन ने रजत, जबकि भारत के साथियान श्रीजा अकुला और मानु शाह, स्वस्तिका घोष ने कांस्य पदक जीते। कुल मिलाकर नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 खिताब जीतकर एक बार फिर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में अपना दबदबा साबित कर दिया। और सिर्फ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ही नहीं, भारतीय खिलाड़ी हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी अर्शद के पास।
3: जी, आपको ले चलते हैं अंडर 17।

0: इंडियन रेसलिंग की दुनिया में जहां पर अजरबैजान बाकू में इंडियन खिलाड़ियों ने लगा दी मेडल्स की झड़ी। बाकू में भारत का शानदार प्रदर्शन, सितेंद्र मलिक बने दो बार के अंडर 17 विश्व चैंपियन। जी हां, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 17 वर्षीय सतेंद्र मलिक, जिन्होंने 60 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में लगातार दूसरी बार विश्व खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। पिछले साल 2025 के विश्व चैंपियन सितेंद्र ने फाइनल मुकाबले में रूस के सर्गेई कारमरियन को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस जीत के साथ सितेंद्र मलिक भारत के केवल दूसरे पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवान बन गए हैं जिन्होंने अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में 2 बार विश्व खिताब जीता है। इससे पहले ये उपलब्धि भारतीय कुश्ती के दिग्गज और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने हासिल की थी, जिन्होंने 1998 और 1999 में लगातार कैडेट विश्व खिताब जीते थे। सितेंद्र की इस ऐतिहासिक सफलता को भारतीय कुश्ती के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत को दूसरा पदक 45 किलो वर्ग में मिला। महाराष्ट्र के हनुमंत राजेंद्र जाधव ने कांस्य पदक मुकाबले में ईरान के मेहदी दाऊद दामरचेली को 7-1 से हरा कर शानदार जीत दर्ज की और कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 92 किलोग्राम वर्ग में सक्षम ने कांस्य पदक के मुकाबले में ईरान के मोहम्मद रजा बेहरंग ईसा जादेह को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर भारत की झोली में एक और कांस्य पदक डाला। इसके साथ ही 110 किलोग्राम वर्ग में आरुष राणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 48 किलोग्राम वर्ग में आर्यन ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पुरुष फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं के समापन के साथ ही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का भी समापन हो गया। महिला और पुरुष वर्गों को मिलाकर भारत ने कुल 13 पदक जीतते हुए इस विश्व चैंपियन में अपना अब तक का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। एक बार फिर भारतीय युवा पहलवानों ने साबित कर दिया है कि विश्व कुश्ती में भारत की नई पीढ़ी मजबूती से अपनी पहचान बना रही है। सितेंद्र मलिक का लगातार दूसरा विश्व खिताब आने वाले वर्षों में भारतीय कुश्ती के लिए नई उम्मीद और नए विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है।
1: चेस के बाद अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, जहां एक जो खबर है वो अभी अभी क्रिकेट के मैदान से निकल कर आ रही है, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो हैं वो अपनी इंजरी के चलते श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और बुमराह की जगह पर जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। आकिब अब तक खेले गए 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 18 की औसत से 162 विकेट चटका चुके हैं और उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा 16 बार किया है। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में आकिब 36 मुकाबलों में 27 की एवरेज से 56 विकेट निकाल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से आकिब को भारतीय टेस्ट टीम में जगह देने की मांग जो है वो एक लंबे समय से चल रही थी और अब जाकर के उन्हें ये मौका मिल गया जब बुमराह जो है वो इंजर्ड है। तो हर एक मौके को भुनाना चाहिए अरशद, और आकिब को भी यहाँ पे ये सोचना होगा कि अब मौका मिला है तो उसे हाथ से ना जाने दें, और हाथ से ना जाने दें हम ऐसे कोई पासे जहां से हमारे इंडियन जो प्लेयर्स हैं चेस में पिछड़ जाएं। तो चलिए चलते हैं अरशद के पास चेस की खबर के लिए।

0: शतरंज की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के पहले दिन 3 रैपिड मुकाबले खेले गए। प्रज्ञानंदा ने इसमें से 2 मुकाबले जीते और 1 ड्रॉ खेलते हुए कुल 5 अंक हासिल किए। रैपिड प्रारूप में जीत के लिए 2 अंकों और ड्रॉ के लिए 1 अंक मिलता है। इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर वह अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। पहले दिन के खेल के बाद उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव और अमेरिका के वेस्ली सॉ 4-4 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 1-1 मुकाबला जीता जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। पहले दिन कुल 5 मुकाबलों का फैसला हुआ। अनुभवी खिलाड़ी लिवॉन अरोनियन ऐसे एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्होंने पहले दिन 1 मुकाबला जीता और 1 मुकाबला गंवाया। बाकी मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। यह टूर्नामेंट 2026 ग्रैंड चेस टूर का अहम पड़ाव है। ग्रैंड चेस टूर की शुरुआत मई महीने में हुई थी और अगस्त में इसके अंतिम 3 टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता हो रही है। इसके बाद 10 से 20 अगस्त तक प्रतिष्ठित सिंकफील्ड कप खेला जाएगा जबकि 22 से 27 अगस्त के बीच ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स आयोजित होंगे। आपको बता दूं, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता 2 हिस्सों में खेली जाती है। पहले 3 दिनों में रैपिड मुकाबले होंगे जबकि अंतिम 2 दिनों में ब्लिट्ज शतरंज खेली जाएगी। दोनों प्रारूपों के अंकों को मिलाकर अंतिम विजेता का फैसला किया जाएगा। इस बार प्रतियोगिता में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें फैबियानो कारुआना, वेल्सी सॉ, लिवॉन अरोनियन, अनीश गिरी, लैनियर डोमिंगेज, विसेंट कीमर, अवंडर लियांग, जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट और जावोखेर सिंदारोव जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि 2 बार के ग्रैंड चेस टूर विजेता अलीरेजा फिरूजा इस बार इस श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उन्होंने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का फैसला किया है जिसकी तारीखें सिंकफील्ड कप से टकरा रही हैं। उनकी जगह सिंकफील्ड कप में सैम सेवियन खेलेंगे। टूर्नामेंट के विजेता को 50,000 के अमेरिकन डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। इस वर्ष कुल पुरस्कार राशि में पिछले साल की तुलना में 25,000 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। अब सभी की निगाहें दिन के दूसरे मुकाबलों पर टिकी हैं। रैपिड चरण के अगले 3 राउंड आज खेले जाएंगे जहां भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा अपनी बढ़त को बरकरार रखने और खिताब की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से शतरंज की बिसात पर उतरेंगे।
1: शतरंज की बिसात पे खिलाड़ियों को जितना दिमाग दौड़ाना पड़ता है उतनी ही दौड़ लगानी पड़ती है हमारे फुटबॉलर्स को मैदान पर मैच जीतने के लिए। जी हाँ, अब हम बात करेंगे ड्यूरेंट कप की जिसका 135वां एडिशन खेला जा रहा है। 25 जुलाई से 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 24 क्लब हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 2 अगस्त को खेले गए मुकाबलों में 13वां मैच खेला गया जिसमें समलेश्वरी स्पोर्टिंग क्लब ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 3-2 से हरा कर ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और ये जो मुकाबला था कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली लेकिन अंत में मुकाबला समलेश्वरी स्पोर्टिंग क्लब ने जीत ही लिया। वहीं आज शाम इस टूर्नामेंट के ग्रुप डी, ई और एफ के मुकाबले खेले जाने हैं। ग्रुप डी में TRAUFC का मुकाबला FC रेंगदाई से शाम 4 बजे होने वाला था। इसके बाद जो हमारा मुकाबला है, अगर ये मुकाबले की बात करें तो फिर इस मुकाबले में भी खेला जा रहा है और इसके बाद जो ग्रुप एफ का मुकाबला है वो कार्बी आंगलोंग और FC1 का जो मुकाबला है वो शाम 4 बजे से वो भी खेला जा रहा है और जो तीसरा मुकाबला है वो शाम 7 बजे मुंबई FC और लैंगसेनिंग FC के बीच होने वाला है। तो अब चलते चलते जो इसका रिजल्ट है वो मेरे सहयोगी आपको बताएंगे क्योंकि कुछ मुकाबलों के रिजल्ट आ चुके हैं।
2: जी हाँ, के आर कार्बी एंग्लो मॉर्निंग स्टार FC ने 1-1 ने 2-1 से ही मुकाबला जीत लिया। उसके अलावा ट्राओ FC और उसके FC रैंडेग के बीच में एक मुकाबला खेला जा रहा था जिसको उन्होंने 4-3 से FC रैंडेग ने जीत लिया है।
1: जी, तो ये ताज़ा आंकड़े इस ड्यूरेंट कप के आपके साथ थे। हम फिर आएंगे कल अपने इस प्रोग्राम के साथ। तब तक हम कहेंगे कि आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इस प्रोग्राम में मुझे कविता शर्मा, मेरे से होगी
2: अरशद को,
1: हमारे प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति। सुनते रहिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह

0: चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम, राम। यमुना बहन,
1: हाँ जी,
0: हम हाजिर हैं ग्राम संसार लेकर, और बहुत सारी बातें होंगी, चर्चा भी होगी, योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और बातचीत भी सुनवाएंगे।
1: लेकिन आज है खास दिवस, क्योंकि आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती है और हर साल 3 अगस्त को मनाई जाती है, और इस दिन को भारत में कवि दिवस के रूप में भी याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, साहित्य जगत में उन्हें दद्दा कहा जाता था और उन्हें भारत

0: सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें 1912 में राष्ट्रकवि कहा था।
1: और कहा जाए तो जब अधिकांश कवि जो ब्रजभाषा होती थी कवि की उसमें लिखते थे, तब उन्होंने सरल खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का मुख्य आधार बनाया।
0: बिल्कुल। और भारत भारती ये उनकी अत्यंत प्रसिद्ध देशभक्ति रचना है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में एक नया जोश भर दिया था।
1: और साकेत एक ऐसा है जो साकेत लिखा उन्होंने एक बुक जो है उसमें रामचरितमानस के पात्र मतलब उर्मिला के त्याग पर आधारित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है ये।
0: बिल्कुल।
1: इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का आज ये जन्मदिवस हम सभी मना रहे हैं। और बात करें मौसम का, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत से फायदे भी हैं, उस फायदे का जो लाभ में फायदा तो लेना ही चाहिए उस चीज का।
0: बिल्कुल। तो आइए सुनवाते हैं बातचीत, बरसात के मौसम में पौधारोपण कैसे करें, डॉक्टर सुखदेव सिंह पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्क एवं उद्यान सोसाइटी एवं कृषि वानिकी विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे हैं रूप सिंह डागर।
2: किसान बहनों और भाइयों, भी आपका ध्येय होता है कि कोई एक ना एक पौधा हम अवश्य लगाएं, चाहे आप फल वृक्ष लगाते हैं, चाहे आप छायादार फल वाले भी वृक्ष लगाते हैं, और साथ साथ कई बार तो आपकी मनसा ये रहती है कि क्यों ना हम ऐसे वृक्ष लगाएं जो जड़ी बूटी के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ तक कि अपनी भूमि को सुधारने के लिए भी आप वृक्ष लगाते हैं। देखिए, आपके दिमाग में तरह तरह की मनसाएँ होंगी, उनको सही दिशा देने के लिए हमारे बीच पहुंच गए हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह पूर्व कार्यकारी अधिकारी दिल्ली पार्क एवं उद्यान सोसाइटी और कृषि वानिकी विशेषज्ञ। तो क्यों ना इनसे सलाह लें और भविष्य के लिए आप भी जो पौधे लगाएं उनमें कोई आपसे चूक ना हो, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए।
3: जी, बहुत ही अच्छा विषय है, खासकर आजकल जो ये सावन का महीना भी चल रहा है और हम ये कहते हैं जब भी वर्षा ऋतु होती है तो सबसे जरूरी ये होता है कि हम फसल तो लगाते ही हैं जो कि खाद्यान्न के रूप में है, या परंतु आजकल क्या है पेड़ों को लगाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय है। हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग फसलों के साथ में यदि फसलों के बीच में इस प्रकार से पेड़ लगाएं ताकि हमें फसल की जो आमदनी है वो तो मिलेगी ही, परंतु पेड़ों की जो आमदनी है, पेड़ों की जो रखरखाव है, पेड़ों का जो आगे भविष्य में चल के बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक जो हमारे खेत में रहेंगे उनकी भी हम उसी प्रकार से देखभाल करें। तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के पेड़ लगाएं और वो पेड़ जो हैं क्या हमारे लिए उपयोगी हैं या भूमि के लिए उपयोगी हैं या पर्यावरण के लिए उपयोगी।
2: तो डॉक्टर साहब बहुत ही अहम बात आपने कह दी कि भाई देखिए फसल तो हम लगाते ही हैं, तो सोशल वानिकी के तहत जो हम पौधे लगाते हैं चाहे हम उनसे बीच में लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल फलत में आ रही है और देखिए जो हमने पौधे उसमें लगा रखे हैं उनमें छाया बन जाती है, तो उससे भी कुछ नुकसान होता है।
3: जी, एक जरूरी हमें ये देखना है कि हम पेड़ पौधे जो पेड़ हैं जो वृक्ष हैं वो किस प्रजाति का लगा रहे हैं।
2: अच्छा जी।
3: और साथ में ये भी देखना है कि उस प्रजाति का जो पेड़ लगाया है वो हमारे लिए पतझड़ के रूप में है या नहीं है। यदि वो पतझड़ के रूप में है और खासकर वो सर्दियों के लिए पतझड़ होती है तो वो एक बहुत ही उपयोगी पौधा होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि धूप की कमी कब होती है, वो सर्दियों में होती है, और यदि सर्दियों में उसकी पतझड़ हो जाए तो वो हमारे लिए आम के आम और गुठलियों के दाम होते हैं। इस प्रकार के पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है।
2: तो डॉक्टर साहब सीधा इशारा पॉपुलर की तरफ जा रहा है?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। पॉपुलर यूकलिप्टस ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये भारतवर्ष में दोनों प्रजातियां जब से आई हैं तब से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बहुत से जंगल बचे हैं, इसलिए इशारा इसको इस प्रकार से भी माने कि ये अच्छी बात है, परंतु पॉपुलर यूकलिप्टस ही अंत नहीं है। बहुत से जैसे आम का पेड़ है, आप बहुत सी देखेंगे कि आम, यदि हम ये नहीं है कि जरूरी हर जगह में पेड़ लगा दें, हमें हर मेड़ पर पेड़ लगाएं, मेड़ काफी दूर होती है, तो बीच में यदि खेती लगा रहे हैं और दूर जाकर पेड़ हो रहा है तो पेड़ का उतना ही फायदा हमें मिल जाता है जितना कि हम घने में लगाएं, परंतु यह है कि उसमें पतझड़ होना जरूरी है ऐसे पेड़ों में जो भी लगाएं। जैसे हम चारे के लिए यदि कोई पेड़ लगाएं, भीमल का पेड़ जो होता है या कचनार का जो पेड़ होता है उसे चारा भी मिलता है और वो पेड़ के रूप में भी वहां पर है, तो वो खेत में भी हो जा, खेत के किनारे में या मेड़ पर भी हो जाता है, और वो जो है हमें चारा भी देता है, तो चारे के रूप में हम सर्दियों में उसके जो है टहनियाँ काट देते हैं, तो पेड़ जो है बिना पत्ते विहीन या बिना झाड़ियाँ टहनियाँ विहीन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें जब सोचेंगे हम लोग, तो पेड़ तो कई प्रकार के हैं और हमें फसल भी मिल रही है, पेड़ों का जो पेड़ भी लगाए उसका भी लाभ मिल रहा है, और पेड़ों से जो उपज आती है उसका भी लाभ मिल रहा है।
2: तो डॉक्टर साहब, जो शहतूत का जो पौधा है ना
3: जी,
2: इसको भी जो है हमारे पशु बड़े चाव से खाते हैं।
3: बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, शहतूत का एक अलग टाइप का पेड़ है, मैं आपको उसके बारे में आप बताएंगे। हम लोग जो पहनते हैं रेशम,
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: वो शहतूत से ही निकलता है।
2: अच्छा।
3: और बहुत सी बार में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जरूरी नहीं है कि और फसल लगाएं, हम लोग पूरा फार्म अपना जो प्राइवेट लैंड है, अपनी जो जमीन है उसमें हम शहतूत ही लगा देते हैं, और इस प्रकार शहतूत लगाते हैं, और इस प्रकार से उसकी वो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मतलब ऊपर से इस प्रकार से काटते हैं ज्यादा से ज्यादा टहनियां आए। और शहतूत जो है हमेशा पतझड़ के रूप में भी होता है, तो हम खेतों में भी यदि उसको लगाते हैं और बीच में हम खेती कर लेते हैं, तो शहतूत बहुत ही उपयोगी पौधा है। एक नंबर दो पर शहतूत से बहुत अच्छा फल मिलता है। नंबर तीन सबसे जरूरी है, शहतूत के पत्ते यदि आप कहीं रेशम का वो नहीं निकाल रहे हैं, तो शहतूत के पत्ते जो हैं वो चारे के फसल में भी काम आते हैं।
2: अब देखिए डॉक्टर साहब, जो राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पर हर पौधा नहीं लगा सकते, तो वहाँ के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम लगा करके अपने पशुओं का पालन पोषण करने में चारा उनसे मिल जाए।
3: जी जी, देखिए एक चीज बताता हूँ, राजस्थान में भी यदि आप जलवायु को देखेंगे वहाँ की, जहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो, यदि अरावली जो पहाड़ है ये, इसके जो पूर्व साइड में और इसके जो पश्चिम साइड में थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है। जैसे ही हम पूर्व साइड में आते हैं तो वहां पर थोड़ा पानी भी है, वहां पर नमी भी है, तो वहां पर बहुत से पौधे जो हैं वो ऑलमोस्ट हो जाते हैं। परंतु जैसे ही आप पश्चिम की ओर चलते हैं तो वहां पर पौधा जो होता है वहां पर ड्राई कंडीशन है, सूखापन बहुत ज्यादा रहता है, रेत है जमीन में, जो उपजाऊपन है वो कम है, तो वहां पर हम खेजड़ी बहुत लगाते हैं, वहां पर नीम बहुत लगाते हैं। और ये खेजड़ी और नीम जो है वो पशुओं के चारे के भी काम आती है, खेजड़ी से हमें दाना जो मिलता है, जो बीज मिलता है, वो खाने के भी काम आता है, और खेजड़ी जो है उसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं कि हम कभी ये सोचते हैं कि जमीन में नीचे पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, खेजड़ी का पौधा पानी को जमीन में ले जाने में मदद करता है, उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, जो नीचे जमीन के नीचे जो पानी का लेवल होता है वो भी ऊपर आ जाता है। नीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, नीम उस एरिया में बहुत हो जाता है, और उसको यदि हम लगाते हैं तो उससे हमें नीम के जो बीज होते हैं वो भी हमारे बहुत काम आते हैं, उससे तेल निकलता है। आजकल हम लोग कहते हैं कि नीम कोटेड यूरिया,
2: हाँ जी हाँ जी,
3: तो वो नीम कोटेड यूरिया यही जो बीज निकलता है, इससे जो तेल निकलता है उससे यदि हम नीम कोटेड यूरिया जो है बना सकते हैं। दूसरा, उसके जो पत्ते हैं यदि आप उसका पाउडर बना लें, उसको खाने के काम में लगा लें, पाउडर कई बार जो है हमारे इसमें स्किन में हमारी जो जो बाहर की त्वचा है उसमें कई बार फोड़े आ जाते हैं, फुंसी आ जाती हैं, तो उनका लेप लगा दें, उसका पाउडर का कुछ और बना लें, तो उसको हम लगाते हैं तो हमें दवाई के रूप में भी काम आता है। तो नीम एक ऐसा बहुमूल्य और बहुत ही उपयोगी पौधा है जो कि उस राजस्थान के उस सूखे भाग में हो जाता है जहां पर कि और दूसरी चीजें नहीं होती हैं। तो ये खेजड़ी और नीम जो है वो वहां के बहुत ही उपयोगी पौधे हैं।
2: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा है कि कई जमीन खराब हो जाती है, मान लो बंजर हो जाती है, तो वहां पर कौन कौन से पौधे इस समय हम लगा सकते हैं?
3: देखिए, सही बात यह है कि ये हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी हम खेती करते हैं तो खेती में हम सारे पोषक तत्व नहीं डालते, एक, और दूसरा हम लगातार फसल उगाते रहते हैं। तो होता क्या है, उससे जब आप केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालेंगे और दूसरी कोई और तत्व नहीं डालेंगे, तो वो जमीन तो एक तो उसकी उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, जब भी हम इस प्रकार के पौधे लगाते हैं, मतलब वो लगातार फसल लेते रहते हैं, तो उसका उपजाऊपन वैसे ही कम हो जाता है। तीसरा, देखिए सही बात है कि जो इस प्रकार के राजस्थान या इस प्रकार से जो एरियाज हैं वहाँ पर जब हम लोग लगातार फसल लेते हैं, जमीन का पानी निकाल के उसमें डाल देते हैं, तो उसमें जो सेलिनाइजेशन जो है वो मिट्टी की जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो वैसे ही खराब हो जाती है भूमि। ऐसी जगह में जरूरी है हम पेड़ों का जो है उपयोग करें, पेड़ों को इस प्रकार के पेड़ों को लगाएं जो कि जब भी वो बड़े हो जाते हैं पेड़, तो वो जमीन में पानी को ले जाते हैं, उसके पत्ते जो हैं वो नीचे ऑर्गेनिक मैटर या जो हम लोग आजकल बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फसल तैयार हो जाती है, तो वो इन्हीं पत्तों को यदि जमीन में अपने आप मिलते रहेंगे तो ये जमीन उपजाऊपन इसका जो है वापस आ जाता है, इसमें जो सेलिनाइजेशन है वो कम हो जाती है, और वो जो हमारे पेड़ हैं वो हम ये कहते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी है या जो मिट्टी की उर्वरकता है वो लंबे समय तक जो है वो वापस जो है आ जाती है।
2: अच्छा जी, और कई बार ऐसा होता है कि जब कि देखते हैं कि जमीन ऊंची नीची होती है और जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मिट्टी का कटाव होने लगता है, और खेत हमारे खराब हो जाते हैं, उस परिस्थिति में क्या?
3: देखिए सही बात है, एक तो मैं आपको सही बताऊं कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि जो भी बारिश होती है या जब भी पानी हम इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर से सीट इरोजन होता है,
2: हाँ,
3: और
2: हाँ,
3: जो मेड़ है, हाँ, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर मेड़ पर पेड़,
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: या माँ के नाम से पेड़,
2: हाँ, हाँ,
3: यदि हम इन योजनाओं के अपने दिमाग में डाल रहे हैं, अपने अपने हाथों से इन चीजों को लगाना शुरू कर दें,

0: हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, एक तो हम अपना जलवायु जो है उसको ठीक कर रहे हैं, दूसरा ये जो मिट्टी का कटाव होता है, ये जो पेड़ पौधे यदि आप लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इनकी जड़ है वो हमेशा कटाव को रोकती हैं।
1: अच्छा,
0: दूसरा ये जो पानी जो बहने लगता है वो अपने आप में रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि कटाव जब रुक जाएगा तो वो जो जड़ें हैं उनमें से नीचे जमीन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जड़ों से
1: अच्छा।
0: और वो पानी जमीन में चला जाता है, तो पानी का जो बहाव है वो भी रुक जाता है और जमीन का जो जिसे बोलते हैं कि कटाव है वो भी रुक जाता है। तो ये हमारा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसके बोलते हैं कि मृदा एवं पानी का जो संरक्षण है वो अपने आप में इन पौधों से हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि देखिए वैसे तो कहावत है और ये भी है कि भाई पानी के बिना तो सारा ही कुछ शून्य है, और पानी जैसे किसी नहर नाले से जा रहा है तो उसमें रिसाव होने लगता है और आसपास की ज़मीन ख़राब हो जाती है, तो रिसाव का जो पानी है वो वहाँ की मिट्टी को ख़राब ना करे, तो उसके लिए क्या कुछ?
0: देखिए एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम लोग जब भी ये देखते हैं कि ज़मीन में पौधे नहीं हैं और आगे जाकर नाला है कहीं, और पानी जो है वो नाले के नीचे से, सतह से नीचे से दूर खेतों में आ जाता है, वो जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड मूवमेंट ऑफ द वाटर, और उससे क्या होता है कि कुछ जगह में जाकर ज़मीन में पानी भर जाता है। और ये ज़रूरी है कि हम जो नहर है उसके किनारे या नदी है उसके किनारे हम लोग इस प्रकार के पेड़ लगाएं, जिससे कि ये जो पानी उधर को जा रहा है, दूर चला जा रहा है, एक तो वो रुक जाएगा, उससे कटाव जो है वो भी रुक जाएगा, तीसरा ये जो पानी है ये नीचे ज़मीन में चला जाए उसके लिए भी ये पेड़ पौधे मदद करते हैं। और ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि पानी में तैयार हो जाते हैं, जैसे अर्जुन और जामुन, ये दो ऐसे पेड़ हैं जिनको आप यदि मतलब जिसे बोलते हैं खड़े हुए पानी में भी लगा दें तब भी हो जाते हैं, और नदी के किनारे नहर के किनारे इनको लगाते हैं तो आपके ये पेड़ बहुत अच्छे चलते हैं। आजकल हम ये भी बोलते हैं कि यूकलिप्टस जो है जो सफेदा है बहुत पानी सोखता है, परंतु यदि पानी बहुत ज़्यादा है कहीं पर तो यदि ये नहर के किनारे यदि सफेदा को लगा दें तो वो पानी ले लेगा, और ये बोलते हैं हम लोग कि सफेदा बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, सफेदा अच्छा है यदि पानी ज़्यादा है। और यदि पानी ज़्यादा है तो आप ये भी तो देखोगे ना कि 8 साल में जो पौधा जो आपको एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है इतना बड़ा टिम्बर इतना बड़ी पेड़ दे देता है, वो आपको शीशम और टीक में वो आपको 20 और 25 साल में मिलेगा जाकर, तो एक तो आपको तुरंत लाभ भी मिल रहा है उससे, और दूसरा जो ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको वो लेकर वो अपनी बर्थ बना रहा है और हमारे लिए उपयोगी हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उनका चयन करके यदि हम ऐसे नहर के किनारे पेड़ों को लगाएं तो हमें फ़ायदा मिलेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, कुछ सामला जगह होती है, गांवों में भी होती है और शहरों में भी होती है, भले उनको हम पार्क के रूप में तब्दील कर दें या मतलब ये कि किसी वन के हिसाब से, तो उनमें कौन से पौधे लगाएं?
0: देखिए ये जो आपने बात रखी है ये बहुत ही मतलब सामान्य बात है, परंतु इसमें ना गहराई बहुत छुपी हुई है।
1: हाँ,
0: इसको सही बताएं तो देखो, एक तो हम शब्द बोलते हैं कि खेतों में पेड़ लगाना,
1: हाँ जी,
0: चाहे वो निजी जमीन है जिसमें खेती हो रही है,
1: हाँ
0: और जो पेड़ है जमीन है जिसमें खेती नहीं हो रही है, तो जो जहां पर तो खेती हो रही है उसमें पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कृषि वानिकी,
1: हाँ जी,
0: और जहां पर खेती नहीं हो रही है और हम पेड़ लगा रहे हैं और वहां पर और जानवर चराने का काम कर रहे हैं या मछली पालन का काम कर रहे हैं, वो हमारी अपनी जमीन है और उसमें यदि पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म वानिकी, वो हमारा जिसे बोलते हैं एक फार्म है हमारे पास में, फार्म हाउस है,
1: हाँ,
0: तो घर तो है ही है, उसके चारों ओर यदि पेड़ लगा दिए तो फार्म हाउस हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताया ये तो हो गया हमारी प्राइवेट जमीन, और जो आपने बात रखी है उसको बोलते हैं हम सामाजिक वानिकी, जो सामाजिक भूमि है या वन से बाहर की भूमि है और उनमें जैसे शामलात आपने बोला या और कोई जमीन ऐसी जिसमें बिल्डिंग के चारों ओर है, बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चारों ओर है, तो सामाजिक वानिकी या अर्बन वानिकी उसको बोलते हैं हम लोग, यदि उसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक बिल्डिंग बनाने से वहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, वहाँ पर गर्मी बहुत हो जाती है, और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि शीशे लगा देते हैं, शीशे जो है वो सूर्य की रोशनी को अंदर ले लेते हैं और उससे और ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, या बहुत सी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो एसी लगा देते हैं और एसी जो है अंदर तो ठंडक देता परंतु बाहर वो गर्मी देता है, तो वहां पर हीट आइलैंड इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ऐसी जगह में यदि हम लोग बहुत अच्छे घने और ऐसे पेड़ लगाएं जिनमें हमेशा पत्ते जो हैं हमेशा रहते हैं, जिसमें पतझड़ तो होती है परंतु हमेशा पेड़ जो है वो पत्ता बहीन नहीं होता, तो इस प्रकार की यदि पेड़ हम लगाते हैं वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सही में इसमें कुछ आप कुछ मतलब यदि उदाहरण दूं तो आजकल हम लोग बोलते हैं केसिया सियामिया, अमलताश, आप देखेंगे शहरों में अमलताश जब लगाते हैं पीला फूल उसमें आ जाता है,
1: हाँ,
0: और कितना बढ़िया होता है कि सर्दियों में हमेशा पत्ते रहते हैं और गर्मियों में हमेशा पीला फूल आता है, तो एक अलग शहर का माहौल हो जाता है केसिया सियामिया।

0: है। इसी प्रकार से गुलमोर है, ये पेड़ यदि अर्बन एरिया में हम लगाएं तो बहुत अच्छा है, और समाज का सामाजिक भूमि है तो उसमें हम बहुत से ऐसे पेड़ लगा सकते हैं, जामुन लगाएं, शहतूत लगाएं, अर्जुन लगाएं, इस प्रकार के पेड़ लगाएं। और यदि बहुत ही सूखापन रहता है तो हम जंगल जलेबी लगाते हैं, हम लोग कीकर के पेड़ लगा देते हैं, और वो ऐसा नहीं है कीकर का पेड़ बुरा है, यदि कुछ और नहीं होता तो कीकर पे का पेड़ होना बहुत अच्छी बात है, और उसमें जब फूल आते हैं तो वहाँ पर उसमें बर्ड्स जो है, पक्षी जो है वो बैठते हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ उसमें आकर बैठती हैं, वो अपने लिए वो नेक्टर लेती हैं, फिर हमें शहद देती हैं। तो इस प्रकार के पेड़ों का चयन करने से हमें बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा और सामाजिक भूमि जो है वो हमें हरा भरा दिखाई देगी। और आपको सही बताऊँ, हमारी 1/3 भाग जो है ज़मीन का वो हरा भरा होना चाहिए, और हमारे पास में ज़मीन बची कहाँ है, लगभग 25% ज़मीन ऐसी है जो वनों के आच्छादित होनी चाहिए है, और उसके बाहर हमें 33% के लिए 8% और ज़मीन चाहिए, तो वो हमारे पास में या तो ये सामाजिक वानिकी है या फिर ये जो कृषि भूमि है उसी में है जिसमें हम पेड़ लगा के 1/3 भाग जो है ज़मीन का हरा भरा कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, प्रकृति का सौंदर्य बढ़े उसके लिए हम लगातार पेड़ लगाते रहें ताकि हमारे पर्यावरण की समस्या का समाधान हो और हमारी ज़रूरतें पूरी हों। काफ़ी अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी के लिए डॉक्टर सुखदेव सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आइए इस मौसम में हम पेड़ लगाएं और ज़मीन को हरा भरा बनाएं।
2: बरसात के मौसम में पौधारोपण कैसे करें? डॉक्टर सुखदेव सिंह जो कि पूर्व कार्यकारी अधिकारी पार्क्यों मुद्दान सोसाइटी कृषि वानिकी विशेषज्ञ, इन्होंने बहुत ही विस्तार में अच्छी जानकारी दी और इनसे बातचीत कर रहे थे रूप सिंह डाकर।
3: बिल्कुल यमुना बहन, बहुत अच्छी जानकारी थी। जब बात पेड़ पौधों की हुई है, बरसात के मौसम की हुई है और पर्यावरण की हुई है, तो एक इसके ऊपर रागनी तो बनती है। तो हम मनोरंजन कराते हैं अपने भाई बहनों का, सुनवाते हैं श्रीपाल मार्शल से ये रागनी।

0: और देखो, जानकारी की जब हम बात करते हैं कुसुम, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं चली जाती है, अभियान चलाए जाते हैं, जिसका फायदा हम सभी को उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, बात करें समग्र शिक्षा अभियान की, तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है यमुना बहन। ये योजना पूर्व प्राथमिकता से लेकर 12वीं तक जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशन और सार्वभौमिक सुधार में सुधार के लिए बनाई गई है, ताकि बच्चों को जो उनकी जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं उनकी पूरी हो सकें। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पूर्व विद्यालय से लेकर कक्षा के 12वीं तक शिक्षा का एकीकरण हो।
0: बिल्कुल, और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा का विलय भी इसी में किया गया, और शिक्षा में डिजिटल तकनीक को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे बच्चे डिजिटल तरीके से हर चीज़ों को सीख सकें। और एक बात और है, सभी के लिए समान अवसर और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, पूर्व जो विद्यालय है उससे कक्षा 12वीं तक का शिक्षा का जो एकीकरण है वो भी होता है। इससे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा का विलय भी इसमें शामिल है। और अगर वित्तीय संरचना की बात करें यमुना बहन, ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% वित्तीय सहायता देती हैं।
0: बिल्कुल, और शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, तो सच कहें शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसी बात को बताने जा रहे हैं मनसाराम चौहान कलाकार, और इस रागनी के माध्यम से, इस उपदेश के माध्यम से, कि कैसे शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं मनसाराम चौहान के द्वारा ये गाया हुआ उपदेश।

कोई अनपढ़ मानस को दुनिया में ना कोई साथ लगावे। अनपढ़ औरों की विनती कर अपने काम करावे। छोटी छोटी

मुसीबत भारी, ना कोई उससे यारी चाहवे, ना कोई रिश्तेदारी। अनपढ़ के संग हेरा फेरी हो जाती गद्दारी, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए।

0: रही है संतान को सदा पढ़ावे।
1: अभी आप सुन रहे थे मनसाराम चौहान से रागनी, और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
2: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारसर और कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा राम राम।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 7 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा से के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। अप्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम, राम।
1: जी हाँ यमुना बहन, हम जैसे बताते रहते हैं किसान भाई बहनों को बहुत सही योजनाओं के बारे में, और एक ऐसी ही योजना के बारे में हम बताना चाहेंगे। एक ऐसी योजना है जैसे कई बार जैसे हम मेहनत करते हैं लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कई जो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती या फसल रोगों के कारण ख़राब हो जाती है, तो किसानों को वित्तीय सहायता और मुआवजा दिया जाता है। तो ये योजना है फसल बीमा योजना।
0: बिल्कुल, आज इसी पर विस्तार से जानकारी दिलवाएंगे हम किसी से, लेकिन ये भी बता दें कि प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से नुकसान पर बीमा कवर मिलता है। बहुत सारी जानकारियां हैं फसल बीमा योजना से संबंधित, तो चलिए सुनवाते हैं आपको एक बातचीत आपदा के समय फसल

0: बीमा योजना, शशि प्रकाश सिंह जो कि मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तो चलिए इनसे सुनते हैं बातचीत।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें चाहे सूखा हो, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, बाढ़ है, चक्रवात, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको किस तरीके से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं शशि प्रकाश सिंह जी, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये फसल बीमा योजना है, ये क्या है और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMABY के नाम से भी जानते हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में गिना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसान की आय को सुरक्षित रखना, कृषि में स्थिरता लाना तथा आपदा के समय किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
1: तो फसल बीमा योजना में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको आप कवर करते हैं?
2: इस योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात, ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन, बादल के फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट एवं रोगों से होने वाले फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
1: इसके अलावा बहुत से किसान भाई जो बीजों की बिजाई करते हैं या जब फसल कट जाती है खेत से, जब उसकी थ्रेसिंग होकर घर ले जाते हैं, इस बीच भी नुकसान होता है, कभी बीज उनका नहीं उगता है, तो क्या ये भी कवर होता है?
2: इस योजना में यदि सरकार द्वारा अधिसूचित है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं या बुआई जो भी बुआई कर पाते हैं वो फेल हो जाती है, तो जिस राज्य में भी यदि प्रिवेंटेड सोइंग कवर यदि अधिसूचित है तो वहां भी किसान बीमा के लाभ के पात्र होते हैं।
1: इस योजना का कौन कौन से किसान भाई लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से किसान इसके पात्र हैं?
2: अधिसूचित फसलों के लिए वो सारे किसान जो अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं क्षेत्र में, इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोनी किसान हैं, उनका लोन अकाउंट यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं तो स्वतः ही बैंक के द्वारा उनका बीमा कर दिया जाता है। जिन किसानों ने लोन नहीं लिया, जिनका की लोन अकाउंट नहीं है और यदि अधिसूचित फसल उगा रहे हैं, तो वो भी CSC या बैंक विजिट के द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर स्वतः ही आवेदन करके बीमा कवर ले सकते हैं।
1: तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि स्वतः ही उसका कर सकते हैं पोर्टल पर जा करके, और कोई भी किसान अगर किसी मान लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC का नाम आपने जिक्र किया है, वहाँ जाता है तो कौन कौन से कागजात डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि हमें अपने फसल का बीमा कराना है?
2: किसान को मुख्य रूप से अपनी पहचान यानी आधार कार्ड, बोई जाने वाले फसल का प्रमाण पत्र, संबंधित जमीन के दस्तावेज और बैंक पासबुक की प्रति की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा अपना बीमा करवा सकते हैं।
1: और कोई किसान भाई अगर बीमा कराना चाहते हैं किसी फसल का, तो इसकी अंतिम तिथि क्या है?
2: सामान्यतः खरीफ के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है और रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर होती है, किंतु अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियों के अनुरूप राज्य की अधिसूचना के अनुसार अलग अंतिम तिथियां निर्धारित हो सकती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना और राज्य सरकार के विभाग के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1: जैसे 31 जुलाई तो निकल चुकी है, क्योंकि बहुत से किसान भाई अभी भी अपनी फसलों की बिजाई में लगे हुए हैं, तो क्या अभी कई राज्यों में किसान भाई अभी भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं?
2: बहुत से राज्यों में मौसम की स्थितियों के अनुसार अंतिम तिथि में परिवर्तन किए गए हैं, तो जहां भी अंतिम तिथि एक्सटेंड की गई है और अभी भी अंतिम तिथि शेष है, वहां इसकी सूचना अपने कृषि विभाग से या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर जाकर उसकी जानकारी लेकर बीमा ले सकते हैं।
1: और किसान भाइयों की जानकारी के लिए आप बताना चाहेंगे कि इनकी जो भी फसलें हैं उसका प्रीमियम क्या है?
2: खरीफ फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम बीमित राशि का 2% है, रबी की फसल के लिए 1.2% है, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 1.5% है।
1: तो अगर किसी किसान के किसी

0: आपदा से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: यदि किसी भी आपदा से यदि फसल नष्ट हो जाती है और वो आपदा स्थानीयकृत आपदाओं के अंतर्गत अधिसूचित है, जैसे कि ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली, इस स्थिति में किसान को 72 घंटों के अंदर कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1447 या कृषि बीमा कंपनी के डायरेक्ट नंबर, कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकों या CSC के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
0: अगर इसके सूचना किसान भाई दे देते हैं तो कंपनी द्वारा कैसे आकलन किया जाता है और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है?
1: सूचना देने के उपरांत कंपनी के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि किसान की उपस्थिति में उसके खेत पर नुकसान के आकलन का सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पर जो भी नुकसान का आकलन होता है उसके बीमा राशि का भुगतान सारे आंकड़ों के निश्चित हो जाने के पश्चात 21 दिनों के अंदर कर दिया जाता है।
0: अब वो कैसे किया जाता है किसान को?
1: किसान का भुगतान डायरेक्ट DBT के माध्यम से उनके पोर्टल पे प्रविष्ट अकाउंट नंबर या आधार से लिंक्ड अकाउंट नंबर में कर दिया जाता है।
0: तो जितने किसान भाई उनका नुकसान होता है किसी भी आपदा के द्वारा, तो क्या सभी किसानों का क्लेम स्वीकार किया जाता है?
1: यदि कोई किसान स्थानीयकृत आपदा के विषय में सूचना देते हैं तो अधिसूचना में वो आपदा कवर है, तो सर्वे के आधार पे नुकसान का निर्धारण होता है तो उस किसान का भुगतान किया जाता है। CC के आधार पे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पे, जहां पर भी उपज में कमी पाई जाती है उन सारे किसानों को उस बीमा इकाई में क्लेम का भुगतान किया जाता है, किंतु जहां पर भी उपज गारंटीड उपज से ज्यादा होती है वहां
0: जी,
1: पर कोई भुगतान नहीं किया जाता।
0: फिर भी अगर कोई किसान अपना देख रहा है कि फसल उसका नुकसान हुआ है और बीमा कंपनी उसका क्लेम अस्वीकार कर देती है, तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए, कहाँ सूचना देनी चाहिए या शिकायत करनी चाहिए?
1: शिकायत के लिए मुख्य रूप से कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1447 पर बीमा के दावों के सूचना के अतिरिक्त वहाँ शिकायतों के समाधान या शिकायतों की भी व्यवस्था है। शिकायत दर्ज करने के उपरांत शिकायत का टिकट जनरेट होता है जिसके माध्यम से शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है और उनकी शिकायतों का उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जाता है।
0: तो उसमें कितने दिन लग जाते हैं लगभग?
1: शिकायतों के आधार पर जिस तरह की शिकायत होती है वो संबंधित बीमा कंपनी को वो शिकायत जाती है और बीमा कंपनी को 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर उस शिकायत का समाधान कर उपयुक्त उत्तर किसान तक पहुंचाना होता है।
0: अच्छा, किसान भाइयों को मान लीजिए बीमे का क्लेम लेने के लिए जरूरत पड़ती है कि उनको कौन कौन से अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए?
1: बीमा के दावे के लिए मुख्य रूप से सर्वे से संबंधित प्रति और सर्वे के दौरान लिए गए जो भी साक्ष्य हैं उनकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।
0: अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत से हमारे किसान भाई हैं जिनके नाम अपनी ज़मीन होती है, वो भी खेती करते हैं, और बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके नाम खेती तो नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं दूसरे की बटाई पे लेकर के, पट्टे पे लेकर के, क्या वो भी इस प्रधानमंत्री फसल योजना के पात्र हैं? लाभ उनको भी मिलेगा?
1: यदि किसान बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हों और उनके द्वारा उगाई गई फसल राज्य की अधिसूचना में अधिसूचित है तो किसान बीमा करवाने के पात्र हैं। उसके लिए उन्हें अपने बताए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त जो लैंड एग्रीमेंट है जिसके आधार पर वो खेती कर रहे हैं
0: जी,
1: उसकी प्रति भी सबमिट करनी होती है, उसके आधार पर उनका बीमा होता है।
0: और क्योंकि फसल तो सभी हमारे किसान भाई लगाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन सभी किसान बीमा नहीं कराते, उनके अंदर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गलतफहमियां हैं जिसके कारण वो फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेते हैं?
1: सामान्यतः बीमा के विषय में इस धारणा से भी कि हमारे क्षेत्र में इस फसल में नुकसान नहीं होता है,
0: जी
1: ये एक बड़ी सोच होती है जिसके लिए नहीं कराते हैं, किंतु आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं और वो कभी भी फसलों का नुकसान पहुंचा सकती है, और उस स्थिति में यदि आपदा के संदर्भ में ध्यान रखा जाए और सोचकर यदि कराया जाए कि ये बीमा कोई एक इन्वेस्टमेंट ना होकर आपदा से बचाव का एक जरिया, एक माध्यम है, तो बीमा कराने के लिए यदि इस सोच से किसान प्रेरित होंगे तो वो बीमा कराने के लिए अग्रसर हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सभी किसान फायदा लें, इसके लिए किसान भाइयों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सभी किसान भाइयों और

0: बहनों से आग्रह करता हूं कि वो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते ही अपनी फसल का बीमा करवा लें, क्योंकि आपदाएं कभी भी बताकर नहीं आती हैं। फसल बीमा कराने से उनका कृषि में निवेश, सुरक्षित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। समय पर बीमा और सही जानकारी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करती है, और ऐसा देखा गया है कि विगत वर्षों में बहुत से किसानों की बीमा राशि उनका दावा बनने के बावजूद भी उनके खातों में अंतरण के समय फेल हो जाती है। बार बार प्रयासों के बावजूद भी उनके बैंक अकाउंट में बीमा राशि का अंतरण नहीं हो पाता है।
1: तो ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
0: किसान भाइयों से निवेदन है कि इस स्थिति से बचने के लिए वो अपने खातों को निश्चित रूप से अपने आधार के साथ लिंक कराएं, जिससे आधार बेस्ड पेमेंट के अंतर्गत जो भी लंबित दावों का भुगतान है उनका भुगतान किया जा सके और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
1: जी, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा के समय उसकी उपयोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि यह जानकारी किसान भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वे समय रहते फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक सुरक्षित बना सकेंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपदा के समय फसल बीमा योजना का लाभ आप कैसे उठाएं, इस विषय पर शशि प्रकाश सिंह अभी जानकारी दे रहे थे, जो कि मुख्य प्रबंधक है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: तो ये तो थी जानकारी, और आप कुछ मनोरंजन कराते हैं, सुनवाते हैं। एक उपदेश कलाकार हैं शीशपाल सिंह भाटी।

0: अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी से ये उपदेश,
1: और अब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जल संरक्षण के बारे में है।
0: बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण हर एक बूंद कीमती है, और ये कैच द रेन के नाम से मशहूर है। जल शक्ति अभियान जैसे प्रोमो और अभियानों के जरिए जनता से जल वर्षा संचय और भूजल स्तर को सुधारने की अपील की गई है।
1: बिल्कुल, सरकार के जो ये मुख्य संदेश है इस अभियान के तहत ही है, कैच द रेन, वर्षा के पानी का एक एक बूंद जहां गिरे उसे वहीं सहेजने का संकल्प लें। और जन भागीदारी की बात करें तो
0: बिल्कुल, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, जिसमें युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया है।
1: बिल्कुल, अमृत सरोवर की बात करें तो देश भर में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए नए तालाबों के निर्माण की बात रखी गई है।
0: बिल्कुल, और अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ पानी की बर्बादी रोकने का भी संदेश दिया गया है।
1: बिल्कुल, और कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक महत्वपूर्ण जल संरक्षण अभियान है। इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश की एक बूंद को बचाना और भूजल स्तर को सुधारना है।
0: बिल्कुल, पानी की हर बूंद का सही और प्रभावशाली इस्तेमाल करना है, भूजल व्यवस्था और जल भूतों को मजबूत करना है, छत आधारित और भूमि आधारित वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है, जल प्रबंधन के प्रति आम जनता और युवाओं में जागरूकता लाना है, यानी कैच द रेन का ये स्लोगन आम बनाना है।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो जो हमारा वर्षा का जल आता है उसको हम कहीं भी इकट्ठा करते हैं, तो जल संचयन से एक जो हमारी विविधता होती है पानी की कमी की, वो सारी पूरी की जा सकती है। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसी बूंद बूंद से आप सागर भर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास आपका, हमारा, सभी का होना चाहिए।
0: जी, प्रयास छोटे ही होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो ये प्रयास हमारे बड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो इसी से संबंधित चलिए सुनवाते हैं आपको योगेंद्र निमचाना की आवाज़ में ये उपदेश, जल संरक्षण क्यों जरूरी है।

0: जी हाँ, जल संरक्षण बहुत ज़रूरी, इसके बिना नहीं जिंदगानी। अभी आप सुन रहे थे उपदेश योगेंद्र निमचाना से।
1: और अब आइए सुनते हैं एक संदेश।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान।

0: इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आगामी कार्यक्रम के बारे में भी हम बता देते हैं। आगामी कार्यक्रम की जानकारी में आप सुनिएगा, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी कल 7:05 से लेकर के 7:35 तक। और साथ साथ ये भी कहें कि देखो कुसुम, मौसम बदल रहा है और बारिश का मौसम है, तो अपने पशुओं का भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है।
2: बिल्कुल, बरसात के मौसम में अपना और साथ ही साथ पशुओं का भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीचड़, नमी हो जाती है, मक्खी मच्छर और संक्रमण से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पशुओं के रहने के स्थान को सूखा और साफ रखना ज़रूरी होता है, और यमुना बहन उन्हें साफ और उबला या छना हुआ पानी पिलाना भी चाहिए, तथा जैसे इस तरह के कई रोग हो जाते हैं जैसे थनैला और पेट में कीड़ों से बचाने के लिए
1: खुरपका हो जाए
2: जी, तो समय पर डॉक्टर की सलाह और दवाएं और टीके भी लगवाते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सच कहें तो जानकारी के इसी जानकारी के साथ साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे कार्यक्रम कृषि जगत से। तो सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम राम। और जी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर
2: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
1: तो सभी सुनने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को पुनः राम
2: राम, राम, राम।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा ये सब?
5: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
4: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
5: अरे ये कैसे रह गया?
4: पैसे गए?
5: नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
6: दादू ये
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सही कह रहा है।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों

0: आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने पुराने उपयोग योग्य कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की जा सके। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए इसमें भागीदारी करना और अधिक सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राजधानी में सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने और उपयोग योग्य कपड़े अर्पण केंद्रों पर दान कर इस जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
1: आज का ये अर्पण वस्त्र केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और मैं ये मानती हूँ कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सब लोग मिलके करेंगे। अपने घर से जो भी आपको कपड़ों का सामान नजर आए, भगवान जी के वस्त्र दें, तो वो ले जा करके अर्पण केंद्र पे दीजिए और उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे किसी बहन को रोजी रोटी भी मिलेगी और समाज से इस तरह का जो अपविष्ट है, जो गंदगी है, वो भी खत्म होगी।
0: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का उद्देश्य राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी के लिए ऐसा हरित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है, जहां उद्योग, तकनीक और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी बने। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि मजबूत उद्योग और सुरक्षित पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, तभी दिल्ली का भविष्य और बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, नरेला, आईएफसी गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही है। गाजीपुर फल, सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मंडी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नरेला अनाज मंडी में 2 अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने के प्रस्ताव और गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा आधुनिक सुधाव से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर आधारभूत ढांचे वाली मंडियां न केवल व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि पूरी कृषि विपणन व्यवस्था को भी अधिक समक्ष बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। एक रिपोर्ट।
3: उत्कल मणि के नाम से प्रसिद्ध गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार, समाज सेवा और गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के

0: से प्रेरित गोपबंधु दास ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और मानवीय सहायता कार्यों का भी नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि गोपबंधु दास ओडिशा की एक महान और प्रेरणादायक विभूति हैं।
1: इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा।
2: ये ओडिशा के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि उत्कल मणि गोपबंधु दास ओडिशा के एक महान और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने उड़ीसा और देश के लोगों के लिए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा एंड बियॉन्ड।
0: दिल्ली में गोपबंधु दास की प्रतिमा लोक सेवक मंडल की ओर से स्थापित की गई है। इस संगठन की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दी गई महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। विशाल दास की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आज अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। अस्पताल में उन्नत आपातकालीन विभाग के साथ धर्मशाला और नेत्र रोग विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि चिकित्सक समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि अस्पताल निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहां के चिकित्सकों की विशेषज्ञ आधुनिक मशीनें तथा सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये नया फुटब्रिज गुडमंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में सुरक्षित, टिकाऊ और जन केंद्रित आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कल रात एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तलाशी अभियान भी चलाया गया और मलबे में किसी के भी होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें, घटना की गहन जांच सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंडका से गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी आबकारी अधिनियम के दो मामलों में शामिल रहा है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को बवाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली महापौर कार्यालय को आज सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। ये आठवीं बार है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर कार्यालय द्वारा तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों द्वारा सिंह के महासंघ प्रमुख रहते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा था। ये मामला 2023 का है, जब महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर श्री सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्र ने सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
4: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों के ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। और दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
6: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
5: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
7: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट।
8: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:20। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है लक्ष्मी, और इस गीत को आवाज़ दी है रैपर विरूस ने, और गीत रचना और संगीत दिया है उल्लू मानती ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल के गीत मालिका कार्यक्रम में अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम कश्मीर की कली, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, और गीत रचना थी SH बिहारी की, और संगीत दिया था OP नैयर साहब ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शान और आमिर खान को, फिल्म का नाम है तारे ज़मी पर। संगीत निर्देशक हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है बरसात और गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। गीत रचना है पंडित नरेंद्र शर्मा की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म आराधना में। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है SD वर्मन ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं असित देसाई, हेमा देसाई और अलाप देसाई को फिल्म शिवोहम में शिव तांडव स्त्रोत के साथ। संगीत दिया है अस्ति देसाई ने, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत शिव तांडव स्त्रोत।

0: और आपकी कसम फिल्म में किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ आज का ये गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी में और फिर 9 बजे अंग्रेजी में और 9:15 पर उर्दू में समाचार सुन पाएंगे। तो कुछ ही पलों में प्रतीक्षा करें हमारे अगले कार्यक्रम की, समाचारों की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे

0: कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
2: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
3: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
8: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
8: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
9: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के

0: all over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. Young cyclist Harshita Jhakhar rode into history books by becoming the first Indian woman to be a part of the Tour de France FAMA in Switzerland. The 19-year-old led a pack of 8 talented cyclists from Afghanistan, Algeria, Chile, Ethiopia with 2 riders, Namibia and Uganda during the ceremonial start at stage 2 of the Grueling race yesterday. The event started on 1st of this month in Lausanne and will end on the 9th August in Nice. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on cyber fraud and cyber security, safeguarding the digital citizen. During the program, listeners can ask questions on telephone numbers 011-2371-7117, 011-2371-7106. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In Assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी, छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर आला डी के शिवकुमार ने 19 नए वुजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क़ियादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये बिल अहम कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई

0: कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकन की जानिब से जानबूझकर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। तहम शोरगुल और हंगामा आरई के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा आरई के दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाज़ों के इजाले के तरीक़ेकार को आसान बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर साइदोव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफ्द का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फ़न तामीर, ज़ुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरक सकाफत ने बाहमी शराकत दारी को मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मसर्रत किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज़्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के राबतों को बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले बरसों में तौसी हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तिजारत के ज़िम्न में एक जैसे नज़रियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा ज़िले में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज़्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी MLA और गुजरात के साबिक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहाँ ज़िमनी इंतखाबात ज़रूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वोटों की गिनती के तमाम 20 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही थे, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। इस सीट पर तवील अरसे से बीजेपी के रुकन कानून साज असम्बली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतखाब जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज़ अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
0: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का

0: मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से शिकस्त दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जहां जिमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले

0: 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% ही वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 साल में बांकीपुर असेंबली हलके में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज़्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला डी के शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निज़ाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 से 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद

0: बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरक़ी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरतेहाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर पितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सबर आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। BJP ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, ओटीपी का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर ऑफेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीज़ें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारण वर्ष है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हों, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हों, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
0: जी,
1: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
0: उसके बारे में
1: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीज़ें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
0: जी,
1: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूँ, विक्टिम बन गया हूँ साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं और मोर इम्पॉर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
0: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
1: विपिन जी आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ने ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो

0: कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं
1: जी।
0: और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3% 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है अगर आपको पकड़ने के लिए। अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर 12,300 तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
1: जी। सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीज़ें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
1: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारे टीम में
0: जी
1: है, मैं
0: नमस्कार।
1: ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी रूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया है, निकालने का प्रावधान कर दिया है।
0: जी
1: इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
2: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं। आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिरहाने पर जो दूध है आके पी जाएगी,
0: पी ही जाएगी
2: तो
0: जी
2: इसलिए
0: बिल्कुल।
2: आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने के प्रयास भी करते हैं।
0: जी
2: तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
0: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी
0: नमस्कार
3: बहुत
0: जी।
3: बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं है ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं,
2: जी
3: क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि सर किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये।
0: बहुत
2: देखिए,
0: बढ़िया सवाल।
2: बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था,
0: जी
2: तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन
0: जी
2: अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से दे सोचती

0: है कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कॉपरेशन को नहीं देखना।
1: बिल्कुल
0: यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की।
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत
2: हाँ,
1: स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी नमस्कार,
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या
2: विशेषज्ञों
1: सवाल
2: को
1: है।
2: नमस्कार।
1: जी
0: जी नमस्कार।
2: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवाड़, तहसील जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी
2: मेरा बटन का फोन है,
1: वेरी गुड।
2: और ये बटन के फोन में कोई धोखाधड़ी हो सकती है क्या, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां नहीं हो सकती,
1: बिल्कुल
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए, तो आप सुरक्षित तो हैं। लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह
1: जी,
0: रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि साहब बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए, या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये
1: जी
0: सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है, फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित
1: सुरक्षित
0: है
1: है।
0: क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले तीन काम क्या करने होते हैं, और 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
1: जी
0: कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके
1: वापस आ
0: अकाउंट में आ
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: जी
0: तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला, बैंक
1: बैंक
0: चलते
1: में
0: हैं।
1: जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब
1: जी
0: आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में।
1: जी
0: अगर आपने पहले 10 मिनट में
1: एक्शन
0: शिकायत
1: ले
0: कर दी,
1: लिया। जी
0: एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया
1: फिर
0: तो फिर
1: वापसी
0: पैसा
1: मुश्किल,
0: वापस आना
1: फिर
0: बहुत
1: वापसी।
0: मुश्किल हो जाता
1: जी
0: है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
2: जी,
1: आपका।
2: मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ,
1: जी नमस्कार
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
2: मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं,
1: जी
2: यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी, सवाल पूछिए।
3: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजेक्शन जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है, तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ब्लॉक करवाना ज़रूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी,
4: और मेरा ये प्रश्न है जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फ़ोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए।

0: एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी है। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने

जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगोड़ा ने आज शपथ नहीं ली है। एक अन्य विधायक मनकला वैद्या की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले तीन से चार दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता झाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। अब उनकी नज़र 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 पर अपनी जगह बनाने पर होगी। साथ ही वे 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक पक्का करना चाहेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और श्रोताओ, इसी के साथ आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओ, लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरोद वादन अब्दुल सामी खान का। राग है रागेश्री।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Dhatia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in today's three assembly by elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar expanded his cabinet today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivakumar assumed office as Chief Minister on June 3rd along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Mankala Vaidya, was replaced by S.S. Mallikarjuna at the last moment. Former Chief Minister Siddaramaiah was conspicuous with his absence at the swearing-in ceremony. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions

तो श्रोताओं, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अभी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस सुंदर से गीत को सुनने के लिए हमें जो फरमाइश मिली थी वो पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानुबी और बादशाह की। साथ ही साथ इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, चरडोगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, श्रीमती कुमारी, इंद्राणी, माया साहू की। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश पर लिया गया ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

जीवन मृत्यु फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया श्रोताओं। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। साथ ही साथ इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी थी दमदम कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

तो श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, और फिल्म का नाम था अमानुष, और इस गीत को लिखा था इंदीवर ने। साथ ही साथ इस गीत को सुनने के लिए जो फरमाइश हमें मिली वो अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव, और अमरावती से इस गीत को सुनना चाहा था सिद्धार्थ गोंडा ने, हीरामन शेंडे, किशोर धनाडे, संजय कुमार, हिम्मत राव श्रृंगारे, दीपक कुन्हाड़े और राजेंद्र गुप्ता ने।

श्रोता लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और साथ ही साथ इस गीत को सुनने के लिए जो फरमाइश हमें मिली है वो है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, साथ ही साथ पंजाब फाजिलका से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, शालिनी और टीवानशी की, और साथ ही साथ मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत और अंकिता भटकर, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही साथ हमें ईमेल मिला है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का भी। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली वो उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, जो कि लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमारा नाम ज़रूर शामिल करें। तो आपका नाम हमने शामिल कर लिया है अपने इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ इंदौर मध्य प्रदेश से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी खर्चे। साथ ही साथ जो हमें फरमाइश मिली है वो स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह की। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि हमें फरमाइशें लगातार ईमेल के माध्यम से मिल रही है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपके ईमेल ज़रूर शामिल करें अपने इस कार्यक्रम में। और नूर आयशा अहमद, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ और आरजू बागवान, आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जो कि आप ही की फरमाइश पर आधारित है, हमारी भी कोशिश यही है कि हमें आपके जितने भी ईमेल मिल रहे हैं तो आपके ईमेल को हम ज़रूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो आइए श्रोताओं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

और श्रोताओं, ये जो प्यारा सा गीत अभी आपने सुना ना, इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश जो हमें मिली थी वो कीर्ति नगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिया झा, निवेश कुमार, लड्डू कुमारी और साथ ही साथ गुजरात से कल्पना मदन झा, मानव मयंक, जिंद हरियाणा से हमें ईमेल मिला है जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर का। और साथ ही साथ हमें फरमाइश जो है ईमेल के माध्यम से लगातार आप सभी की मिल रही है और हमारी भी कोशिश है कि कम से कम हम आपके ईमेल अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। तो आपको बता दें कि हमें जो अगली

फरमाइश मिली है चिरमिरी कुरासिया कालरी से। इंद्रभान सिंह और उनके साथियों ने हमें ईमेल भेजा है जो कि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरेश, पूनम और विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का भी हमें ये मेल मिला है। साथ ही आपको बताएं कि दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब जो कि हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और बहुत सारे मेल भी हमें लगातार मिल रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड से भी हमें जो फरमाइश मिली है, तो ज़रूर हमारी कोशिश है कि हम आपके ईमेल ज़रूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें और अपने इस संगीत से सजे हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। आपको बता दें कि प्यार भरे नमस्कार के साथ हमें एक ईमेल मिला है आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग और टोनी दीवान लव, राधे भाविक ढिंगरा, अतुल शर्मा का, और दिल से शुक्रिया की बात भी कह रहे हैं क्योंकि उनका ईमेल हमने शामिल किया है। साथ ही साथ गुरप्रीत तंगौरी पंजाब मोहाली से हमारे पास ये ईमेल है जिसमें जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह जो कि लिख रहे हैं कि आप कोई भी गीत ज़रूर सुना दें लेकिन हमारा ईमेल अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। तो आपका ईमेल हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है और उम्मीद है कि आप सभी लगातार हमें ईमेल भेजते रहें और हम भी आपकी सभी उम्मीदों को पूरा करते रहें। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा का भी ईमेल हमें मिला है जो कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि लगातार जो हमें ईमेल मिल रहे हैं, इंदौर से हमें ये मेल मिला है पूजा रघुवंशी, नंदनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, लक्ष्मी नारायण, भाव खड़ से। तो आप सभी के ईमेल हमने शामिल किए हैं। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, भूपिंदर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था घरौंदा। इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत से सवारा जयदेव ने। साथ ही साथ इस गीत को सुनने के लिए जो फरमाइश हमें मिली वो समता नगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, निशांत जगताप और श्रावण बिडवे की। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

और श्रोता, इस गीत को सुनने के लिए जो हमें ईमेल मिला है वो है कर्नाटक से श्यामला प्रकाश, अश्विनी, रमेश आनंद, मालियान मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीवीएम जैन और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। साथ ही साथ मऊ से हमें जो फरमाइश मिली है वो है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू की। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम अब हमारा अंतिम पड़ाव की ओर है, तो आइए एक और गीत आपको सुनवा देते हैं। और इस गीत को सुनने के लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, गुड्डू, आरजू और साथ ही साथ सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता और सिमरन की।

0: और श्रोताओ, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से सजा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। श्रोताओ, रात 12:10 पर आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा हमारे सहयोगी ललित के साथ। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों की प्रतीक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इन दोनों क्षेत्र के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अंक तालिका में 4th स्थान पर लाकर देश के खिलाड़ियों ने गौरवशाली इतिहास रचा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अभूतपूर्व सफलता और भी बड़ी हो गई है क्योंकि भारत अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said, the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during the students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha yesterday passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Datia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikabhai Rabadi of the Congress with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Nabin has said that the party accepts the mandate received in yesterday's 3 assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on 28th of last month directed Karnataka to release 3,500 Q6 for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology yesterday met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. बीजेपी एमपी एंड चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी निशिकांत दुबे क्रिटिसाइज्ड मेटा इंडिया फॉर रिमूविंग द सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. टॉकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर द मीटिंग मिस्टर दुबे सेड दैट द कमिटी हैज डिमांडेड मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग टू अपोलोजाइज फॉर दिस एंड इफ ही डज नॉट डू सो देन द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 79 शुड बी विदड्रॉन फ्रॉम हिम.

0: regulator FSSAI has prohibited Dabur India from selling many products such as honey, cow ghee and edible oils using 100% claims, saying that such labeling is against the law. In a social media post yesterday, the Food Safety Standards and Authority of India has informed that it has issued a prohibition order to Dabur India Limited over the sales of food carrying misleading 100% claims, including honey, apple cider vinegar, virgin coconut oil, sesame oil, and other such items. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, विशेषांक पार्श्व गायक अनवर। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। नगमों की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी दिलकश हो जाती हैं। वे सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिल की धड़कनों में उतर जाती हैं। ऐसी ही एक सुरीली, मासूम और दर्द से भीगी आवाज के मालिक पार्श्व गायक अनवर। जी हाँ दोस्तों, जिनकी गायकी में मोहम्मद रफी साहब की झलक महसूस होती है, लेकिन जिनकी अपनी अलग पहचान भी उतनी ही खूबसूरत रही है। तो फिलहाल हम एक सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आप सभी का, और हमें उम्मीद है कि आज का ये खूबसूरत कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो फिलहाल हम एक बेहतरीन, लाजवाब, अनमोल गीत से शुरुआत कर रहे हैं। ये गीत है जनता हवलदार का। जी हाँ, जनता हवलदार ऑल टाइम फेवरेट, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जी हाँ, अनवर साहब। अनवर की आवाज़ वाकई बहुत ही प्यारी है। जनता हवलदार फिल्म का नाम है और जो 1977 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत बलराज पिक्चर्स द्वारा है और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा की पहली शानदार, बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर गीत अभी आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, मार्मिक, बेहतरीन रचना। या दोस्तों, शुरुआत हम एक गीत से ही करते हैं ताकि माहौल उस प्रकार का बने कि ताकि आप सभी सुनने के लिए उत्साहित हो जाएं, है ना? अच्छा लगता है। नमस्कार, आदाब। आकाशवाणी के इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार, और हम आज आपको ले चलेंगे उस फनकार की यादगार संगीत यात्रा पर जिसने अपनी मीठी आवाज से लाखों दिलों को छुआ। उनके जीवन के संघर्ष, परिवार, संगीत की शुरुआत, फिल्मी सफर, वर्षवार, यादगार गीत, सुने अनसुने किस्से, सम्मान, उपलब्धियां, सब कुछ रहेगा आज आप इस 50 मिनट के खूबसूरत कार्यक्रम में। जी हाँ, विशेष प्रस्तुति के कार्यक्रम में। तो आइए सुरों की इस महफिल का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में बताते हैं। जीवन परिचय। पार्श्व गायक अनवर का जन्म 1949 में हुआ। बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और किशोरावस्था से ही मंचों पर गाना शुरू कर दिया। फिलहाल हम जब गाने की बात आई है तो क्यों नहीं एक और खूबसूरत गीत से एक बार फिर से सुनवाते हैं एक नया, एक खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। और कुछ गीत जो नोन हैं वो तो हम प्ले कर ही रहे हैं, और जो अननोन हैं, जो बहुत ही कम सुने जाने वाले गीत होते हैं, ताकि उनका भी नंबर लगे कि हाँ ये गीत भी थोड़ा सा पॉपुलर हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। केवल वही गीत नहीं, हमारा प्रयास तो इतना ही रहता है कि बस सभी प्रकार के जो गीत हैं उनको स्थान, एक अप्रोप्रिएट सही स्थान दिया जाए, ताकि सभी साथियों को भी पता चले कि अरे इस फिल्म का ये गीत भी है, अनवर साहब का ये गीत है, तो हाँ ऐसा ही होना भी चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अनवर ने अपने निजी जीवन को हमेशा सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। उनका परिवार संगीत को प्रोत्साहित करता रहा, और यही सहयोग उनके संघर्ष के दिनों में सबसे बड़ी ताकत बना। करियर की शुरुआत 1970 के दशक में संगीतकारों की नज़र उनकी आवाज़ पर पड़ी। उनकी गायकी में मोहम्मद रफ़ी की मिठास और सादगी की झलक दिखाई देती थी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में अवसर मिलने लगे, और वे हिंदी फिल्म संगीत के लोकप्रिय पार्श्व गायक बन गए। इनकी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गाया है, अपनी आवाज़ से सभी गीतों को संभाला है, प्यार किया है। कुछ गीत ऐसे हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा करेंगे एक और खूबसूरत गीत के बाद। तो तब तक सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल गीत, जी हाँ, फिल्म विधाता से। एक और गीत, गीत से पहले, जैसे कि हमने कहा कि वर्षवार यानी कि ईयर वाइज अगर हम गीतों की बात करें जो अनवर साहब ने आवाज़ दी है उन गीतों को, तो 1977 में फिल्म आई थी हम किसी से कम नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत था। सन 1978 में अखियों के झरोकों से शीर्षक गीत 1979 में बना था ये एक शानदार गीत, और इसी खूबसूरत गीत के साथ भी आवाज़ अनवर साहब की ही थी। एक फिल्म आई थी नैया, जी हाँ नैया, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है। कई लोकप्रिय गीत हैं, 1980 में प्रेम गीत होठों से छू लो तुम, 1981 में एक दूजे के लिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, 1982 निकाह, एक चुनिंदा गीतों में योगदान। इसके बाद फिर उन्होंने अनेक फिल्मों में, निजी एल्बमों में अपनी आवाज़ दी। तो फिलहाल इनमें से एक गीत और सुनवा रहे हैं, एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना। हुजूर आप ये तोहफा, घर का सुख फिल्म से, जो 1987 प्रदर्शित फिल्म रही है, अनवर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में शानदार रचना। गीत ए के मूवीज इंटरनेशनल्स के बैनर तले

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, और एक और गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गीत। उससे पहले कुछ जानकारियाँ बता देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि फिल्म जो चुनिंदा फिल्में थी, निकाह, चुनिंदा गीतों के योगदान, इसके बाद भी उन्होंने अपने अनेक फिल्मों और निजी एल्बमों में अपनी आवाज़ दी। फिल्मों में योगदान की अगर हम बात करें तो अनवर ने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत को कई मधुर गीत दिए और उनकी आवाज़ रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों के लिए विशेष रूप से पसंद की गई। उनके कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। एक और गीत बड़ा ही प्यारा गीत है, कंगना खनके खनके, अभिमन्यु फिल्म से शानदार रचना है और इस गीत में आवाज दी है अमित कुमार, अलका याग्निक, शबीर कुमार और अनवर। अभिमन्यु फिल्म सन 1987 प्रदर्शित फिल्म रही है और इस गीत को संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार गीत।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी मस्ती भरा लाजवाब गीत सुन रहे थे। बढ़ते हैं कुछ और अन्य जानकारी की ओर, कुछ सुने कुछ अनसुने किस्से की ओर। संगीतकार रविंद्र जैन ने पहली बार अनवर की आवाज़ सुनकर कहा था कि इस आवाज़ में मासूमियत और गहराई दोनों हैं। कई श्रोताओं ने शुरुआत में उनकी आवाज़ को मोहम्मद रफ़ी की आवाज समझ लिया था। अनवर ने हमेशा यह कहा कि रफी साहब उनके आदर्श थे, लेकिन उन्होंने कभी उनकी नकल नहीं की बल्कि उनसे प्रेरणा ली। मंचीय कार्यक्रम में आज भी उनके गीतों की विशेष फरमाइश होती है। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पुरस्कार और सम्मान की, यद्यपि अनवर को बड़े फिल्म पुरस्कार कम मिले हैं, लेकिन उन्हें देश विदेश में अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। संगीत प्रेमियों का स्नेही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उनकी प्रस्तुति के दौरान बीच बीच में उपयोग हेतु भावपूर्ण कुछ बातें हैं। जी हाँ, कुछ आवाज़ें मौसम नहीं बदलती मगर जिंदगी का एहसास बदल देती हैं। अनवर की आवाज़ भी उन्हीं सुरों में से एक आवाज़ है जो हर सुनने वालों के दिल में हमेशा गूंजती रहती है।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बेहतरीन अनमोल रचना। साथियों, बस अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और बता देते हैं। जब सुर दिल से निकलते हैं तो शब्दों को भी रूह मिल जाती है, यही पहचान है अनवर की गायकी की। गीत खत्म हो जाते हैं मगर उनकी खुशबू बरसों तक साथ चलती है। हर आवाज़ मुकद्दर से नहीं मिलती, हर आवाज़ मुकद्दर से नहीं मिलती, कुछ आवाज़ें इबादत का इनाम होती हैं, है ना? जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। और जाते जाते बस हम एक गीत तो छोड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले जी, तो उससे पहले समापन की ओर तो हम बढ़ चले हैं। तो कहते हैं दोस्तों, सुरों का यह सफ़र अब यहीं थमने वाला है, लेकिन अच्छी आवाज़ों का सफ़र कभी समाप्त नहीं होता। पार्श्व गायक अनवर ने अपनी सादगी, मिठास, भावपूर्ण गायकी से हिंदी फिल्म संगीत को एक ऐसी धरोहर दी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज की यह विशेष प्रस्तुति आपके दिल को छू गई होगी, आज मैं आपका दोस्त ललित कुमार आपसे इजाजत चाहता है। चलते चलते बस इतना ही, सुर कभी बूढ़े नहीं होते, गीत कभी मरते नहीं, जो दिलों में उतर जाएं वो फनकार कभी बिछड़ते नहीं। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। तो आइए आज के कार्यक्रम के अंतिम खूबसूरत गीत के साथ, गीत रचना के साथ छोड़े जा रहे हैं।

0: जी हाँ साथियों, इसी गीत के साथ आज का सुरों का सफ़र, जिसमें आज आप सुन रहे थे अनवर साहब की खूबसूरत आवाज़ का शानदार रचनाएं। साथियों, 1 बजने को है, अब पहले हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिय विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि की भागीदारी की उम्मीद है। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने सूचित किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनमें शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही शानदार गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत बड़ा ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत है, और ये गीत अपने आप में बहुत ही अनमोल है। फिल्म जन्म जन्म के फेरे, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही, जन्म जन्म के फेरे ये टाइटल सॉन्ग है, और गीत मुक्ति फिल्म्स के बैनर तले ये रचना है और संगीत से सजाया है SN त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल रचना। जैसे कि हमने बताया कि जन्म जन्म के फेरे टाइटल सॉन्ग है, मोहम्मद रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ में शानदार रचना। और ये फिल्म 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मुक्ति आर्ट्स बैनर तले के हैं और संगीत से सजाया है एस एन त्रिपाठी ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बहुत ही शानदार आ रहा है, ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ओ बसंती पवन पायल, बहुत ही प्यारा नगमा, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से बेहतरीन रचना। ये फिल्म 1960 प्रदर्शित फिल्म रही है और आवाज़ लता मंगेशकर की है और गीत शैलेंद्र के, और संगीत से सजाया है इस शानदार रचना को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, बहुत ही शानदार, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही सुंदर है और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो। फिल्म कुंदन से, और माफ़ कीजिएगा, खानदान से। ये फिल्म 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है। गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से सजाया है रवि ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत अभी आपने सुने। गीत सुनहरे कार्यक्रम की सेकंड लास्ट खूबसूरत रचना आ रही है एक बड़ी ही प्यारी लाजवाब गीत के माध्यम से। तुम इश्क की महफिल को, जी हाँ, तुम इश्क की महफिल को। फिल्म का नाम है साज और आवाज़। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले और साथ दे रहे हैं उनके साथी। ये खूबसूरत लाजवाब गीत आ रहा है साज और आवाज़। 1966 प्रदर्शित फिल्म है। गीत SSI फिल्म्स के बैनर तले हैं और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहद खूबसूरत अनमोल रचना।

जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंतर्गत एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचना अभी आपने सुनी, और गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च

0: में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहाँ 380 गाँव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आज मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम गीत बहार में आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज पहला गीत आ रहा है आज के कार्यक्रम गीत बहार के अंतर्गत, बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत रचना। और ये कार्यक्रम नॉन स्टॉप होता है, लगातार चलता है, और ये कार्यक्रम 50 मिनट का ही होता है। और इस गीत को सबसे पहले, ये गीत आ रहा है आपके पास यार दी शादी दोस्ती फिल्म से, सोनू निगम और अभिजीत और अलका याग्निक और साथ में सारिका कपूर की आवाज़ में शानदार रचना है। 1970 प्रदर्शित फिल्म रही है ये शानदार खूबसूरत रचना। गीत राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले रचना है और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की सुंदर और खूबसूरत रचना। अगले 50 मिनट तक अब आप सुनते ही रहेंगे एक से एक बेहतरीन रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत आ रहा है। जी हाँ, गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार खूबसूरत रचना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना।
1: कदम चूम लूं या के आंखें

0: जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, बहुत ही प्यारा कार्यक्रम रहा है और गीत बहार के अंतर्गत बहुत ही शानदार, एक से एक खूबसूरत, चाहे वो गजल रूपी हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कव्वाली हो, हर प्रकार की जो विधा थी गीत संगीत की, उसी के अंतर्गत बहुत ही शानदार बेहतरीन रचनाओं का समावेश आज आपने बांधा और आपने सुना। बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। 3 बजने को हैं और अब गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 3 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी

ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और पंकज उदास की इसी गज़ल के साथ आज का गज़ल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं तालवादक काचेरी से काचेरी वादन। कलाकार हैं येला वेंकटेश्वरा राय, ताल है आदि।

अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा रॉय से ताल वाद्य काचेरी वादन, जो ताल आदि में निबद्ध था। इसी के साथ आज का कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर हिमानी श्योखन, योग विशेषज्ञ। सुबह 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित में।

करेंगे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुन सकेंगे रीता स्वामी चौधरी के भजन, और सुबह 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा। सुबह 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे अमीन खान का गायन राग मियां की तोड़ी में।

0: सुबह 9:15 पर हमारा विशेष कार्यक्रम होगा विज्ञान पत्रिका, जिसके अंतर्गत हम आपको कोलकाता के स्थापना के गौरवशाली 150 वर्ष पूरे होने पर संस्थान के कार्यों और उपलब्धियों पर जानकारी देंगे। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे, अध्यक्ष INSA, पूर्व महानिदेशक CSIR, पूर्व सचिव DSIR। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगे दिलीप झा। मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:30 और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत 11:30 पर आप सुनेंगे मोहम्मद यूनुस वारसी से वॉयलिन वादन राग शुद्ध तरंग सारंग में। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते RBI द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की

0: संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य की 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने उम्मीद व्यक्त की कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहला चरण होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्तरीकरण होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। गजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्तरीकरण समझौते पर चर्चा करना था। शांति बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादिनेओ ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्तरीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Lok Sabha passed a Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in the ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dathia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikabhai Rabari of the Congress with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Dathia seat in Madhya Pradesh with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in by-poll. Voting for the by-polls to the 3 constituencies was held on the 30th of last month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held talks with Uzbekistan Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi yesterday. Both ministers undertook a detailed review of the strategic partnership with particular focus on energy, infrastructure, trade, defence, education and culture. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over as the proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav has announced the designation of Glock Lake in Arunachal Pradesh as India's 101st Ramsar site. In a social media post, the minister described the development as an important step for biodiversity conservation, water and climate security, and sustainable livelihoods. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. Food regulator FSSAI has prohibited Dabur India from selling many products such as honey, cow ghee and edible oils using 100% claims, saying that such labeling is against the law. In a social media post, the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has informed that it has issued a prohibition order to Dabur India Limited over the sales of food products carrying misleading 100% claims. India's badminton stars will begin their campaign today at the Korea Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today at the Asan Yi Sun Sin Gymnasium in Asan, South Korea. The tournament will run until 9th of this month. All eyes will be on 17-year-old Tanvi Sharma, who enters the tournament after winning her first BWF World Tour title at the Taipei Open. Tanvi will lead India's women's singles campaign. And the Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. And that is the end of this news bulletin.
2: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर.
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है. लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी. द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर. कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
2: समय हुआ है 5:10 और 50 सेकंड. श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है उष्टासन और योग से संतुलित जीवन. प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शोकन.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन

पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धउष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुकें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं
1: जी,
0: होती
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसी में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस तीन नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना इज ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़ें, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें और साथ में चीनी, जो सफेद चीनी होती है, उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं के ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं के ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाओ।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं के ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं के ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ। ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर। तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना। पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था योग, उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर हिमानी शोखन, योग विशेषज्ञ।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब देशभक्ति गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनते हैं आकाशवाणी के बृंद कलाकारों से। इस मास का गीत सुनते हैं और जिसके बोल हैं सेवा में तेरी भारत।

आकाशवाणी के बुलंद कलाकारों से अभी आप सुन रहे थे इस मास का गीत। आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत।

अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:30:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत। आइए अब सुनते हैं नकुल मल्होत्रा का गाया राग ललित।